मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948, आषाढ़ माह की 22वीं तिथि, तदनुसार 13 जुलाई 2026 सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता

0: पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैंबर ऑफ कॉमर्स सीईओई और आईसीईएक्स स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री गोयल 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान थिल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठक भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी और किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। भारत ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौ वहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत बेंदाले, नई दिल्ली के ऋषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाखस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 295.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। शिव सत्य है, शिव अनंत है, शिव ही अनादि है। जिसके दिल में शिव है उसके जीवन में भय कैसा। महादेव की महिमा अपरंपार है।

संकल्प की शक्ति, तप और ज्ञान, शांति और वीरता, सृष्टि की रचयिता, ममता न्याय, बुराई का नाश पवित्रता, ये सभी सिद्धियां देने वाली माँ दुर्गा की महिमा अपरंपार है, जो भक्तों को हर संकट से बचाकर बहुत दूर ले जाती हैं और उनकी रक्षा करती हैं।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः।

0: इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। विचार बिंदु कार्यक्रम में लीजिए सुनिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा के विचार।
1: जिस महान व्यक्ति के आचरण ने समस्त संसार में उच्चतम आदर्श की सीमा निर्धारित की, उसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया गया है। भारतीय जीवन में लोक में प्रचलित व्यवहार और उसके आदर्श के संरक्षण की व्यवस्था स्थापित की गई है और उसे ही मर्यादा की मान्यता प्राप्त हुई। सामान्यतः वेद विहित कार्यों का आचरण करते हुए जीवन में

0: मानव कल्याण के लिए आग्रह करना प्रत्येक मानव का धर्म हो गया है। इस मानव धर्म के आदर्श की प्रतिष्ठा भारतीय वाङ्मय में श्री राम के व्यक्तित्व में समाहित की गई है। महर्षि वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य रामायण में श्री रामचंद्र का बड़ा आकर्षक और दिव्य चित्र अंकित किया है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में जब महर्षि वाल्मीकि ने श्री नारद से पूछा कि समय संसार में गुणवान, वीरवान, धर्मज्ञ, सत्यवादी, दृढ़वती, तेजस्वी आदि अनेक गुणों के संपन्न व्यक्ति कौन हो सकता है, कौन वस्तुत संप्रक्ते लोके गुणवान काश्य वीरवान धर्मश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़वता आदि, तब तीनों लोकों के वृतांत जानने वाले देवर्षि नारद ने कहा कि इक्ष्वाक वंश प्रभो रामो नाम जनई श्रुतः नियमात्मा महावीर्यो श्रुतिमान धृतिवान वशी, अर्थात इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न श्री रामचंद्र जी को सब जन जानते हैं। वे नियत स्वभाव वाले बड़े बली अति तेजस्वी आनंद रूप सबके स्वामी हैं आदि। इन गुणों के अतिरिक्त श्री नारद ने श्री रामचंद्र के 80 से अधिक गुणों का उल्लेख किया है। अंत में कहा है कि वे दान देने में कुबेर के समान है, सत्य भाषण में दूसरे धर्म हैं, ऐसे गुणों से युक्त सत्य पराक्रमी केवल श्री रामचंद्र जी ही हैं। महाकवि केशवदास ने अपने ग्रंथ रामचंद्रिका में के प्रथम प्रकाश में श्री रामचंद्र के गुणों का वर्णन करते हुए लिखा है कि बोली न बोलियो बोल दयो फिरता ही न दीनो, मारी न मार्यो शत्रु क्रोध मन वृथा न कीनो, जुड़ न मुरे संग्राम लोक की लीक न लोपी, दान सत्य सम्मान स्वयश दिश विदिशा ओपी, मन लोभ मोह मद कामवश भय न केशवदास भनि, सोई परब्रह्म श्री राम हैं अवतारी अवतार मणि। अर्थात एक बार बोलने के बाद फिर राम को दूसरी बार बोलने की आवश्यकता न हुई, फिर एक बार जिसको मार दिया उसको दूसरी बार मारने की आवश्यकता नहीं, जिसको एक बार कुछ दे दिया उसे इतना दिया कि उसे फिर दोबारा देने की आवश्यकता नहीं। उनके अपने मन में वृथा ही क्रोध का कभी संचरण नहीं किया। संग्राम में एक बार प्रवृत्त होकर उन्होंने फिर शत्रु को दोबारा मारने के लिए अपने धनुष उठाने की बात नहीं कही और लोक की ली किसी प्रकार भी नहीं लोप हो सके। वो कहते हैं दान सत्य सम्मान स्वयश दिश विदिशा ओपी, इनके द्वारा दिशा और विदिशाओं को उन्होंने ढक लिया जैसे, और उनका मन लोभ मोह मद कामवश कभी, केशवदास कहते हैं, कभी अधीन नहीं हुआ है। श्री रामचंद्र के इन समस्त गुणों से उनके व्यक्तित्व में जिस तेज का आविर्भाव होता है वही उन्हें जीवन के समस्त व्यवहारों में मर्यादा पुरुषोत्तम के श्री तत्वों से अलंकृत करता है। महाकवि तुलसीदास तथा बांग्ला कवि कृतिवास ने श्री रामचंद्र के श्याम सुंदर और पल्लव स्निग्ध मूर्ति के मर्यादा से प्रत्येक संदर्भ में आदर्श पुरुष के रूप में चित्रित करने का प्रयत्न किया है।
1: डॉक्टर राम कुमार वर्मा के विचार सुन रहे थे आप विचार बिंदु कार्यक्रम में। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर राहुल कुमार से प्रवीण कुमार मिश्र की बातचीत। विषय है किसान भाइयों के लिए देशी गाय का संवर्धन और उनसे जुड़े लाभ।

0: कुमार जी आए, आप विषय के विशेषज्ञ हैं, साथ ही साथ देसी गाय के संवर्धन के कार्य से भी जुड़ा है। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत बाटे। सबसे पहले हम अपने किसान भाइन के लिए ये जानना चाहब कि जो भारत देश में कौन कौन से प्रजातियाँ हैं जो देसी गाय की श्रेणी में आवत है।
1: जैसा कि किसान भाइयों को हमारी सरकार भी और हम सभी लोग देसी गाय पे आजकल बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में या भारत के अंदर में, जैसे कि साहीवाल, गिर, थारपारकर, रेड सिंधी, ऐसी गाय हैं जो हम लोग पशुपालन में काम करते हैं। अब साहीवाल ऐसी गाय होती है कि किसान भाई यहाँ पे गलती क्या करता है कि वो सही नस्ल की गाय का सिलेक्शन नहीं कर पाता है, उसकी पहचान नहीं हो कर पाता है कि उसको कैसे, अगर हम गाय खरीदी जाए तो कैसे हमें खरीदनी चाहिए। हम पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, तो वहाँ पे होता क्या है कि आप ब्रीडिंग पे ध्यान दिया जाता है कि देसी गाय के अंदर में क्या है कि आपको 14 से 15 लीटर का आपका प्रोडक्शन मिलता है, जिसमें कि 16 से 1700 लीटर का लैक्टेशन पीरियड रहता है। तो किसान भाई की जो लागत है, जो उसका एक गाय को प्रतिदिन खर्चा जो 300 रुपये से 350 रुपये आता है, अगर उसको साहीवाल का अगर वो काम कर रहा है तो उसकी क्या वैल्यू उसे मिलती है। अब नॉर्मल दूध अगर किसान भाई बेचता है, किसानों को देता है, तो 35 से 40 रुपये उसको प्रॉफिट होता है। लेकिन साहीवाल अगर वो देसी गाय पे काम कर रहा है तो उसकी जो वैल्यू है उससे डबल मिलती है, मतलब कि 70 से 80 रुपये लीटर उसका दूध की उसको दाम मिलेगा, जिससे उसके आय का भी उसे बढ़ावा मिलेगा। दूसरा है कि उसको संवर्धन कैसे किया जाए। सबसे पहले तो क्या होता है कि आपको उनका रख रखाव आपको पता होना चाहिए, उनके खान पान पर ध्यान देना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट सी होती है कि जो गाय आपकी 12 लीटर दूध दे रही है तो आपको ऐसा आपका प्रबंधन रखना चाहिए कि आने वाला जो आपका बच्चा हो वो जाके आपका 15 लीटर 16 लीटर दूध पे आए, तो उसे आपको काम करना होगा।
0: डॉक्टर साहब, हम यह जानना चाहब अपने किसान भाइन के लिए, खास करके देखें आज तो गाय के बहुत सी प्रजातियाँ हैं, लेकिन सरकार भी देसी गाय को लेकर के भी सजग बाटे और किसान भाइन के लिए भी प्रेरित कर बाटे, खास करके जो दैनिक जीवन में एक जौन उपयोगिता बाटे, चाहे भाई रोग रहित शरीर के बनाव में भाई एक भूमिका हो या अपने खेती के भी लिए बहुत महत्वपूर्ण बाटे, तो सरकार की ओर से जो देसी गाय के संवर्धन के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहा है, एक के बारे में हमारे किसान भाइन की जानकारी।
1: सरकार अभी जैसे कि आपने सुना होगा कि नंद बाबा एक स्कीम चलाई गई है, इसमें हम छोटे किसान पशुपालक भाई को लेके और बड़े पशुपालक भाई को इसमें इन्होंने इंगेज किया है। जैसे कि एक ज़िले में 15 पुरुष 15 महिलाएं, टोटल 30 आदमियों का प्रावधान दिया गया है कि वो दो गाय देसी गाय को नस्ल परचेज करेगा। अब दो गाय अगर वो परचेज करता है तो सरकार की तरफ से उसको 80,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है, जिसको उसे वापस नहीं करना है। अगर एक गाय की कीमत 70,000 रुपये है तो किसान को अपने पास से 20 से 30,000 रुपये लगाने की ज़रूरत है, जिससे वो अपने अपने पशुपालन को अच्छे तरीके से बढ़ा सकता है। दूसरा है 10 गाय का अनुदान, जिसमें कि 30 लाख रुपये का है, जिसमें कि सरकार 12 लाख रुपये का अनुदान दे रही है। ऐसे 25 गाय का है, जिसमें कि 80 लाख का, जिसमें 30 लाख रुपये सरकार अनुदान दे रही है। और उसके साथ साथ क्या होता है, जैसे कि आपका यूरिन निकलता है, उसका काउडंग निकलता है, आप उससे भी अपने 2 पैसे कमा सकते हैं। वर्पी कंपोस्ट बना के आप काउडंग ब्लॉक बना सकते हैं। अभी जैसे कि मैं गुजरात गया तो वहाँ मैंने देखा कि गोबर से बहुत अच्छा व्यवसाय हो रहा है, लोग लकड़ी बना रहे हैं, कंडे बना रहे हैं, और घरों में जो सजावटी इक्विपमेंट होते उसको बना रहे हैं वो लोग, वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है, जिससे ऑर्गेनिक खेती का भी बढ़ावा हो रहा है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब सही बताएं कि जो अपन देसी गाय भाई दूध के उत्पादन तो भाई उनका अच्छा है, ये साथ ही साथ जो सबसे बड़ा सहायता अपने खेती में मिलत बटे, जो प्राकृतिक खेती में खासकर जो जैविक आज आवश्यकता बटे कि तमाम तरह के जो रसायन के प्रयोग से अपन जो भूमि अपन बटे ओकर जो संरचना बटे वो अव्यवस्थित है थोड़ा सा, तो ऐसे में जो देसी गाय बटे भाई ओके गोबर से और ओके मूत्र से भाई जैविक खेती कीन जात बटे, तो एका लेके भाई तो किसान भाई के लिए ये होता है ना कि भाई को भाई इतना दूर खरीदे नहीं जा सकते हैं, तो अपने जैसे जनपद स्तर पे इस तरह से क्या ब्रीडिंग के लेके उनके किस तरह से प्रयास किया जाता है कि आसानी से अपने किसानों को उपलब्ध हो जाए, कि जाए के उनका जिसे बहुत से पहचान की भी समस्या होता है कि भाई वो बाहर गए ना उनका जानकारी नहीं है तो उनका कोनो भी नस्ल के गाय पकड़ाए देती ना जो ना, तो इस तरह के जो प्रयास हैं ओके बारे में बताओ।
1: देखिए ये बहुत बड़ी

किसान भाई अनाज उत्पादन के साथे साथे पशुपालन भी कृषि विविधीकरण के एक महत्वपूर्ण हिस्सा बाटे, जैसे भाई डेयरी उद्योग के जरिए अपन किसान भाई 4 पैसा के आमदनी भी करता है। और डेयरी उद्योग में खास करके अगर हम देसी गाय के बात करी तो ऐसे किस तरह से किसान भाई लाभ कमा सकते हैं, एक संवर्धन कैसे किया जा सकता, आज इस विषय के बारे में जानकारी दे के खातिर डॉक्टर राहुल

0: हमारे ये पशुपालक भाइयों के साथ ये समस्या आती है, तो आप ये कर सकते हैं कि आज के समय में बहुत सारी चीज़ें सरकार के द्वारा, जैसे कि NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो सरकार की संस्था है, जिससे आप सही सीमेन का भी सिलेक्शन कर सकते हो, जिसमें आपको सेक्स सीमेन, अभी तक क्या होता था कि आप नेचुरल ब्रीडिंग करते थे, सांड से बुल क्रॉस कराया जाता था, लेकिन अब सेक्स सीमेन आ चुके, जिससे कि जो उसके बच्चे आएंगे वो फीमेल होंगे। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, और आपका प्रोडक्शन बहुत बढ़ेगा। जो गाय 15 लीटर दे रही थी, तो जब आपका सेकंड जनरेशन आएगा, थर्ड जनरेशन आएगा, तो 20 लीटर 21 लीटर का आपके पास में पशु तैयार होगा, नंबर एक। दूसरी चीज़ होती है कि गायों का सिलेक्शन, तो आप किसी अच्छे सलाहकार डॉक्टर से कंसल्ट करें, आप किसी गौशाला पे जाएं। हमारे यूपी के अंदर में भी बहुत सारी गौशालाएं हैं जो सरकार के द्वारा अनुदान की गई हैं, नोएडा के अंदर में है, तो वहाँ पे आप जाके मिलो, आप देखो कि वहाँ पे जो गाय है उनका सिलेक्शन कैसे किया जाता है, उनकी ब्रीडिंग लेन कैसे तैयार की जाती है, उनको उसे कोई बीमारी ना हो, उसका लैक्टेशन लेन देखा जाता है कि उसका रिकॉर्ड कितना था, उसकी माँ कैसी थी, उसका माँ का रिकॉर्ड क्या था, ब्लड टेस्ट कराया जाता था। बहुत सारी चीज़ें होती जो आप एक टेक्निकल किसी डॉक्टर के साथ में जाके, अनुभवी आदमी के साथ में जाके आप गायों का सिलेक्शन करो, क्योंकि ये आपकी पूंजी है। अगर ये आपने सही सिलेक्शन नहीं किया, कई बार होता है कि गाय लेके आए, गाय में मैस्टाइटिस हो गई, थनेला हो गया, गाय का बच्चा खत्म हो गया, तो वो नुकसान होता है।
1: एक चीज जानना चाहब कि जैसे देसी गाय कौन किसान भाई रखत हैं और डेयरी उद्योग लगावे चाहता हैं, एक सामान्य गाय के जो दूध है और जो डेयरी उद्योग खास करके देसी गाय अपना है ओके, अगर उद्योग लगाए हैं ओके माध्यम से अपन डेयरी उत्पाद बनावता हैं, तो बाजार में एकर जो उत्पाद बांटे किस तरह से लाभप्रद है किसान भाई के लिए और किस तरह से एक काम कर सकते हैं
0: तो
1: वो।
0: आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ पशुपालक भाइयों से, कि अगर वो डेयरी पशुपालन करना चाहता है, डेयरी उद्योग करना चाहता है, तो कहानी क्या होती है कि आपने गाय का दूध निकाला, सपोज आप सोना पैदा कर रहे हैं, लेकिन आप जब किसी आदमी को देने जा रहे हो, किसी थर्ड पार्टी को देने जा रहे हो, तो आपकी वैल्यू नहीं मिलती है, क्योंकि वो आप कि वो 35 रुपये 40 रुपये में परचेज करता है। तो पशुपालक भाई क्या है कि अगर वो दूध प्रोडक्शन कर रहे हैं, डेयरी प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं, पनीर बना, अभी आप देसी गाय का घी आप खरीदने जाओ ओरिजिनल, तो 5 लीटर में 1 kg घी बनता है, तो 1819 लीटर में आपका 1 kg घी बनेगा आपका, तो 1800 रुपये किलो तो आपका घी बिक रहा है। तो आप खुद का प्रोडक्शन करो, आप घी बनाओ, पनीर बनाओ, जिससे आपकी आय, आपकी इनकम बढ़ेगी। लेकिन अगर आप किसी थर्ड पार्टी को दूध अपना देने जा रहे हो, तो उससे आपको बचना होगा। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए पशुपालक भाइयों की, अगर वो अपना दूध, अगर दो चार गाय रखा है, तो अपने दूध को खुद वो मार्केट में लेके जाए और खुद वो डोर टू डोर सप्लाई करे, जिससे उसका प्रॉफिट उसके अच्छा होगा।
1: बिल्कुल, तो एक अक्सर समस्या आवत है जो नहर के स्वास्थ्य के लेके, तो जो भी किसान भाई अपने यहाँ देसी गाय के पालन करे हैं, तो उनके टीकाकरण के लिए किस तरह से सरकार व्यवस्था करत है, चलत चलत बताओ मेरे किसान भाई की।
0: देखिए, उसमें सरकार में क्या, जैसे कि FMD हो गई, HS हो गया, BQ हो गया, ये सरकार की, आप हर ग्राम प्रधान में, हर ग्राम सभा में एक BOB हॉस्पिटल होते हैं, जिसमें ये सारी वैक्सीनेशन होती रहते हैं। आप अपने कंसल्ट डॉक्टर से मिले वहाँ पे, और हर महीने 6 महीने में 1 साल के अंदर में सरकार की तरफ से योजना है जो वैक्सीनेशन किया जाता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप देसी गाय के संवर्धन और उससे जुड़े लाभ के बारे में हमारे किसान भाई को जानकारी दें, निश्चय रूप से उनके लिए लाभप्रद हो। जानकारी देने खातिर भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर राहुल कुमार से प्रवीण कुमार मिश्र की बातचीत। विषय था किसान भाइयों के लिए देशी गाय का संवर्धन और उनसे जुड़े लाभ। इसी के साथ कृषि जगत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर शशांक शेखर त्रिपाठी को। विषय है योगासन और हमारा स्वास्थ्य।
1: सुखी और सफल जीवन जीने के लिए उत्तम स्वास्थ्य एक बड़ी ज़रूरत है। उत्तम स्वास्थ्य से मतलब हमारे उन तीनों स्तरों में बैलेंस या जुड़ाव से है जिससे जीवन चलता है। ये तीनों स्तर हैं शारीरिक स्तर, मानसिक स्तर और भावनात्मक स्तर। इनका आपस में सुंदर जोड़

0: ही उत्तम स्वास्थ्य है, या यूं कह लें कि मजबूत दोष रहित शरीर, सकारात्मक मन और संतुलित भावनाएं, ये तीनों जिसके पास है वही उत्तम स्वास्थ्य का धनी है। योगासन ऐसे ही स्वास्थ्य को पाने के लिए एक पुरानी भारतीय विद्या है जो महर्षि पतंजलि ने आज से हजारों साल पहले दी थी। आज योगासन ही योग के रूप में ज़्यादा फैलता जा रहा है, लेकिन वास्तव में ये तो योग के 8 अंगों में से ही एक अंग है, जिसका उपयोग विशेष रूप से शरीर शुद्धि व शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जब हम योगासनों का अभ्यास शुरू करते हैं तो कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। पहली बात, कुशल शिक्षक या ट्रेनर की देखरेख में अभ्यास करना, जिससे गलती की गुंजाइश ना रहे। दूसरा, खाली पेट अभ्यास करना। और तीसरी बात, उचित खान पान का ध्यान रखना। जब हम योगासन करते हैं तो अपने शरीर को अलग अलग स्थिति और मुद्राओं में रखते हैं। ये सारी स्थितियाँ ध्यान से देखेंगे तो पशु पक्षियों और प्रकृति से जुड़ी हुई होती हैं, जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले प्रकृति के बहुत पास रहने के कारण सीखा। ऐसा माना गया है कि जितने जीव जंतु हैं उतने आसन हैं, लेकिन सुविधा और अभ्यास के लिए हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, सामान्य अभ्यास, जिसे सभी उम्र के लोग कर सकते हैं। दूसरा, विशेष अभ्यास, जिसे एक निश्चित उम्र के लोग अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से करते हैं। और तीसरा भाग है रोग मुक्ति के लिए अभ्यास, जिसे योग शिक्षक की देखरेख में निश्चित समय तक एक कोर्स की तरह करते हैं। अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग आसनों की एक श्रृंखला होती है, जैसे याददाश्त और एकाग्रता के लिए ताड़ासन, पश्चिमोत्तानासन, पूर्णचंद्रासन कर सकते हैं। कब्ज के लिए कटिचक्रासन, नौका आसन, पवन मुक्तासन बहुत उपयोगी होता है। बाल झड़ते हों तो चक्रासन, अनिद्रा हो तो सिंहासन, सर्वांगासन और शीर्षासन करने पर लाभ होता है। उच्च रक्तचाप के लिए शलभासन, त्रिकोणासन, भुजंगासन लाभकारी होता है। ऐसे ही अलग अलग समस्या और रोगों के लिए योगासनों का एक पूरा कोर्स होता है, जिसमें योग के अन्य अंगों को जोड़ दिया जाए, जैसे प्राणायाम और ध्यान, तो योगासन बहुत जल्दी लाभ देता है। योगासन के बाद विश्राम बहुत जरूरी होता है, इसी विश्राम से हमें नई ऊर्जा और ताजगी मिलती है। आज की भागती दौड़ती जीवन शैली में समय की कमी के कारण लोग कम समय में अधिक लाभ लेना चाहते हैं। सूर्य नमस्कार ऐसा ही योगासन है। इसमें प्राणायाम और 7 योगासनों का समूह है, जो कम समय में ही चमत्कारिक लाभ देता है। वैज्ञानिकों ने इसे मधुमेह, मोटापा, एकाग्रता, रक्त शुद्धि और सुडौल शरीर पाने के लिए सबसे अच्छा योगासन माना है। आज भारत समेत पूरी दुनिया में योगासनों पर वैज्ञानिकों और बड़ी बड़ी चिकित्सा संस्थाओं ने अपनी मुहर लगाई है। एम्स जैसे संस्थान ने इसे कैंसर और एड्स जैसे रोगों के लिए लाभकारी माना है। यह वैज्ञानिक तथ्य है कि जब हम योगासन करते हैं तो हमारे शरीर की कोशिकाओं में जमा टॉक्सिन और कार्टिसल हार्मोन, जो कि तनाव का मुख्य कारण है, वह अपने आप ही शरीर से बाहर निकल जाता है। योगासन से हमारे लिए घातक कोलेस्ट्रॉल LDL की शरीर में कमी या समाप्ति ही हो जाती है, और फायदेमंद कोलेस्ट्रॉल HDL की मात्रा बढ़ जाती है। योगासन से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अच्छी हो जाती है, जिससे हर समय हम नई स्फूर्ति और ताजगी का अनुभव करते हैं। आज पूरी दुनिया योगासनों के महत्व को समझ रही है। हम भी योगासन को अपनी रोजमर्रा की जीवन शैली में अपनाकर खुद को स्वस्थ रखते हुए एक आदर्श स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शशांक शेखर त्रिपाठी को। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

सात बजे सुने श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। फिल्मों से लिए गए भजन का आनंद लीजिएगा 7:10 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए 7:30 पर विदुषी सुलोचना का ख्याल गायन, 12:15 पर पंडित अनुपम राय का तबला वादन और रात 10:30 पर गुरु प्रसाद शर्मा का वायलिन वादन। 8:45 पर कार्यक्रम होगा नमस्कार प्रयागराज, 9:50 पर और रात 7:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा।

कर 30 मिनट पर गुरु प्रसाद शर्मा का वायलिन वादन। 8:45 पर कार्यक्रम होगा नमस्कार प्रयागराज। 9:50 पर और रात 7:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा।

10:05 पर वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम में नूपुर जोशी से नेहा गुप्ता और अभय कांत तिवारी की बातचीत का पहला भाग सुनवाया जाएगा। 11 बजे सुनिए एक ही कलाकार कार्यक्रम। 12:30 पर आपकी पसंद कार्यक्रम होगा।

1:15 पर बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी, जिसके अंतर्गत सुनिएगा अंतरा सिंह की वार्ता, आयकर रिटर्न फाइलिंग भ्रम और समाधान। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम होगा उमंग दोपहर 2:30 बजे। शाम 5 बजे नन्हे मुन्ने बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया। 5:15 पर युवाड़ी कार्यक्रम होगा। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में सुनिए अभय राज यादव और साथी के गाय लोकगीत के साथ अनीस देहाती का लोकभाषा कविता पाठ। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में डॉक्टर वर्षा अग्रवाल की वार्ता सुनवाई जाएगी जयशंकर प्रसाद के नाटकों में देश प्रेम। 8:30 पर विज्ञान जगत कार्यक्रम होगा। गजलों पर आधारित कार्यक्रम सुनेगा कहकशा रात 9:30 पर। ये थी रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कुछ पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

साक्षीराज गरुड़ काकभुशुंडी से ज्ञान और भक्ति का निरूपण सुनकर वैकुंठ को जा चुके हैं। भगवान शिव गरुड़ काकभुशुंडी संवाद की कथा पार्वती को सुनाते हुए उसका समापन करते हैं। हे उमा, वो कुल धन्य है जिसमें श्री राम के अनन्य भक्त का जन्म होता है। तुम्हारा अनुराग देखकर मैंने ये कथा तुम्हें सुनाई है। ये आख्यान धूर्त व्यक्ति को नहीं सुनाना चाहिए, नहीं उन हठधर्मियों को जो प्रभु लीलाओं का गान मन लगाकर और श्रद्धा के साथ नहीं सुनते। ये कथा लोभी, क्रोधी तथा कामी लोगों को भी नहीं सुनानी चाहिए। इसे सुनने के अधिकारी वे होते हैं जिनकी गुरु चरणों में प्रीति होती है और जो नीति के मार्ग पर चलते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से जन्म मरण की व्याधि से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। जो इसे कहते सुनते और इसकी प्रशंसा करते हैं, उन्हें भव सागर पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। भरतवाज मुनि को शिव पार्वती के माध्यम से राम कथा याज्ञवल्क्य जी ने सुनाई, कहा, शंभु और उमा का ये कल्याणकारी संवाद शोक का नाश कर जन्म मरण से मुक्ति दिलाने वाला है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ, संगीत सतीश भाटिया का था। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्मों से लिए गए भजन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मसाल फिल्म के इस खूबसूरत भजन के साथ, आवाज लता मंगेशकर की, बोल जयदेव के और संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का।

अगली रचना हमने ली है सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से, आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की, बोल पंडित नरेंद्र शर्मा के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के इस खूबसूरत भक्ति रचना के साथ ही फिल्मों से लिए गए भजन का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

नरेंद्र मिश्रा ने कहा, आगामी 22 जुलाई को श्रीराम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति पर होगा फैसला।

0: और सरकार ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज पूरे देश में घोषित किया एक दिन का राष्ट्रीय शोक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में पौधरोपण महाभियान एक पेड़ माँ के नाम के तहत कल 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पवित्र त्रिवेणी के पौधों को रोपकर इस महाभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
1: यूपी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी वृद्धि हुई है। नए नए एक्सप्रेसवे, हाईवे, सड़कों का एक लंबा जाल बिछा है। नए नए उद्योग आए हैं। शहरीकरण में भी नई नई कॉलोनियां बनी हैं, बसी हैं। सबसे ज्यादा भौतिक विकास की गति को तेज करने में योगदान देने वाले राज्य के रूप में यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है। लेकिन सबसे ज्यादा भौतिक विकास के साथ साथ पर्यावरण की दृष्टि से बड़े राज्यों में यूपी ने अपने बनाच्छादन को भी विस्तार देने में सफलता प्राप्त की है।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विकास वाटिका की स्थापना, वानिकी आधारित कैलेंडर का विमोचन और मौलसी का पौधा लगाकर हरित उत्तर प्रदेश के संकल्प को भी आगे बढ़ाया। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को पौधे और चेक प्रदान किए। कार्यक्रम में प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना भी मौजूद थे। प्रदेश भर में चलाए गए पौधरोपण महाभियान के क्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल जनभवन परिसर में सफेद चंदन का पौधा रोपित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि सभी को प्रकृति के संरक्षण और स्वस्थ जीवन पद्धति को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए।
2: कार्यक्रम के दौरान जन भवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जन भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40,29,00,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। यह अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
0: कल प्रदेश भर में जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने पौधरोपण अभियान में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
3: पौधरोपण महाअभियान के तहत उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने बाराबंकी में कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान पर्यावरण संरक्षण और माँ के सम्मान से जुड़ा महत्वपूर्ण जन अभियान है। आगरा के सिंगंदरा में स्थानीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने पौधारोपण कर इस अभियान की शुरुआत की। बागपत में केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी और केपी मलिक ने वृक्षारोपण किया। कानपुर नगर में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, देवरिया में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, इटावा में राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने पौधारोपण किया। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। कल से वाहन इस एक्सप्रेसवे पर दौड़ने लगेंगे।
4: 63 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे लखनऊ और कानपुर के बीच की यात्रा के समय को मौजूदा 3 घंटे से घटाकर केवल 45 मिनट कर देगा। इस एक्सप्रेसवे पर दुपहिया वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी। यह भारत का पहला बैरियर मुक्त एक्सप्रेसवे भी बनेगा, जिसमें टोल प्लाजा से 500 मीटर पहले ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे और फास्टैग रीडर लगाए गए हैं, ताकि वाहनों को रोके बिना टोल टैक्स काटा जा सके। हादसे की स्थिति में AI सक्षम कैमरे तुरंत NHAI नियंत्रण कक्ष को सूचित कर देंगे। इस एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय राजमार्ग लखनऊ कानपुर उन्नाव लालगंज के साथ साथ गंगा एक्सप्रेस से आउटर रिंग रोड से भी कनेक्ट किया गया है। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार लखनऊ।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कल अयोध्या में बताया कि आगामी 22 जुलाई को श्री राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होगी, जिसमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO की नियुक्ति, समितियों और उप समितियों के भविष्य सहित कई प्रशासनिक विषयों पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि CEO ट्रस्ट के अधीन ही काम करेंगे।
5: मुख्य प्रबंधक

0: अधिकारी होंगे तो वह ट्रस्ट के अधीन प्रबंधन का कार्य देखेंगे और यह तो ट्रस्ट पर निर्भर करेगा कि वह किस प्रकार का डेलीगेशन सीईओ को करते हैं और जैसा डेलीगेशन करेंगे वैसे ही फिर सीईओ जो है वो अपना स्टाफ वहां पर व्यवस्था की करेंगे, लेकिन सब कुछ ट्रस्ट के अधीन है।
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। यह योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। एक रिपोर्ट।
2: ईपीएफओ की एमनेस्टी योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। भारत सरकार ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। इस दौरान पूरे देश में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। आगामी अंक के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। प्रदेश में कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ से जुड़े मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि राज्य के तराई और पूर्वांचल के कई जिलों में 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होने का अनुमान है।
3: मानसून का तराई बेल्ट में शिफ्ट हो गया है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के जो तराई क्षेत्र हैं जैसा कि लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, कुशीनगर, देवरिया में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। बाकी जगह की बात करें तो स्पेशली पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर बादलों की आवाजाही रहेगी तथा कुछ जगहों पर छिटपुट वर्षा की संभावना है। तो कुल मिला के सिलसिला 2 से 3 दिनों तक रहेगा।
1: इस बीच बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में पौधरोपण महाभियान के तहत लगाए गए 35 करोड़ से अधिक पौधे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार ने उठाए महत्वपूर्ण कदम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का करेंगे लोकार्पण। श्रीराम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कहा, आगामी 22 जुलाई को श्रीराम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति पर होगा फैसला। और सरकार ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज पूरे देश में घोषित किया एक दिन का राष्ट्रीय शोक। इसके साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए विदुषी सुलोचना बृहस्पति का ख्याल गायन, राग अहिर भैरव।

रे भाई ऐसे रहने की ना।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विदुषी सुलोचना बृहस्पति का ख्याल गायन, राग अहीर भैरव। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने को है, कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।

0: द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार, पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में होंगे लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक

0: 2026 पारित किए थे।
1: पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। राज्यपाल आरएन रवि की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना वाले व्यक्ति को अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक हिरासत के आदेश राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत डीआईजी रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
2: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स सीईओई और आईसीईएक्स स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के रिशित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत 2022 के बाद दूसरी बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है।
3: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

0: का लोकार्पण करेंगे, जो AI आधारित वित्तीय अपराध जांच, मीडिया फोरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसके साथ ही ऑनलाइन साक्ष्य जुटाने में सक्षम एशिया की पहली स्वदेशी साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस सम्मेलन में 30 से अधिक वैश्विक कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके बाद दोपहर को सहकार से समृद्धि का संकल्प आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री दहगाम में कृषि उपज मंडी समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नवनिर्मित सब यार्ड का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: भोपाल में आज MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप्स, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रूपए, राजगीर के लिए 4000 रूपए, वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रूपए और कैमूर के लिए 6000 रूपए में टिकट बुक कर सकते हैं। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
1: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र में वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताजा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां

0: ग्रैंड स्लैम खिताब है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच फिर सैन्य टकराव आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जंग फिर शुरू, हॉर्मूज बंद। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और यूएई को बनाया निशाना। वहीं नव भारत टाइम्स ने लिखा है, ओमान के पास व्यापारी जहाज पर हमला, 10 भारतीय बचाए गए, एक लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो होना चाहिए निलंबन, जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने की सिफारिश, मानसून सत्र में पेश हो सकती है समिति की रिपोर्ट। नए वोटर के लिए माता पिता का एसआईआर ब्यौरा अनिवार्य, दैनिक जागरण के अनुसार मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने लागू किया नया प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया न्यूजीलैंड यात्रा पर अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, वैश्विक भू राजनीतिक संकटों के दौर में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय केवल द्विपक्षीय रिश्तों का विस्तार नहीं है, बल्कि ये तेजी से बदल रहे हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी है। आने वाला दशक दोनों देशों के संबंधों को हिंद प्रशांत के सबसे सशक्त और भरोसेमंद साझेदारियों में बदल सकता है। उत्तराखंड के गांवों से बढ़ते पलायन पर राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, देव भूमि से रूठे देव, पर्यटकों को बुला रहे पहाड़ पर, अपने लोगों से टूट रहा नाता, राज्य के 15% गांव अब निर्जन, पलायन करने में युवा आगे।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। 2 न्यू एंटी क्राइम लॉज पास्ड बाय वेस्ट बंगाल असेंबली कम इनटू फोर्स इन द स्टेट टुडे। ISRO successfully carries out 3 major tests of Gaganyaan crew module systems. 5 Indian students win gold medals at 56th International Physics Olympiad 2026. India secures world number 1 rank jointly with other countries. IMD forecasts heavy rainfall over northeast India, West Bengal and Bihar during next 2 to 3 days. US launches fresh strikes on Iran. And Yannick Sinner beats Alexander Zverev to retain Wimbledon men's singles title. And now the news in detail. In West Bengal, 2 new anti-crime laws come into force in the state today. State Governor Arun Ravi has given his assent to the bill related to the control of anti-social activities. In June this year, the Assembly passed the stringent anti-crime bills, the West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill 2026 and the West Bengal Maintenance of Public Order Amendment Bill 2026. More from our correspondent.
3: Under the West Bengal Public Safety and Control of Antisocial Activities Act 2026, a person involved in antisocial activities or one who is likely to engage in such activities in the future may be placed under preventive detention. Such a person can be detained for a maximum period of 1 year. The state government says the new law will enable quicker and stricter action against antisocial activities, riots, attacks on police personnel and organized crime. Chief Minister Shubhendu Odhikari has earlier stated that violence or

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मगरबी बंगाल असेंबली ने जराइम की रोकथाम के लिए जो नए कवानीन मंजूर किए थे वो आज से रियासत भर में लागू हो गए हैं। इसरो ने गगनयान अमले के मॉड्यूल निजाम के कामयाब तजर्बे किए हैं। 5 भारतीय तलबा ने 56वें बैन अलाक्वामी फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में सोने के तमगे जीते हैं। भारत के महकमे मौसमियात ने शिमाल मशरकी भारत, मगरबी बंगाल और बिहार में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है। अमरीका ने ईरान पर ताज़ा हमले किए हैं और यानिक सिनर ने अलेक्सेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन मर्दों के सिंगल्स का खिताब अपने पास बरकरार रखा है। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल असेंबली ने जराइम की रोकथाम के लिए जो 3 कवानीन मंजूर किए थे वो रियासत में आज से लागू हो गए हैं। रियासत के गवर्नर ने समाज मुखालिफ सरगर्मियों पर काबू पाने के इस बिल को अपनी मंजूरी दे दी है। इस साल जून में मगरबी बंगाल असेंबली ने जराइम की रोकथाम के हंगामी बिलों को मंजूरी दी थी। इन कवानीन में मगरबी बंगाल अवामी हिफाजत और समाज मुखालिफ सरगर्मियों पर काबू पाने से मुतालिक बिल 2026 और मगरबी बंगाल में नज्म व नसक बरकरार रखने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 शामिल है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मगरबी बंगाल अवामी हिफाजत और समाज मुखालिफ सरगर्मियों पर काबू पाने से मुतालिक कानून 2026 के तहत समाज मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस कोई शख्स या वो शख्स जो मुस्तकबिल में इस तरह की सरगर्मियों में मुलविस हो सकता हो उसे रोकथाम के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। इस तरह के किसी भी शख्स को ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक के लिए हिरासत में

0: देखा जा सकता है। रियासती सरकार ने कहा है कि इस नए कानून से समाज मुखालिफ सरगर्मियों, फसादात, पुलिस अमले पर हमलों और मुनज्जम जराइम की रोकथाम के लिए फौरी और सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। वज़ीर आला सुविंदु अधिकारी ने इससे पहले कहा था कि मुजाहिरों के नाम पर तशद्दुद या अवामी नज्म व नस्क में रखना अंदाजी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर की कि यह नया कानून खवातीन और बच्चों की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने में अहम रोल अदा करेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: 5 भारतीय तलबा ने 56वें बैन अलाक़वामी फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में सोने के तमगे जीते हैं। ये मुकाबले कोलंबिया के बुकारामांगा शहर में इस महीने की 4 से 12 तारीख के दरमियान मुनाकद किए गए। ये गैर मामूली कारकर्दगी अंजाम देकर बैन अलाक़वामी सतह पर साइंस की तालीम और महारत के मैदान में भारत ने एक बार फिर अपने बढ़ते हुए कद का मुजाहरा किया है। एक रिपोर्ट।
0: तबीयात के 56वें बैन अलाक़वामी ओलंपियाड में इन नौजवान माहिरीन तबीयात ने इस गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करके कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। तलाई तमगा जीतने वाले इन नौजवानों के नाम हैं पुणे के कंशिक जैन, इंदौर के रिधर्श आनंद बंदाले, नई दिल्ली के रिशित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सूर्या और अहमदाबाद के सावित्र जोशी। इन मुकाबलों में 87 मुल्कों के 381 तलबा ने हिस्सा लिया, जबकि भारत ने रूस, चीन, कजाकिस्तान, जुनूबी कोरिया और ताइवान के साथ मिलकर पहला मकाम हासिल किया है। इस हुसूलियाबी से भारत के ओलंपियाड प्रोग्राम की ताकत का अंदाज़ा होता है, जिसकी क़यादत साइंसी तालीम के होमी भाभा मरकज़ ने की, जो बुनियादी तहकीक के टाटा इंस्टीट्यूट का एक कौमी मरकज़ है। सोमिया शारन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इंटरपोल के डिजिटल फोरेंसिक माहिरीन के ग्रुप की 11वीं मीटिंग की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। इस तकरीब के साथ जराइम के तहकीकारों का पहला बैन अलाक़वामी मुकाबला और समिट भी मुनक़िद होगा। ये तकरीब आज गांधीनगर में फोरेंसिक उलूम की कौमी यूनिवर्सिटी के कैंपस में मुनक़िद होगी। इस बाबाकार आलमी फोरम में, जिसकी मेज़बानी भारत 2022 से दूसरी बार कर रहा है, आला शख्सियतें शिरकत करेंगी, जिसमें वज़ीर आला भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र पटेल, नायब वज़ीर आला हर्ष सांघवी और 47 मुल्कों के कानून नाफिज करने वाले मंदूबीन शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
0: जनाब शाह इस तकरीब के दौरान महारत के 3 सरकर्दा मरकजों का आगाज करेंगे, जिसमें मसनूई ज़हानत की मदद से जराइम की तफ्तीश, मौके वारदात की देखभाल और भारत के पहले मीडिया फोरेंसिक मरकज पर तवज्जो दी जाएगी। वो मुल्की में तैयार की गई एशिया की पहली साइबर फोरेंसिक तफ्तीशी वैन और मुल्की में तैयार की गई मोबाइल लेबोरेटरी का भी आगाज करेंगे, जो मौके वारदात पर शवाहिद बरवक्त इकट्ठा करने की सलाहियत की हामिल है। इस तकरीब की खास बात यह है कि आला तकनीक से मुतालिक नुमाइश भी, जिसमें गूगल समेत दुनिया के 30 से ज्यादा बड़े मुल्कों के जदीद तरीन साइबर सिक्योरिटी टूल्स भी शामिल हैं। वजीर दाखिला दोपहर बाद सेकार से समृद्धि का खाका पेश करेंगे। वो धीगम का दौरा करेंगे और अमृत महोत्सव तकरीबात के दौरान सब्जियों के एक नए तामीर शुदा APMC अहाते को अवाम के लिए वक्फ करेंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के हमरा आज सुपहर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह करेंगे। वो उन्नाव में 49 किलोमीटर तक एक्सप्रेसवे का मुआयना करेंगे। भारत की दूसरी सबसे तवील कॉरिडोर के साथ 63 किलोमीटर 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे भी मुल्क का पहला एक्सप्रेसवे है, जिसे ऑटोमेटिक और जदीद मशीन और जदीद तामीराती टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है। भोपाल में आज मध्य प्रदेश टेक्नोलॉजी तरक्की का तीसरा इजलास MPTech ग्रोथ कॉन्क्लेव स्वयं मुनक़िद किया जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव इस तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। इस मुकम्मल इजलास में असल तवज्जो सलाहियत के आलमी मरकजों, डेटा मरकजों और सेमीकंडक्टर शोबे के फरोग पर मरकूज की जाएगी। डॉक्टर यादव टेक्नोलॉजी पर मबनी सनअती तरक्की से मुतालिक रियासती सरकार के खाके की भी जानकारी देंगे। वो सरमायाकारी और नए प्रोजेक्टों पर बातचीत के लिए सरकर्दा सनअतकारों में से हरेक के साथ अलग अलग मुलाकातें करेंगे। इस इजलास में भारत और बैरूनी मुल्कों की टेक्नोलॉजी की सरकर्दा कंपनियों के नुमाइंदे, सरमायाकार, स्टार्टअप्स, सनती इदारे और तालीमी इदारे यकजा होंगे। बिहार में आज हेलीकॉप्टर के जरिए फजाई सियाहती खिदमत शुरू की जा रही है। वजीर आला सम्राट चौधरी पटना से इस स्कीम का आगाज करेंगे। इस स्कीम

0: गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में इस माह की 26 तारीख को मुल्क के आवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 136वां नशरिया होगा। लोग इस प्रोग्राम के लिए अपने ख्यालात और तजावीज़ इस टोल फ्री नंबर पर भेज सकते हैं 1-800-11-7800। लोग अपनी राय नरेंद्र मोदी ऐप या माई गव ओपन फोरम पर भी भेज सकते हैं। छत्तीसगढ़ असेंबली का मानसून इजलास आज से शुरू हो गया है। ये इजलास इस महीने की 17 तारीख तक जारी रहेगा। इस इजलास के दौरान माली मामलात पर गौर किया जाएगा और रियासती हुकूमत तकरीबन 8 तरमीमी बिलों का भी ऐलान करेगी। इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी APMC के अमृत महोत्सव के दौरान सब्जी के नए सबयार्ड का इफ्तिताह करेंगे। इमदाद बाहमी की वजारत के मुताबिक इस प्रोग्राम के दौरान जनाब शाह एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत पौधा लगाएंगे और APMC के अमृत महोत्सव के मौके पर तैयार की गई एक यादगारी किताब का इजरा करेंगे। भारत ने कतर के मौजूदा अमीर के वालिद शेख हमद बिन अल खलीफा अस्सानी के इंतकाल पर आज एक दिन के कौमी शोक का ऐलान किया है। शेख हमद बिन अल खलीफा अस्सानी का कल इंतकाल हो गया था। मुल्क भर में इस दौरान तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू रहेगा। इसके अलावा आज कोई सरकारी तकरीब मुनक़द नहीं की जाएगी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में इस खबर को अहमियत के साथ सफाए अव्वल पर शाया किया है कि ईरान के पासदाना ने इनकलाब के इंतबाह के बावजूद अमरीका की मरकजी कमान ने कहा है कि आबनाए हुरमुज उन सभी जहाज़ों के लिए खुला रहेगा जो कानूनी तौर पर यहाँ से गुजरना चाहते हैं। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, अम्मान के साहिल पर तिजारती जहाज पर हमला। वजारत खारजा ने सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि कशीदगी को कम किया जाए और सिफारती बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश की जाए।
0: आखिर में खास खास खबरें। मगरबी बंगाल असेंबली ने जराइम की रोकथाम के लिए जो नए कवानीन मंजूर किए थे वो आज से रियासत भर में लागू हो गए हैं। इसरो ने गगनयान हमले के मॉड्यूल निज़ाम के कामयाब तजर्बे किए हैं। 5 भारतीय तलबा ने 56वें बैन अलावी फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में सोने के तमगे जीते हैं। भारत के महकमा मौसमियात ने शिमाल मशरकी भारत, मगरबी बंगाल और बिहार में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है। अमरीका ने ईरान पर ताज़ा हमले किए हैं और यानिक सिनर ने अलेक्सेंडर ज़्वेरेव को हराकर विंबलडन मर्दों के सिंगल्स का खिताब अपने पास बरकरार रखा है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
6: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। इस कार्यक्रम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त नीलम सिंह। जुड़ जाइए इस कार्यक्रम में अपने सुविचार के साथ और लिख भेजिए हमें अपने सुविचार। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250 पर और फेसबुक के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं, तो जुड़ जाइए इस कार्यक्रम।

रमे और हम बात करेंगे आज समाज में रहने और दूसरों के साथ बातचीत करने, सम्मान दिखाने, शालीनता बनाए रखने का एक नैतिक और व्यवहारिक तरीके की। बड़ों का आदर करना, छोटों से स्नेह बात करना और हमेशा मधुर भाषा का प्रयोग करना, ये हमारी विनम्रता कहलाती है। और किसी की बात को ध्यान से सुनना, उसका अपमान न करना, सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन बनाए रखना हमारा दूसरों के प्रति सम्मान कहलाता है। श्रोताओं, किसी दुर्घटना या संकट के समय लोगों का मजाक उड़ाने के बजाय हमें उनकी मदद करनी चाहिए, ये कहलाता है शिष्टाचार यानी गुड मैनर्स।

हम अपने विषय पर लौटेंगे, बात करेंगे और भी, लेकिन उससे पहले पढ़ लेते हैं आपके विचार जो आपने हमें फेसबुक के माध्यम से भेजा है इस कार्यक्रम में। सबसे पहला विचार है नीरा त्रिपाठी जी का। ये लिखती हैं कि शकुनी ने तलवार नहीं उठाई फिर भी वंश उजाड़ दिया। उसने वार इंसान पर नहीं विश्वास पर किया था। जहां कपटी सलाहकार बैठ जाएं वहां समझदार लोग भी विनाश की ओर चले जाते हैं। बहुत ही सुंदर विचार लिखा है। और ये अगला विचार है श्याम जी नैनी प्रयागराज से। ये लिखते हैं नीलम जी नमस्ते। जी नमस्ते आपको भी। और इनका विचार है आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस ये हम पर निर्भर करता है।

कि हमने आशा किससे और विश्वास किस पर किया है। अगला विचार है परसा टोला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से। इन्होंने लिखा है ओम प्रकाश मसिया जी ने, ये लिखते हैं कि अपनी ज़िंदगी में किसी भी दिन को मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियाँ लाता है और बुरा दिन अनुभव सिखाता है। एक सफल जिंदगी के लिए दोनों ही ज़रूरी होता है। बहुत ही सुंदर विचार आपने लिख भेजा है हमें आपने। और अगला विचार

है और बुरा दिन अनुभव सिखाता है। एक सफल जिंदगी के लिए दोनों ही जरूरी होता है। बहुत ही सुंदर विचार आपने लिख भेजा है हमें आपने। और अगला विचार है दिनेश जी का, ये लिखते हैं गुड मॉर्निंग नीलम जी, जी आपको भी गुड मॉर्निंग। इनका विचार है कि रिश्तों की खूबसूरती बड़े वादों से नहीं, रोज निभाई जाने वाली छोटी छोटी परवाह में छिपी होती है। जहां समझ, विश्वास और अपनापन हो, वही रिश्ता सच्चा अमूल्यवान बन जाता है। बहुत ही सुंदर विचार आपने लिखा है, आपके विचार के लिए आपको धन्यवाद। और अगला विचार लिखा है उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी, धमधा ग्राम सुखरी कला से। ये लिखते हैं रेडियो की पहचान उसकी आवाज़ नहीं बल्कि श्रोताओं के दिलों से उसका जुड़ाव है। जी हाँ श्रोताओं, आप जब सुनते हैं और कार्यक्रम हमारा पसंद करते हैं तो ये जुड़ाव हमारा और आपका बन जाता है। बहुत ही सुंदर सुंदर विचार आप सभी ने लिखा है। और ये इन्होंने विचार तो नहीं लिखा बट अपना नाम भेजा है, अनोखीलाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही मौर्य जी ने। बहुत ही सुंदर लग रहा है कि आप कार्यक्रम को सुन रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। अगला विचार भेजा है, ये लिखते हैं कि नकारात्मकता एक विष की तरह होती है जो धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को खत्म कर देती है, इसलिए हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने का प्रयास करें। जी हाँ, ये तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमें सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। कृष्णपाल सिंह चौहान, श्रीमती तारा देवी चौहान, वैभव पाल सिंह जी का हृदय से हमारा धन्यवाद है। बहुत ही सुंदर विचार आप सभी ने भेजे हैं। ये लिखते हैं, अगला विचार लिखा है बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपकी तमाम उलझने ईश्वर सुलझा देगा। बहुत ही सुंदर विचार आपने भेजा है संबलपुर कंकेर से। धन्यवाद आप सभी सुनने वाले श्रोताओं को। आप ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार हमें लिखकर भेजते रहिए और हमें आप तक आपका विचार पढ़कर सुनाना बहुत अच्छा लगता है। और आप हमारे कार्यक्रम को पसंद करते हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और हम बात कर रहे थे शिष्टाचार की। श्रोताओं, हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों के साथ वैसा बर्ताव करें जैसे हम अपने लिए चाहते हैं, क्योंकि शिष्टाचार छोटी चीज़ है पर यही बड़े दिल का परिचय देती है। शिष्टाचार वो आईना है जिसमें हमारा चरित्र दिखता है। हमें हमेशा धन्यवाद, कृपया और माफ़ कीजिए जैसे शब्दों को बोलने में हिचकिचाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए और हमारे रिश्ते मजबूत करते हैं यही शब्द। इनमें शिष्टाचार है, हम मीठा बोलकर सबका मन जीत लेते हैं और कड़वा बोलकर सबसे दूर हो जाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,

0: 8700142
1: ও 8700142 लो अभी फोन लगाता हूँ 8700042 पर।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह।
3: अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हम आकाशवाणी की प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। लीजिए सुनिए दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म से ये खूबसूरत संगीत, आवाज लता मंगेशकर की, बोल शैलेंद्र के और संगीत शंकर जयकिशन का।

अभी आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में हीर रांझा फिल्म का ये गीत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला व अंतिम गीत पारस मणि फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

पारस मड़ी फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बलिया और फिरोजाबाद जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बलिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विनय कुमार का।
1: बलिया जनपद में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में 8 जुलाई 2026 को जननायक चंद्रशेखर स्मृति दिवस के अवसर पर कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र कुमार शुक्ला, विश्वविद्यालय के अधिकारी, प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों ने जननायक चंद्रशेखर की स्मृतियों को नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस अवसर पर चंद्रशेखर नीति अध्ययन केंद्र एवं शोध पीठ के तत्वाधान में लोक स्मृतियों में चंद्रशेखर विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र कुमार ने कहा कि चंद्रशेखर जी ने भारतीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। चंद्रशेखर जी ने जो संकल्प लिया, दृढ़ इच्छा शक्ति से उसे पूर्ण किया। चंद्रशेखर जी के व्यक्तित्व से विद्यार्थियों को सीख लेनी चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण के भाव से कार्य करना चाहिए। संपूर्ण जनपद में अनेक जगह कार्यक्रम कर श्रद्धांजलि दी गयी। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अनुराधा राय ने बताया कि
2: चंद्रशेखर जी के साथ मेरी बचपन की एक अमिट स्मृति अंकित है। जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई के दौरान हमें चंद्रशेखर जी को सुनने और उनसे मिलने के लिए पास के गांव में ले जाया गया। गांव के लोगों की समस्या को सुनकर बेहद ही सरल और स्वाभाविक भोजपुरी में उन्होंने कहा कि आपकी समस्या का निवारण निश्चित होगा, ना कोई बड़े वाद

0: ना ऊंचा मंच, ना महंगे वस्त्र, एक सामान्य भारतीय व्यक्ति की प्रतिछाया चंद्रशेखर जी।
1: बलिया जिले में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में 29 जुलाई 2026 को प्रस्तावित दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल के संभावित आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र कुमार शुक्ल के साथ जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह एवं मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज ने विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विश्वविद्यालय में दीक्षांत से पहले अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा 10 गांव गोद लिया गया है, जिसमें गांव के शिक्षा, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए समाज कार्य विभाग द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन समय समय पर किया जाता है। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग के विभागाध्यक्ष एवं निदेशक शैक्षणिक डॉक्टर पुष्पा मिश्रा ने बताया कि
2: जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के अष्टम दीक्षांत समारोह के उपलक्ष्य में समाज कार्य विभाग द्वारा 7 जुलाई से 10 जुलाई तक विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए गांवों में प्राथमिक, उच्चतर प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए चित्रकला, भाषण प्रतियोगिता एवं कहानी लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों में रचनात्मक अभिव्यक्ति की क्षमता, भाषाई दक्षता, आत्मविश्वास तथा देशभक्ति की भावना का विकास करना था।
1: बलिया में दानवीर भामाशाह की जयंती विकास भवन सभागार में राज्य कर विभाग द्वारा व्यापारी कल्याण दिवस आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के परिवहन मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं दानवीर भामाशाह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक गीत संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई, साथ ही भामाशाह के चित्रों एवं लघु फिल्म के माध्यम से उनके जीवन, व्यक्तित्व और राष्ट्र सेवा में दिए गए योगदान को उपस्थित लोगों के सामने प्रदर्शित किया गया। मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जिले के 10 प्रमुख करदाताओं को भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया। इसके अलावा विभिन्न नए उद्यमियों एवं करदाताओं को भी सम्मानित कर उनके योगदान की सराहना की। कार्यक्रम में बलिया के उद्यमियों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP के तहत सत्तू और बिंदी के आकर्षक स्टॉल लगाए। वहीं खादी ग्राम उद्योग विभाग एवं सूचना विभाग द्वारा भी प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें विभागीय योजनाओं और उत्पादों की जानकारी दी गई। बलिया जनपद में संचारी रोगों की रोकथाम एवं जन जागरूकता के उद्देश्य से संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया गया। जिला अस्पताल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभय नारायण राय एवं कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संतोष चौधरी ने अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी को संचारी रोगों से बचाव की शपथ दिलाई गई तथा जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभय नारायण राय ने बताया कि अभियान के दौरान डेंगू, मलेरिया, दिमागी बुखार समेत अन्य संचारी रोगों के लक्षण वाले मरीजों की पहचान और समय पर उपचार पर विशेष जोर दिया जाएगा। वेक्टर वार्न डिजीज के नोडल अधिकारी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने बताया कि 1 से 31 जुलाई तक चलने वाले दस्तक अभियान के तहत आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, फाइलेरिया, कालाजार, कुष्ठ रोग सहित अन्य संचारी रोगों के बचाव के प्रति जागरूक करेंगे।
3: बलिया जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं फिरोजाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है लियाकत अली का।
4: फिरोजाबाद में जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर बब्बू सारंग ने घटना से 40 दिन के अंदर ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसका सभी ने सम्मान करते हुए तारीफ की जा रही है। 1.5 वर्ष के मासूम की हत्या करने वाले को दोषी ठहराते हुए सजाए मौत की सजा खुले न्यायालय में सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव प्रियदर्शी ने बताया कि 30 मई 2026 को दिन दहाड़े 2:30 बजे जितेन पाठक उर्फ बिराज ने फिरोजाबाद के थाना शुकाहबाद क्षेत्र यादव कॉलोनी में मासूम बच्चे की हत्या कर दी थी। उन्होंने बताया कि ये घटना जिले में चर्चा वैसे बनी हुई थी। पुलिस ने मात्र 6 दिन में आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया और मात्र 1 माह 9 दिन में न्यायालय ने फैसला आ गया। DGC राजीव प्रियदर्शी ने बताया कि
5: 1.5 वर्ष के बच्चे इस विराज अभियुक्त जो है निर्मम हत्या की थी। DM साहब जनपद फिरोजाबाद और SFP साहब विशेष निर्देशन था, उसी के तहत माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने सारे गवाह और बहस के उपरांत उस विराज को मृत्यु दंड की सजा से मुकर्रर किया है।
4: फिरोजाबाद जिले में तेज आंधी और वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और अलग अलग हादसों में जन एवं पशु हानि हुई है। पिछले दिनों फरियाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चिड़रई गांव में तेज आंधी और तूफान के दौरान हुए एक दर्दनाक हादसे में 4 ग्रामीणों की असमय मृत्यु हो गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अनुसार मौसम अचानक खराब होने और तेज हवा चलने के कारण गाँव के पास ही स्थित एक पुराना और विशाल पेड़ जड़ से उखड़कर जमीन पर

0: आगरा। जिस समय ये घटना घटी उस समय पेड़ के नीचे से गुजर रहे एक ऑटो और एक मोटरसाइकिल चपेट में आ गए। इस दुखद हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया था। प्रशासन की ओर से मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया गया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के साथ पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है। फिरोजाबाद में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। शासन द्वारा दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं के तहत बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश दिए जा रहे हैं और निजी स्कूलों में भी ऑनलाइन आवेदन करने की पर फ्री शिक्षा दिए जाने का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बच्चों को शासन द्वारा पैसा भी उपलब्ध कराया जा रहा है। शासन की मंशा है कि कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रहे और गरीब मजदूर के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसी राह पर चलते हुए फिरोजाबाद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार परिहार शासन के आदेशों का पालन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि
1: सरकारी स्कूल नज़दीक नहीं होते हैं तो प्राइवेट स्कूल में भी बच्चे हमारे एडमिशन ले सकते हैं। उसके तहत सरकार ने जो है RTE एक्ट के तहत प्रावधान किया हुआ है। जो जनरल के लोग हैं 1 लाख से इनकम कम है वो, साथ ही साथ जैसे SC ST के लोग हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए जो है मार्च में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आता है और अप्लाई करके वो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके लिए जो बच्चे वहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो RTE एक्ट के तहत जो है गवर्नमेंट उसके लिए सब्सिडाइज जो है उन्हीं के खाते में प्रोवाइड करा देती है।
0: फिरोजाबाद में स्वस्थ शासकीय राज चिकित्सा महाविद्यालय में डॉक्टर योगेश कुमार गोयल प्रधानाचार्य के मार्गदर्शन में आम जनमानस को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयासों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। यहां किडनी रोगियों को बेहतर त्वरित और निःशुल्क उपचार प्रदान करने के उद्देश्य से लगातार स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसी जन कल्याणकारी क्रम में चिकित्सालय परिसर में डायलिसिस विभाग में मुख्य अतिथि सदर विधायक मनीष ससिया द्वारा 5 नई आधुनिक डायलिसिस मशीनों का लोकार्पण किया गया। इस नए विस्तार के बाद अब फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस विभाग में कुल मशीनों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में 5 नई डायलिसिस मशीनें लगने से अब गरीब मरीजों को भी इलाज के लिए आगरा या दिल्ली जैसे बड़े शहरों में दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। 25 मशीनों की इस संयुक्त क्षमता से मरीजों को समय पर विश्व स्तरीय इलाज पूरी तरह निःशुल्क मिलेगा। मशीनों की संख्या बढ़ने से अब प्रतिदिन डायलिसिस कराने वाले किडनी रोगियों की क्षमता में भारी इजाफा होगा, जिससे स्थानीय और ग्रामीण क्षेत्र के जरूरतमंद मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी घर

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग।
1: सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।

0: वाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू कार्यक्रम।
1: हवा के दोष पर उड़ती हुई आवाज है अपनी, दिलों तक पहुंचना ही परवाज है अपनी। इन्हीं खूबसूरत अल्फाजों और जज्बातों के साथ आकाशवाणी के प्रयागराज मरकज पर तैयार उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं आपकी मेजबान निकहत सिद्दीकी। कबूल करें मेरा आदाब। सामिन, आज उर्दू बज्म में हम आपके लिए लेकर आए हैं मकाला नाजिश प्रतापगढ़ी की शायरी में इंसानियत और रवादारी का पैगाम, और कलामी शायर के तहत सुनिएगा खुर्शीद अंबर से उनका कलाम। सबसे पहले समाध फरमाइए डॉक्टर नौशाद कामरान से मकाला नाजिश प्रतापगढ़ी की शायरी में इंसानियत और रवादारी का पैगाम।
2: दुनिया में मुख्तलिफ अहद मकाम की तारीख इस बात की शाहिद है कि अदब और अदीबों ने हर दौर में इंसान के दर्द गम को साझा किया है और मुखालिफ हालात में भी बनी नू इंसान के दर्द गम का मदावा करने की सही एहसन की है। अदीबों और शायरों ने न सिर्फ जुल्म की सियाह रातों में उम्मीद के दिए रोशन किए हैं, बल्कि बाद मुखालिफ की चोट से शल हो चुके बाजुओं को हिम्मत व हौसला मंदी के बालों पर भी अता किए हैं। जहाँ तक उर्दू शायरी का मामला है, हम बिला खौफ तरदीद ये बात कह सकते हैं कि उर्दू शायरी में इंसानियत और दर्दमंदी का पैगाम देने की एक सेहतमंद और तवाना रिवायत मौजूद रही है। उर्दू के अक्सर शुरा ने अमन आश्ती के गीत गाए हैं और उखुवत, मोहब्बत, दर्दमंदी और हुब्बुल वतनी के मजामीन से अपने शेरी आफाक को आरास्ता किया है। इन शोरा ने अपने कलाम के जरिए मुल्क में इत्तेहाद इत्तेफाक और सियासी, समाजी, मुआशी, मुआशरती इस्तेकरार और इस्तेहकाम की तमन्ना की है। इन शोरा की फहरिस्त में एक नुमाया नाम नाजिश प्रतापगढ़ी का है। उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ से ताल्लुक रखने वाले शायर नाजिश प्रतापगढ़ी अपने फन की बुनियाद पर उर्दू शायरी

बस एक दो कुदाल का है, कोई पहाड़ हो बस एक दो कुदाल का है, ये मुझसे कौन से लहजे में बात करते हो, ये मुझसे कौन से लहजे में बात करते हो, बड़ों से क्या यही अंदाज बोल चाल का है, बड़ों से क्या यही अंदाज बोल चाल का है, वो चाल ढाल से अपनी दिला रहा है यकीन, वो चाल ढाल से अपनी दिला रहा है यकीन कि उसके पाँव का जूता हमारी खाल का है, कि उसके पाँव का जूता हमारी खाल का है, कोई किसी को ना कम आंकने की सोचे भी, कोई किसी को ना कम आंकने की सोचे भी, हमारे अहद में हर आदमी कमाल का है। आइए गजल का दूसरा मतला पेश खिदमत है कि सर उठाओगे तो कटना भी किसी दिन तय है, सर उठाओगे तो कटना भी किसी दिन तय है, ऐ दरख्तो ये तुम्हारा भी मुकद्दर है, ऐ दरख्तो ये तुम्हारा भी मुकद्दर है, अपने ही चाहने वालों का ये करती है बुरा, अपने ही चाहने वालों का ये करती है बुरा, जिसको कहते हैं अना क्या ही गजब की शय है, जिसको कहते हैं अना क्या ही गजब की शय है, जायजा अज सरे नौ फौज का लेना होगा, जायजा अज सरे नौ फौज का लेना होगा, हार का सामना ये क्यों हमें पैदर पै है, हार का सामना ये क्यों हमें पैदर पै है, हैं बहुत लोग जो करते हैं इसी का नशा, हैं बहुत लोग जो करते हैं इसी का नशा, जैसे इंसान का ये खून नहीं है मैं है, जैसे इंसान का ये खून नहीं है मैं है, मैं कहाँ और कहाँ शेरो सुखन की मसनद, मैं कहाँ और कहाँ शेरो सुखन की मसनद, कोई लहजा है मेरे पास न दिलकश लय है, कोई लहजा है मेरे पास न दिलकश लय है, जी में आया था कि मैं कर लूं सुखन से तौबा, जी में आया था कि मैं कर लूं सुखन से तौबा, इस तरह उसकी खामोशी हुई गोया आए है, इस तरह उसकी खामोशी हुई गोया आए है, और मकता है कि दश्त की सैर से क्या चीज है माने अंबर, दश्त की सैर से क्या चीज है माने अंबर, शेरे नर तुम हो तो किस बात का तुमको भय है, शेरे नर तुम हो तो किस बात का तुमको भय है। आइए एक और गजल का मतला और कुछ अशआर पेश खिदमत हैं कि हो लाख बाशऊर मगर बेवकार है, हो लाख बाशऊर मगर बेवकार है, जिस आदमी के पास न बंगला न कार है, जिस आदमी के पास न बंगला न कार है, आती हैं जो नजर मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ, आती हैं जो नजर मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ, ये उम्र का असर नहीं गुर्बत की मार है, ये उम्र का असर नहीं गुर्बत की मार है, उतनी ही पस्ता कामती पर्दे में है छुपी, उतनी ही पस्ता कामती पर्दे में है छुपी, जिस आदमी का जितना बड़ा इश्तिहार है, जिस आदमी का जितना बड़ा इश्तिहार है। और शेर देखिए कि हुस्ने ख्याल हुस्ने अमल एक करके देख, हुस्ने ख्याल हुस्ने अमल एक करके देख, हर आदमी के हाथ में फूलों का हार है, हर आदमी के हाथ में फूलों का हार है, ये जानकर खुशी नहीं बेहद खुशी हुई, ये जानकर खुशी नहीं बेहद खुशी हुई, कोई तुम्हारा और भी उम्मीदवार है, कोई तुम्हारा और भी उम्मीदवार है, सोचो तो किस तरह से गुजारी है जिंदगी, सोचो तो किस तरह से गुजारी है जिंदगी, कातिल भी कत्ल करके मुझे सोगवार है, कातिल भी कत्ल करके मुझे सोगवार है, हर बार लुट रहा हूं जो मंजिल के आसपास,

0: बार लुट रहा हूं जो मंजिल के आसपास, कैसे कहूं मशीयते परवरदिगार है, कैसे कहूं मशीयते परवरदिगार है। क्यों बार बार जाता हूं दहलीज की तरफ, क्यों बार बार जाता हूं दहलीज की तरफ, आखिर ये किसका आज मुझे इंतजार है, आखिर ये किसका आज मुझे इंतजार है। और मुझको नहीं है पेशिए गर्दन में कुछ दरेग, मुझको नहीं है पेशिए गर्दन में कुछ दरेग, तू आजमा ले गर तेरे खंजर में धार है, तू आजमा ले गर तेरे खंजर में धार है। और मकता है कि अंबर के बारे में तुम्हें धोखा ना हो कोई, अंबर के बारे में तुम्हें धोखा ना हो कोई, वो देखने में सिर्फ तगाफुल शियार है, वो देखने में सिर्फ तगाफुल शियार है। और एक गजल का मतलब और चंद अशार और हाजिर खिदमत हैं कि एक कतरा ही दे दे जो तुझे आर नहीं है, एक कतरा ही दे दे जो तुझे आर नहीं है, वैसे भी समुंदर मुझे दरकार नहीं है, वैसे भी समुंदर मुझे दरकार नहीं है। और शेर मुलाजा फरमाइए कि अच्छा है कि पत्थर से नहीं है तेरी तखलीक, अच्छा है कि पत्थर से नहीं है तेरी तखलीक, जब खाक से बनकर तू लचकदार नहीं है, जब खाक से बनकर तू लचकदार नहीं है। ये कैसा जमाना है कि अब कोई पड़ोसी, ये कैसा जमाना है कि अब कोई पड़ोसी, दो बात भी करने को रवादार नहीं है, दो बात भी करने को रवादार नहीं है। मुश्किल है गिरा पाना उसे अंधे कुएं में, मुश्किल है गिरा पाना उसे अंधे कुएं में, जो शख्स के ख्वाबों का परस्तार नहीं है, जो शख्स के ख्वाबों का परस्तार नहीं है। मैं सबका गुनहगार हूँ तस्लीम है मुझको, मैं सबका गुनहगार हूँ तस्लीम है मुझको, और ये भी कोई मेरा गुनहगार नहीं है, और ये भी कोई मेरा गुनहगार नहीं है।
1: अभी आप जनाब खुर्शीद अंबर से उनका कलाम समाप्त फरमा रहे थे, और इसी के साथ आकाशवाणी के प्रयागराज मरकज पर तैयार उर्दू प्रोग्राम को खत्म करने की इजाजत दें अपनी मेजबान निकहत सिद्दीकी को। इस प्रोग्राम की पेशकश थी प्रदीप कुमार मिश्र की।
2: उर्दू कार्यक्रम समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज की कलाकार हैं आकांक्षा पाल। इनके स्वर में सुनिए ये भजन।

अभी आप सुन रहे थे आकांक्षा पाल के स्वर में ये भजन। सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल आर एन रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घट मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन

करेंगे। इस योजना के पहले चरण में पश्चिम चंपारण जिले का वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले का मां मुंडेश्वरी और नालंदा जिले का राजगीर शामिल हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस दौरान वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इन युवा भौतिकविदों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले ईरानी सेना द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब बरकरार रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, किन्हीं कारणों से आज हम वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम प्रसारित नहीं कर सकेंगे। आप कल मंगलवार 14 जुलाई सुबह 10:05 पर ये कार्यक्रम सुनेंगे। नुपुर जोशी से नेहा गुप्ता और अभय कांत तिवारी की बातचीत का पहला भाग। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में शुरुआत कर रहे हैं किशोर कुमार की आवाज से, बोल और संगीत प्रेम धवन का। फिल्म का नाम पवित्र पापी।

अभी आपने सुना पवित्र पापी फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, पगला कहीं का, आवाज मोहम्मद रफी की, बोल हसरत जयपुरी, शंकर जयकिशन का, संगीत है

अगला गीत सुनिए मेरे महबूब फिल्म से, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज़ में, बोल शकील बदायूं के, संगीत नौशाद का।

मुगले आजम। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, लता मंगेशकर की आवाज में, शकील बदायूं के बोल हैं और संगीत नौशाद का।

0: कार्यक्रम के अंत में सुनिए निकाह फिल्म से ये गीत, आवाज महेंद्र कपूर की, बोल हसन कमाल के और संगीत रवि का।
1: अभी अलविदा मत कहो।

निकाह फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम। लोकगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं संगम लाल यादव और साथी। लीजिए सुनिए इनके स्वर में ये निर्गुण।

0: लोकगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगम लाल यादव और साथी के गाए निर्गुण। लीजिए सुनिए इनके स्वर में ये निर्गुण।
1: पाला पी जड़े के सुगनावा

लोकगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संगम लाल यादव और साथी के स्वर में निर्गुण। लीजिए सुनिए उमेश कन्नौजिया के स्वर में ये निर्गुण।

लोकगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं उमेश कन्नौजिया के स्वर में निर्गुण। लीजिए सुनिए इनके स्वर में ये निर्गुण।

लोकगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उमेश कन्नौजिया के स्वर में निर्गुण। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

0: रूह देखी है कभी? रूह को महसूस किया है? जागते जीते हुए दूध या कोहरे से लिपटकर सांस लेते हुए उस कोहरे को महसूस किया है? रूह देखी है कभी? या शिकारे में किसी झील पे जब रात बसर हो और पानी के छपाकों में बजा करती हूँ डलियां, सुबकियां लेती हवाओं के वो बैन सुने हैं, चौदहवीं रात के बर्फाब से एक चांद को जब ढेर से साए पकड़ने के लिए भागते हैं, तुमने साहिल पे खड़े गिरजे की दीवार से लगकर अपनी गहनाती हुई कोख को महसूस किया है? रूह देखी है कभी?
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपका रेडियो हमसफर प्रेमेंद्र। अभी आपने जो आवाज सुनी, ये हस्ती अपनी आवाज के लिए तो कम मगर अपनी कलम के लिए मशहूर है। मगर इनकी आवाज भी क्या बोलती है, क्या वानगी है इनकी आवाज में, वो भी आपने सुन लिया। जी साहब, ये आवाज है शब्दों के जादूगर गुलजार साहब की, जिनके शब्दों में बारिश है, खामोशी है, मोहब्बत है और दर्द भी, जिन्होंने हिंदी फिल्मों को शायरी दी और शायरी को नई जबान।

0: गुलजार साहब का असली नाम है संपूरन सिंह कालरा। आपकी पैदाइश 1934 की है। दीना में आपका जन्म हुआ था। यह जगह अब पाकिस्तान में है। गुलजार साहब बंटवारे के वक्त परिवार के साथ भारत आ गए। मात्र 10-11 साल की उम्र में स्कूल छोड़कर गैराज में काम किया, पेंटर बने, लेकिन जेब में हमेशा एक डायरी रहती थी और जब भी मन में कुछ भाव मचलते थे तो गुलजार साहब उन मनोभावों को उर्दू शायरी में ढालकर अपनी डायरी में उकेर लेते थे। जब गुलजार साहब फिल्मों में आए तो पहले सहायक निर्देशक बने, फिर 1963 में फिल्म बनी बंदिनी और इस फिल्म से गुलजार साहब गीतकार बन गए। गाना था मोरा गोरा अंग लैले। सोचिए, पहली ही फिल्म में बी.आर. चोपड़ा के साथ और ये गीत जो आज भी इतना सुना जाता है। गुलजार साहब की ओर बरबस ही सबकी नजर खिंचती चली गई और फिर गुलजार साहब धीरे धीरे सबके चहेते बनने लगे। गुलजार साहब ने अपना नाम गुलजार रखा क्योंकि उन्हें फूलों से बहुत प्यार है और गुलजार का मतलब फूलों से भरा बाग।
1: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे।

गुलजार साहब ज़्यादातर चुप रहते हैं, वो बहुत कम बोलते हैं। जब उनसे इस विषय में बात की गई तो गुलजार साहब ने कहा कि मैं एक शायर हूँ, मैं एक कलमगार हूँ, मैं अपनी कलम से बात करता हूँ। बेहद सादगी के साथ जीने वाले गुलजार साहब अपने शब्दों में ऐसे ऐसे रंग भर देते हैं कि सुनने वाला दिल थाम लेता है। उनकी खासियत क्या है कि वो मुश्किल शब्दों को इतने आसान कर देते हैं कि आम आदमी भी गुनगुनाने लगे। एक तरफ अभी आपने गुलजार साहब के ये गाने सुने, इनकी भाव क्या थे, और गुलजार साहब ने ही लिखा है, कजरारे कजरारे तेरे काले काले नैना। इसमें कोई भारी लफ्ज नहीं है, लेकिन असर देखिए कि जुबां जुबां पर आपने इस गाने को सुना। गुलजार साहब ने 100 से ज्यादा फिल्मों के लिए लिखा है। आरडी बर्मन साहब, एआर रहमान, विश्वजीत, ऐसे संगीतकारों के साथ आपने काम किया। गुलजार साहब को संगीतकार तीन तरह से देखते हैं कि गुलजार साहब एक नहीं बल्कि तीन हैं। एक मोहब्बत वाले गुलजार जो लिखते हैं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, चांदनी रातें यहाँ प्यार में तड़प भी है सुकून भी। तो दर्द वाले गुलजार साहब, एक अकेला शहर में आने वाला पल जाने वाला है। ये गाने सुनते ही लगता है कि जैसे कोई हमारे दिल की बात कर रहा है। और फिर फूलों से प्यार करने वाले गुलजार साहब भला बच्चों से दूर कैसे रह सकते हैं। बच्चों के लिए और मासूमियत भरे गाने भी गुलजार साहब ने लिखे। भला एक ज़माने में एक टीवी सीरियल आया था और उसका वो गीत हर बच्ची की ज़ुबान पे था कि जंगल जंगल बात चली और पता चला है। तो गुलजार साहब एक के बाद एक नए नए रंग भरते गए हैं बॉलीवुड में। गुलजार साहब का अभी भी वही हमारे घर के बुजुर्गों जैसा तरीका है, सुबह उठना और सुबह सुबह ही कलम लेकर के बैठ जाना। सुबह की शांति, सुबह की ठंडक और सुबह की अनुभूतियों में अपने मनोभावों को पिरोकर गुलजार साहब उकेर देते हैं कागज पर, और वो शब्द जब संगीत की लहरियों में बंध कर हमारे आपके बीच आते हैं तो बस ऐसे लगता है कि वो हमारी ही कहानी बयां कर रहे हैं।

गुलजार साहब अपनी कलम के खिलाड़ी तो हैं ही, उन्होंने अपनी रचनाओं से अपने देश का मान भी बढ़ाया। 2009 में उन्हें गाने जय हो के लिए ऑस्कर और ग्रैमी दोनों पुरस्कार मिले, जिससे अपने देश का मान बढ़ा। फिल्मों के अलावा गुलजार साहब शायर भी हैं। उनकी 3 किताबें हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं, धुआं, रात पश्मीने की, त्रिवेणी। उनकी शायरी में कोई नसीहत नहीं होती है, बस एक तस्वीर होती है। गुलजार साहब का मानना है कि हर इंसान को सही और गलत की जानकारी होती है। जिस इंसान ने अपनी नज़र का पैमाना बना लिया, वो इंसान कभी भी अपने रास्ते से विचलित नहीं हो सकता है। गुलजार साहब कहते हैं कि वो गुजरा था मेरी गली से कुछ इस तरह जैसे कोई खुशबू हवा में उतर गई हो। फिर कहते हैं, सांसों में तेरी सांस मिली तो लगा जैसे रेत में बारिश उतर गई हो। बताइए, इन शेरों में गुलजार साहब ने हमें क्या सिखाया, हमें क्या नसीहत दी? बस आप इन पंक्तियों को सुनते हैं, इनका दृश्य बनाते हैं अपनी आंखों के सामने, तो सिर्फ एक तस्वीर बनती है। यही है गुलजार साहब के शब्द और यही है शब्दों की कारीगरी, जादूगरी। गुलजार साहब हिंदी, उर्दू, पंजाबी तीनों भाषाओं में लिखते हैं। उनकी शायरी में बिंदी कौमा का खेल होता है, जिसे त्रिवेणी कहते हैं। 3 लाइन की गजल, ये सिर्फ गुलजार साहब ही कर सकते हैं। उनके डायलॉग भी कमाल के हैं। फिल्म आंधी के लिए, मौसम के लिए, इजाज़त के लिए आपने डायलॉग्स लिखे, और उनके डायलॉग्स आज भी जो पुराने लोग हैं या फिर नई पीढ़ी के जो थोड़े गंभीर लोग हैं, वो जब सुनते हैं उन फिल्मों के डायलॉग्स को, तो उनके अंदर तक वो छप जाते हैं। गुलजार साहब बहुत कम बोलते हैं, इंटरव्यू बहुत कम देते हैं, और वो कहते हैं कि मैं लेखक हूँ, बोल कर नहीं बल्कि लिख कर बात करता हूँ। आपकी पत्नी है एक्ट्रेस राखी, जिन्हें आप हम सब भली प्रकार से जानते हैं, और मेघना गुलजार आपकी पुत्री हैं, जो खुद एक डायरेक्टर हैं, जिन्होंने तलवार, राजी जैसी फिल्में बनाई। गुलजार साहब आज लगभग 91 साल के हो रहे हैं, लेकिन जहाँ तक उनका वश चलता है, वो आज भी सुबह उठकर कलम लेकर के बैठते हैं। उनके बारे में जावेद अख्तर साहब ने कहा है कि गुलजार साहब अगर 100 साल पहले पैदा होते तो मीर और गालिब की तरह पढ़ाए जाते। गुलजार साहब दीर्घायु हों, अपनी कलम की रोशनाई से हमारे जीवन में नए नए रंग भरते रहें, अपनी रचनाओं से हमारे मन मस्तिष्क को आनंदित करते रहें। इसी कामना के साथ कार्यक्रम में चलते चलते अब आपको सुना रहे हैं एक और रचना गुलजार साहब की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, और हमारा आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था शब्दों के जादूगर गुलजार साहब पर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दीपक राय, और अब अनुमति दीजिए अपने रेडियो हम सुपर प्रेमेंद्र को। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: अभी आपने गाना सुना जिसे हमने लिया था फिल्म आनंद से। रचना योगेश की थी, संगीत सलील चौधरी का, आवाज मन्ना डे की थी। कार्यक्रम में आगे हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज में ये गाना जिसे हमने लिया है फिल्म तीसरी कसम से। शैलेंद्र के बोलों को शुरू में पिरोया है शंकर जयकिशन ने।

और अगला गीत हमने लिया है भूपिंदर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है घरौंदा, रचना गुलजार की है, संगीत जयदेव का।

अगला गाना हमने लिया है फिल्म आपकी कसम से, आवाज़ किशोर कुमार की है, गीत आर डी बर्मन साहब का, क्षमा करें गीत आनंद बख्शी का है और संगीत आर डी बर्मन साहब का, आवाज़ किशोर कुमार की है, फिल्म का नाम आपकी कसम।

कार्यक्रम का अगला गाना हमने लिया है फिल्म दूरियां से। आवाजें हैं भूपिंदर और अनुराधा पौडवाल की। सुदर्शन फाकिर के बोलों को सुरों में पिरोया है जयदेव ने।

इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पश्चिम बंगाल में दो नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे है। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय घटकर 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। इस योजना के पहले चरण में पश्चिम चंपारण जिले का वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले का मां मुंडेश्वरी और नालंदा जिले का राजगीर शामिल हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। कोलंबिया के बुकारामंगा में 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इन युवा भौतिकविदों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। ये इंटर्नशिप कथित तौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बताई गई थी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। शोक दिवस के दौरान देश भर में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। आज कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। वियतनाम के फुकुओक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा।

ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमरीका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। ये दावे अमरीकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आया है, जिसमें ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली, मिसाइल और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों, तटीय रडार ढांचे और सामरिक नौसैनिक संसाधनों को निशाना बनाया गया था। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 145 अंक घटकर 77,425 और निफ्टी 55 अंक लुढ़ककर 24,153 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: east Uttar Pradesh over 4 to 5 days. Fairly widespread to widespread rainfall is likely over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura till Saturday. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.2% down in a forenoon trade today. The Sensex slipped 145 points to 77,425, while the Nifty dipped 55 points to 24,153 when reports last came in. In women's cricket, England will resume their second innings at 130 for 6 in the historic one-off test at the Lords against India this afternoon, resuming the penultimate day with an overall lead of 269. India declared their second innings at 341 for 7 at the stroke of tee, giving a target of 457 runs. Wicketkeeper batter Yastika Bhatia became the first woman to score a test century at Lords. And with that,
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:10 और 39 सेकंड हो रहे हैं। अब सुनिए हमारे चैनल पर आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। महिलाएं अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी सुनेंगी दिन में 1:15 पर। इसके अंतर्गत अंतरा सिंह की वार्ता होगी आयकर रिटर्न फाइलिंग भ्रम और समाधान। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनेगा दिन में 2:30। नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया सुनेंगे शाम 5:00। संस्कृति और समाज के विकास में रेडियो की भूमिका, अंश गोस्वामी की यह वार्ता सुनवाएंगे आज के युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15। पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 ग्रामीण भाई सुनेंगे लोक भाषा कविता पाठ। लोक कवि होंगे अनीस देहाती, साथ ही अभयराज यादव और साथियों के स्वर में लोकगीत सुनवाए जाएंगे। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में देश प्रेम, डॉक्टर वर्षा अग्रवाल की वार्ता सुनवाएंगे आज के हिंदी कार्यक्रम में शाम 7:31 पर। विज्ञान जगत कार्यक्रम होगा रात 8:30 और गजलों की महफिल सजेगी कार्यक्रम कहकशा के साथ रात 9:30। ये थी रूपरेखा हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। अब खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं सुनिए। मड़ौका थाना नैनी कमिश्नरेट प्रयागराज से राजू निषाद सूचित करते हैं कि इनके पुत्र रिमांशु निषाद विगत 22 मई सन 2026 से रात 9:55 से लापता हैं। लापता की उम्र लगभग 22 वर्ष है, ऊंचाई 5 फुट 7 इंच है, रंग गोरा है, आंखें गोल हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। राजू निषाद, निवासी मड़ौका, थाना नैनी, कमिश्नरेट प्रयागराज। पुलिस निरीक्षक अंशुमान मिश्रा, प्रभारी सीसी टीम सैनी कौशाम्बी सूचित करते हैं कि दिनांक 27 मई 2026 को नेशनल हाईवे 19 के बृहद गांव डोरमा के निकट एक अज्ञात पुरुष का शव बरामद हुआ है। आयु लगभग 32 वर्ष है, ऊंचाई लगभग 6 फुट है, रंग सांवला है, चेहरा गोल है, हल्की दाढ़ी रखी हुई है। घटना के वक्त नीली सफेद चकदार फुल बांह की शर्ट

और नीला फुल पैंट था। शेष इनके नाम के बारे में, इनके निवास के बारे में कोई भी सूचना नहीं है। यदि ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में आप जानकारी रखते हैं तो सूचित करें पुलिस निरीक्षक अंशुमान मिश्रा प्रभारी सीसी टीम सैनी कौशाम्बी को। अब खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्री हनुमान प्रसाद मिश्र का सारंगी वादन।

अभी आप सुन रहे थे श्री हनुमान प्रसाद मिश्र का सारंगी वादन। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा।

प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है यशोदास की आवाज में। फिल्म का नाम है साजन बिना सुहागन।

कार्यक्रम का अगला गाना हमने लिया है फिल्म अनीता से। राजा मेहंदी अली खान के बोल हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाज मुकेश की।

अभी आपने फिल्म लगान से ये गाना सुना, जिसे लिखा था जावेद अख्तर ने, धुन बनाई थी ए आर रहमान साहब ने, और आवाज़ें थी उदित नारायण, लता मंगेशकर और साथियों की। लीजिए अब सुनिए फिल्म मेरा नाम जोकर से ये गाना, जिसे आवाज़ दी है मुकेश ने। गीत नीरज सोनी का है और संगीत शंकर जयकिशन का।

अभी आपने फिल्म सौतन का गाना सुना। इस गीत के रचनाकार थे सावन कुमार, संगीत उषा खन्ना का था और आवाज किशोर कुमार की थी। इसी के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल आर एन रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे है। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने ऐसा झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ठ की ओर से दायर याचिका के बाद किया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सभी मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए मात्र एक महीने में 4 नई खेप के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इनमें नवीनतम जहाज आईएनएस महेंद्रगिरी, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया, 6ठा नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। इसे इस महीने की 11 तारीख को शामिल किया गया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टर्स और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। ये इंटर्नशिप कथित तौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बताई गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजेस पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। वियतनाम के फुकवोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे।

0: Meteorological Department has forecast isolated heavy to very heavy rainfall over northeast India, West Bengal and Bihar during the next 2 to 3 days and isolated heavy falls in east Uttar Pradesh over 4 to 5 days. Benchmark domestic equity indices erased their early losses and were trading on a flat note during the afternoon session today. The Sensex advanced 61 points to 77,631, while the Nifty added 5 points to 24,211 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और लखनऊ के रुकने पार्लियामेंट ने आज लखनऊ के केजीएमयू के 22वें यौम तासीस प्रोग्राम को खिताब किया। वजीर दिफा ने कहा कि केजीएमयू ने मुल्क को ऐसे डॉक्टर्स दिए हैं जिन्हें पद्मभूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री और डॉक्टर बीसी राय जैसे एजाज से नवाजा गया है। उन्होंने कहा कि आज डिग्री हासिल करने वाले तलबा एक मुस्तहकम रवायत का हिस्सा बनने जा रहे हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह करेंगे। बाकी तफसील हमारे नामानिगार से।
2: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। दोनों शहरों के बीच कार से यात्रा करने पर टोल 275 रुपए होगा और इस पर दोपहिया वाहनों की अनुमति नहीं होगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज के करीब बनने वाले 4 लेन के फ्लाईओवर का भी आज संगे बुनियाद रखा जाएगा। हुकूमत हिंद ने कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा सानी के इंतकाल पर आज कौमी शोक का ऐलान किया है। इस दौरान मुल्क भर में उन तमाम इमारतों पर कौमी परचम आधा लहराएगा जहां कौमी परचम बाकायदगी से लहराया जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शेख हमद बिन खलीफा सानी के इंतकाल पर ताजियत का इजहार करते हुए कहा कि वो एक विजनरी रहनुमा थे। उन्होंने कतर को तरक्की और खुशहाली की नई बुलंदियों तक पहुँचाया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को ऑल इंडिया रेडियो के महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में हिंदुस्तान और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये प्रोग्राम की 136वीं किस्त होगी। प्रोग्राम के लिए सामईन अपने ख्यालात और तजावीज टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। आइंदा किस्त के लिए तजावीज इस माह की 24 तारीख तक कबूल की जाएगी। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने MCT स्कीम 2026 का आगाज किया। इसके तहत मुस्तस्ना प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले इदारों को अपनी हैसियत को बाकायदा बनाने का एक बार मौका दिया गया है। यह स्कीम 6 माह तक नाफिजुल अमल रहेगी। पेश है एक रिपोर्ट।
3: EPFO की एमएनएसटी योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुस्तफीन को फायदा हासिल करने के लिए मुतालिका इलाकाई दफ्तर में ईमेल के जरिए दरखास्त भेजनी होगी। राम मंदिर पेशकश घोटाला की तहकीकात तेज हो गई है। खसूसी तफ्तीशी टीम धर्मसेना के सदर और बाबरी मस्जिद इंदाम केस के मुजरिम संतोष दुबे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीबन 1 घंटे तक पूछताछ की गई। इस मौके के लिए उन्होंने COCT के लिए दफ्तर बुलाया गया। पूछगछ के दौरान SIT ने उनके इल्जाम और दस्तयाब हकायक की तफसील से जांच की। संतोष दुबे ने बताया कि SIT ने उनसे कुछ दस्तावेजात की दरखास्त की थी जिन्हें वो आज दोपहर 12 बजे COCT ऑफिस के जरिए SIT को फराहम करेंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए उन्होंने अपने एतमाद का इजहार किया कि योगी आदित्यनाथ की क्यादत में राम मंदिर से मुतालिक किसी भी मामले में इंसाफ होगा। उन्होंने कहा कि वजीर आला के नोटिस लेने के बाद अब उन्हें यकीन है कि SIT की तहकीकात असल मुजरिमों तक पहुंचेगी और पूरे मामले को बेनकाब करेगी। दरअसना राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी मामले में तमाम 8 मुलजमीन को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवसुत से अदालत

0: में पेश किया जाएगा। रियासत के कई अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। लखनऊ के मौसमियाती मरकज के माहिर मौसमियात मोहम्मद दानिश ने बताया कि तराई इलाकों और पूर्वांचल इलाके कई अजला में तीन दिन तक गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश होने की तवक्को है।
1: मानसून का तराई बेल्ट में शिफ्ट हो गया है, जिसके वजह से उत्तर प्रदेश के जो तराई क्षेत्र हैं, जैसा कि लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, कुशीनगर, देवरिया में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। बाकी जगह की बात करें तो स्पेशली पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर बादलों की आवाजाही रहेगी तथा कुछ जगहों पर छिटपुट वर्षा की संभावना है। तो कुल मिला के सिलसिला 2 से 3 दिनों तक रहेगा।
0: दरियास्ता बारिश और बैराजों से पानी छोड़ने की वजह से रियासत में कई नदियों के सतहआब में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
2: मीडियम वेव पर हम
3: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। अब महिलाएं सुने अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।
4: खिड़की के बाहर देखिए, रिमझिम फुहारे हैं, मिट्टी की सौंधी सी खुशबू है और मौसम में बारिश की वो मस्त बेफिक्री है जो हर उदास दिल को भी गुनगुनाने पर मजबूर कर दे। ऐसे मौसम में दिल करता है कि बस एक गर्मा गर्म चाय हो और रेडियो पर बजता एक खूबसूरत नगमा। नमस्कार।
5: नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी और आपके साथ मैं हूं दीप्ति मिश्रा
5: और मैं हूं शारदा सिंह। तो दीप्ति, चलिए एक कार्यक्रम की शुरुआत में ही सुनवाते हैं अपने बहनों को ये गीत।

0: इस खूबसूरत नगमे के बाद चलिए आगे बदलते हैं अपने कार्यक्रम को और बातें करते हैं कुछ संजीदा जो आज के दौर में सबसे अहम मुद्दा है ना। श्रोताओं, बाहर का मौसम जितना भी हसीन है उतनी ही हसीन हमारी जिंदगी भी, और इस खूबसूरत जिंदगी को महफूज रखना हमारी जिम्मेदारी है ना दीप्ति?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। आज के समय में दोस्तों हमारी एक बहुत ही आम सी आदत है हम सभी की, या यूं कहें कि हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, अहम ज़रूरत है कि हम चाहे जहां रहें हमारे हाथों में स्मार्टफोन साथ ही रहता है। सोशल मीडिया के इस दौर में कहीं घूमने जाएं या घर बैठे बैठे ही अपने किसी मोमेंट की हम तस्वीरें लेने लगते हैं या रील्स बनाकर उसे सोशल मीडिया पे साझा करते हैं, और इससे हम बिल्कुल पीछे नहीं रहते हैं। एक तरीके से कहें तो हमारे जीवन का जो दायरा है वो इस डिजिटल दुनिया के इर्द गिर्द ज़्यादा है। हम अपनी हर खुशी हर गम को लोगों के साथ साझा करने पे बिल्कुल हिचकते नहीं हैं, और ये जो बातें हैं जो कहा जा सकता है कि इसे टेक्निकल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि हम एक तरीके से डिजिटलाइज्ड ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं।
0: बिल्कुल, तो सामान्य सी बात है कहीं ना कहीं हमारी जो प्राइवेसी है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है ना। और कुछ मामलों में ये बेहद ही अच्छा है कि जब तक आप अपनी सूझबूझ की तरह इसका इस्तेमाल करते रहें, लेकिन इस डिजिटल स्पेस के खतरे भी उतने ही हैं, विशेषकर अगर आप बात करते हैं एक महिला की तो,
1: हम
0: है ना,
1: करते हैं अपनी ही खुद की, है ना।
0: बिल्कुल, तो जब हम सुबह उठते हैं सखियों और हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है तो हमारी दुनिया बदल जाती है। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हो या घर का राशन मंगाना हो, बिजली का बिल भरना हो या दूर बैठी किसी सहेली से, फ्रेंड से, भाई फ़ोन कॉल पर बात करनी हो, ये छोटा सा छोटा फ़ोन हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन चुका है। लेकिन जिस तरह हम अपने घर को सुरक्षित रखते हैं ना एक मजबूत ताला लगा करके, उसी तरह से ये जरूरी है कि हम अपने डिजिटल लाइफ को भी सुरक्षित रखें,
1: इस डिजिटल घर को भी सुरक्षित। हाँ।
0: बिल्कुल, और वो अदृश्य, मतलब कि क्योंकि ये असुरक्षित है, जिस तरह एक चोर से घर को खतरा होता है उसी तरह से किसी अदृश्य चोर से जो इंटरनेट के माध्यम से हमारे घरों में सेंध लगा रहा है।
1: क्या बात कही आपने कि वो अदृश्य चोर जो इंटरनेट के माध्यम से हमारे अपने घरों में सेंध लगा ले रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा है कि कैसे। श्रोताओं, आजकल जो सबसे ज़्यादा फ्रॉड सुनने में आता है वो है वर्क फ्रॉम होम या पार्ट टाइम जॉब स्कैम। बहुत से मैसेजेस आते रहते हैं लगातार,
0: सावधान, सावधान।
1: और जब भी आप कुछ भी ऐप स्टार्ट करिए तो उस पर पार्ट टाइम जॉब के लिए आपको इतना पैसा मिलेगा, घर बैठे आप काम करिए। जो महिलाएं घर के कामों से थोड़ा सा फुर्सत पाती हैं तो वो अपने जो बचे हुए समय को ना यूज़ करना चाहती हैं कि हाँ इस बचे हुए समय में हम कुछ पैसे भी अर्न कर लें। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके पास किसी भी सोशल ऐप के माध्यम से मैसेज आता है कि आप घर बैठे कमाएं, बस एक वीडियो लाइक कर दें इस फला साइट पर जाके। तो इसमें बहुत से लोग क्या होते हैं, फंस जाते हैं। वो जाते हैं, लाइक करते हैं, शुरुआत में तो उन्हें 200-500 रुपए वहाँ से आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो आप

0: का भरोसा इस तरीके से जीत लेते हैं। फिर वो आपको कुछ पैसे कहते हैं कि आप इन्वेस्ट करिए तो आपको बड़ा मुनाफा होगा। तो इस चक्कर में हम अपने जो UPI पिन है, ये बैंक जो अकाउंट्स हैं, ये साझा कर देते हैं और यहीं पे हमारे साथ हो जाता है फ्रॉड। तो याद रखिए, इस दुनिया में कुछ भी
1: मुफ्त
0: मुफ्त नहीं
1: नहीं
0: है।
1: है।
0: पैसे ऐसे किसी भी झांसे में आकर ना कमाने की कोशिश करें।
1: बिल्कुल, ऐसे ही एक फ्रॉड और है कि आजकल ये चल रहा है कुछ ऐसा ही कि पार्सल स्कैम या फेक जो क्या कहते हैं कि
0: कुरियर।
1: कोरियर आता है, वो भी फ्रॉड हो रहा है कि आपके फोन पर आता है कि आपके नाम से विदेश से एक पार्सल आया है जिसे एक गैर कानूनी सामान है, और पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए आ रही है। इसके बाद तो उनकी जो है कि असली खेल भाई चालू हो जाता है कि कहते हैं कि ऑनलाइन आप वीडियो कॉल पर बात करिए, और वो डिजिटल जो
0: अरेस्ट
1: अरेस्ट
0: का
1: करने के
0: ओहो,
1: लिए
0: आजकल
1: वो
0: ऐसे बहुत से मामले
1: हाँ
0: हैं।
1: मामला मतलब कि वो शुरू कर देते हैं, और इस तरीके से वो चाहते हैं कि इस चीज़ को मतलब कि डिजिटल जो अरेस्ट कर लेते हैं
0: और वो
1: और
0: लास्ट में वो आपसे कुछ पैसे की
1: पैसे की डिमांड
0: डिमांड कर
1: करते हैं
0: लेते
1: कि
0: हैं।
1: आप इतना पैसे खर्च कर दीजिए तो आपको इस मतलब इस परेशानी से आपको निजात दे देंगे। पर इस समय हमारे हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे देश में कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि जिसमें पुलिस या CBI आपको फोन पर या वीडियो कॉल पर गिरफ्तार करे, और ना मतलब कि यदि इस तरह का आपको कोई भी फोन आता है तो तुरंत घर वालों को या साइबर सेल में इसका शिकायत दर्ज करें।
0: बिल्कुल। और एक और भी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, फेक ऑनलाइन शॉपिंग। हम सभी की है, हम
1: सही
0: महिलाओं की
1: देखिए,
0: तो
1: सही
0: बहुत ही
1: बात
0: है
1: है।
0: कि हमने कुछ भी ऐड देखा और उसमें दिखा रहा है कि कोई फला बनारसी साड़ी है या घर का जो सामान है वो मात्र 100 रुपए में या 200 रुपए में, 400 रुपए में मिल रहा है, और हम क्या करते हैं, झट से उसको ऑर्डर कर देते
1: ऑनलाइन
0: हैं,
1: ऑर्डर कर
0: और
1: देते
0: फिर
1: हैं।
0: उसमें ऑप्शन ही नहीं होता है कैश ऑन डिलीवरी का, हम ऑनलाइन पेमेंट भी कर देते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि वो सामान या तो कभी आएगा नहीं, यदि आता भी है तो उसमें कुछ कचरा भरा होता है। तो इसलिए हमेशा याद रखें, जानी मानी कंपनियां जो जिनकी वेबसाइट्स हैं उन्हीं से अपनी ऑनलाइन शॉपिंग करें, और हाँ, ऑप्शन में हमेशा कैश ऑन डिलीवरी ही रखें।
1: बिल्कुल, ऐसे कई बार ऐसे ऐप आते हैं दीप्ति जिसमें
0: बिल्कुल।
1: दिखता है कि कोई 10,000 15,000 की साड़ी भाई 300 में, तो कोई भी महिला उस तरफ आकर्षित होंगी। मैं कि भैया 300 में इतनी अच्छी साड़ी मिल रही तो उन्हें, और तुम्हें विश्वास नहीं होगा, एक बार तो हम खुद फंस चुके हैं, लेकिन हमारे हस्बैंड ने हमको बहुत समझाया कि ये चीज़ बिल्कुल फेक है भाई, उन्होंने महिंद्रा गाड़ी ऑनलाइन 8,000 पे देने की इस तरीके से फेक ऐप था, लेकिन हम कह रही 8,000 में और किस्त में पैसे देने गाड़ी हो जाएगी। फिर हमको बहुत समझाया गया कि ये क्रिया ना करें।
0: ये नहीं है। हाँ, तो इसी तरीके से एक और चीज़ है कि जब हम किसी मोबाइल पे अपने ऐप्स डाउनलोड करने लगते हैं तो जो ऐप है ना वो हमसे अब हमारे फ़ोन के एक्सेस मांगता है, और हम क्या करते हैं, तुरंत उसको अलाउ कर देते हैं। ये भी नहीं देखते हैं कि हमने उस ऐप को कहाँ से जाकर ढूंढा है। कभी कभी हम गूगल पे चले जाते हैं या अननोन किसी लिंक को हम खोल लेते हैं, तो ऐसे किसी भी लिंक पर या गूगल पर जाके डायरेक्ट किसी भी ऐप को डाउनलोड ना
1: ना
0: करें।
1: करें,
0: और
1: बिल्कुल।
0: दूसरी बात, आप जो हमारे ये गूगल प्ले स्टोर है या एप्पल प्ले स्टोर है, यहीं से जाकर अपने जो ऑथेंटिक ऐप्स हैं उनको लें, और हमेशा परमिशन देने से पहले उस पूरे कॉन्टेक्ट को समझ लेना
1: समझ
0: चाहिए
1: लेना
0: कि क्या
1: चाहिए
0: चीज़
1: कि
0: है और
1: भाई
0: कितना सही है।
1: सही
0: उसके
1: है।
0: रिव्यूज़ लीजिए, उसके जितने भी उस कंपनी को देखिए कि वाकई ये ऑथेंटिक है या नहीं
1: नहीं
0: है।
1: है। और भाई इस आर्थिक नुकसानों के अलावा एक और चीज़ है जो सीधे हमारी प्राइवेसी यानी हमारी अस्मिता पर हमला करती है, तो वो है वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, और मतलब फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल। आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर किसी तरह की अचानक एक वीडियो कॉल आता है, और कॉल मतलब कि किसी मतलब कि
0: अनजान खूबसूरत
1: अनजान व्यक्ति
0: चेहरे या
1: खुश
0: नाम से
1: हाँ
0: रिक्वेस्ट आती है।
1: रिक्वेस्ट आती है, और उसे जो कि अगर आपकी स्क्रीन को रिकॉर्ड वो कर भी लेते हैं या इसके मतलब कि धोखे से इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो उसके बाद वो आपके फ़ोटो को किसी भी मतलब हाँ किसी भी मतलब कि मतलब ऐसे ऐसे वीडियो या ऐसे फोटो में

0: यूज़ करके एडिट करके आपको ब्लैकमेल करते हैं या आपसे पैसे मांगते हैं, आपको धमकी देते हैं कि अगर आप नहीं देंगे पैसे तो हम आपकी फैमिली को ये दिखा देंगे। भाई ऐसे नासमझ बच्चे है ना।
1: ना समझ बच्चे ही
0: हाँ
1: नहीं, बड़े बुजुर्ग भी हैं उसमें,
0: हाँ
1: हम सब भी आते हैं। ऐसे बहुत सी होती हैं कि हमने किसी का चेहरा देखा, किसी का नाम पढ़ा, रिक्वेस्ट आई, हमने एक्सेप्ट किया, फिर उसने हमसे बहुत अच्छी अच्छी बातें की, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, भाई आपको बहुत काम, मतलब कि उसने हमारे पर्सनल अटैचमेंट को हिट किया, तो हम उससे अटैच्ड हो जाते हैं। फिर वो हमें बाद में, फिर भाई वो हमसे फ़ोटो मांगेगा, फिर उसके बाद वीडियो
0: हाँ किसी भी
1: कॉल
0: प्रकार की
1: करेगा,
0: एक लालच
1: हाँ
0: देकर
1: लालच
0: कि
1: देगा, फिर उसके बाद
0: हाँ
1: हम क्या करते हैं, अपनी फ़ोटोज़ वीडियो कॉल्स पे बात कर लेते हैं, वही हमसे सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाए,
0: गलती होती
1: वो
0: है
1: हमारी फ़ोटोज़
0: उनका।
1: और
0: ये
1: इनका यूज़
0: एम
1: करके।
0: ही मेरे ख्याल से ये होता है कि बस ये किसी तरीके से आपका फ़ोटो लें, आपकी प्राइवेसी जाने, बस एक माध्यम से आपको वो किसी तरीके से ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे। भाई इस दलदल में बचने का सिर्फ एक नियम है कि अनजान नंबर से आने वाली वीडियो कॉल को कभी ना उठाएं, अपने सोशल अकाउंट को हमेशा प्राइवेट मोड पर ही रखें और अपने बच्चों के नाम, उनकी स्कूल की ड्रेस वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट ना
1: ना करें
0: करें।
1: बिल्कुल, जो
0: इस
1: लोग
0: खतरों
1: होते हैं ना
0: से
1: कि कभी कभी ध्यान देते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा फर्स्ट डे स्कूल जा रहा है, हमने
0: हाँ
1: फ़ोटो डाली,
0: फोटो
1: फर्स्ट डे स्कूल फला जगह, तो इससे क्या होता है, बहुत से केसेस हुए हैं जहाँ
0: हाँ
1: से किडनैपिंग वगैरह ये सी
0: किडनैपिंग
1: चीज़ें हो
0: हाँ
1: चुकी
0: हो
1: हैं।
0: चुकी हैं बिल्कुल। और मतलब कि बहुत कुछ होता है कि जो आपको वो खतरा
1: बिल्कुल,
0: हो
1: तो
0: सकता
1: इन
0: है।
1: खतरों से बचने के लिए भी बहुत से नियम हैं, जो आप अपनाएंगे, इन सतर्कता को अपनाएंगे तो आप इससे बच सकते हैं। सबसे पहले मजबूत पासवर्ड बनाइए, अपने फ़ोन, बैंक ऐप या जो सोशल मीडिया है उसका पासवर्ड, कभी भी अपना नाम, अपने बच्चे का नाम या अपनी जन्मतिथि ना रखें। पासवर्ड में हमेशा लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल स्पेशल कैरेक्टर्स का मिला जुला इस्तेमाल ही करें। ओटीपी या पिन की सुरक्षा के लिए, कभी भी अगर आपके फ़ोन पर कोई ओटीपी आता है और कोई आपसे इसे मांगता है, या आपके एटीएम का यूपीआई पिन सिर्फ और सिर्फ आपकी जागीर है, इसे किसी से भी साझा ना करें, चाहे फ़ोन करने वाला खुद को अपने आप को बैंक का मैनेजर ही क्यों ना बताए, बैंक कभी भी फ़ोन पर ओटीपी नहीं मांगता है, तो ये विशेष ध्यान दीजिए। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी होता है, इस सेटिंग्स को हर जगह होती है, इस सेटिंग्स को हमेशा ऑन रखें, जैसे अगर आपका कोई फ़ोन हैक भी कर रहा है तो आपके पास तुरंत मैसेज आएगा, ओटीपी मांगा जाएगा, तो वो आपका
0: बिल्कुल।
1: फ़ोन हैक नहीं आए
0: और
1: होगा।
0: ना तो किसी लॉटरी के लालच में आने वाला मतलब कि आने वाला है और ना ही किसी की पुलिस की धमकी के डर में या
1: डर में
0: झांसे
1: आना
0: में
1: है
0: ना आए,
1: बिल्कुल,
0: बिल्कुल ना आए।
1: और
0: भगवान न करे भाई दीप्ति, कि भगवान न करे कि कभी आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड हो जाता है, तो डरिए मत, अपनी गलती को स्वीकार करें और तुरंत कदम उठाएं। इसके भारत सरकार ने हमारी सुरक्षा के लिए एक विशेष हेल्पलाइन ऑन नंबर है, इसका हेल्पलाइन नंबर है 1930 बनाया है और आप इस नंबर पर तुरंत कॉल करें करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप www. क्या है
1: साइबर क्राइम
0: साइबर
1: डॉट जी ओ
0: क्राइम
1: वी डॉट इन पर जाकर अपनी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। इसके साथ ही आपकी मदद के लिए आपके शहर में स्थानीय साइबर सेल और हर प्रमुख पुलिस स्टेशन में साइबर हेल्प डेस्क भी बनाई गई है, आप सीधे वहां जा सकते हैं, अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। वहां विशेष रूप से महिलाओं के लिए महिला पुलिस अधिकारी होती हैं, जो आपकी बातों को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ सुनती हैं। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी पीड़ित महिला की पहचान को पूरी तरीके से गुप्त
0: गुप्त
1: रखा
0: रखी
1: जाता है,
0: जाती है बिल्कुल।
1: इसलिए समाज क्या कहेगा ये सोचकर अपराधियों के हौसलों को मत बढ़ाइए।
0: बिल्कुल हम तो मतलब ये कहेंगे अपने श्रोता बहनों से कि भाई ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे फंसे भी हों, है ना, हो सकता है कोई ना कोई ऐसा हो, तो डरे ना, हिचकिचाए ना, संकोच ना करे। आप जितना ही डरेंगे उस दलदल में और भी
1: फंसते
0: फंसते
1: चले
0: जाने चले
1: जाएंगे।
0: जाएंगे। तो याद रखिए जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। खुद भी सतर्क रहें और अपनों को भी सतर्क करें। इसके लिए आपके साथ इसके साथ ही आइए सुनते एक प्यारा सा गीत।

0: तो 4 लाख का 5% हो गया 20,000। 12 में से 4 गया 8, 8 में से 4 गया बचा 4। इस 4 लाख पे बना 10% यानी 40,000। तो अगर 12 लाख की इनकम है तो अपना टैक्स बना 60,000। और जैसे कि मैंने बताया कि रिबेट के चलते 60,000 तक की छूट है, तो इस केस में आपको एक भी पैसा टैक्स का नहीं भरना। लेकिन ये सिलसिला सिर्फ 12 लाख तक ही सीमित है। अगर 12 लाख से 1 रुपए की भी ज़्यादा की कमाई है तो पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। अब मानिए आपकी कमाई 12,10,000 की है, तो 12 लाख तक तो 60,000 बन रहा था। अगले 10,000 पे बना 15%, क्योंकि 5% 10% हमने दे दिया था। अगले 10,000 पे बना 15% यानी 1,500। तो अब कुल मिला के आपकी टैक्स की जो राशि हो गई वो हो गई 61,500। तो रिबेट के लिए कहा गया था कि अगर आपका जो टैक्स का वैल्यू है वो अगर 60,000 तक है तो हमें कुछ नहीं भरना, बट यहाँ हो गया है 61,500। तो इस केस में आपको पूरा 61,500 भरना पड़ेगा। यहाँ अक्सर लोगों से ये गलती हो जा रही है कि लोगों को लग रहा है कि 12 लाख तक तो नहीं भरना, बट नहीं, 12 लाख तक भी टैक्स की वैल्यू आती है और 60,000 तक की वैल्यू तक छूट है। अगर आपका टैक्स का वैल्यू 60,000 से ऊपर बना तो आपको पूरा ही देना पड़ेगा। अब जो तीसरी रुकावट आ रही है वो आ रही है प्रॉपर डिस्क्लोजर की, यानी हम फॉर्म तो भर रहे हैं लेकिन हमें अपना ही डेटा पूरी तरीके से नहीं पता। तो कई बार डिस्क्रिपेंसीज के चलते हमें इनकम टैक्स की नोटिस आ जाती है। इसके लिए सरकार ने बहुत आसान एक तरीका हमें दे दिया है। उन्होंने प्रीफिल्ड या ऑटो पॉपुलेटेड फॉर्म्स जारी किए हैं जो इंटरनेट पर आसानी से अवेलेबल हैं, जिनका नाम है 26AS, AIS यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, या TIS टैक्स इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। इसमें पहले से डेटा प्रीफिल्ड रहता है। इसमें बैंक के ज़रिए हमने जो कुछ भी ट्रांजैक्शंस किए हैं, जिनका कई बार हमें भी पता नहीं होता, जैसे ब्याज आया लेकिन हमें नहीं पता क्योंकि पासबुक अपडेटेड नहीं है, या म्यूचुअल फंड से कोई इनकम आई, या हमने प्रॉपर्टी खरीदी या बेची, तो गवर्नमेंट को इन सारे ट्रांजैक्शंस का पता होता है। तो गवर्नमेंट ने इन सारी चीज़ों को, यानी कितना TDS कटा, कितना ब्याज मिला, कितनी प्रॉपर्टी खरीदी या बेची, इन सारी चीज़ों का एक ब्यौरा वो AIS में डाल देते हैं। अब हमें क्या करना है, हम जब भी अपना रिटर्न भरें तो एक बार ज़रूर अपना बैंक का पासबुक या इनकम स्टेटमेंट को इसके साथ मिलान कर लें, क्योंकि ये डेटा गलत नहीं होगा। तो आप अपना डेटा इसके साथ मिलान करने के बाद ही भरिए। अच्छा, अब सैलरीड क्लास और नॉन बिजनेस क्लास के लिए जो अपनी डेट है वो आने ही वाली है, वो है 31 जुलाई 2026। तो इसके अंदर अंदर आप ज़रूर से अपना फॉर्म भर लीजिए। और जो बाकी के केसेस हैं, जैसे कंपनी हो गई या ट्रस्ट वगैरह हो गया, इनकी डेट्स बाद में आती हैं। अंत में मैं इतना ही कहूँगी कि अगर चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है, आपको अगर समझ नहीं आ रहा है कि टैक्स की वैल्यू कैसे निकालें, तो किसी प्रोफेशनल के पास जाएं और उनसे फॉर्म भरवाएं, क्योंकि वो इसमें एक्सपर्ट्स हैं और एक ही बार में आपकी सारी चीज़ें सही इन्फॉर्मेशन के साथ अपलोड हो। क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन गलत जाएगी तो इनकम टैक्स की नोटिस आएगी और आपको कंप्लाई करना ही पड़ेगा। तो आशा है इस वार्ता से आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता आयकर रिटर्न फाइलिंग भ्रम और समाधान। वार्ताकार थी चार्टर्ड अकाउंटेंट अंतरा सिंह जी। इनकी वार्ता से वाकई बहुत से लोगों के जो भ्रम हैं वो दूर हुए होंगे और समाधान के नज़दीक लोग पहुंचे होंगे। तो इसी के साथ अब एक सुकून भरा गीत सुन लेते हैं।

0: आरती मुखर्जी की आवाज़ में ये खूबसूरत नगमा जितनी बार भी सुना जाए उतनी बार नया लगता है। तो अब चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट भोर की ओर।
1: तो चलिए सुनते हैं भोर। निर्णय ले समझदारी से बात कर रही हैं नेहा गुप्ता जी और तनु आर्या जी।

0: अच्छा तनु
1: जी,
0: आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है कि बाहर से तो कई बार हम ठीक ठाक दिख रहे होते हैं, बिल्कुल शांत बैठे हुए होते हैं, लेकिन अंदर मन मस्तिष्क में या फिर शरीर के किसी अंग में ऐसी हलचल होती है, उहापोह होती है कि वो हमारे कंट्रोल से बाहर होता है?
1: बिल्कुल होता है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये तब होता है जब हम एक निर्णायक स्थिति में होते हैं, जब हम किसी ऊहापोह की स्थिति में होते हैं, तो ऐसा लगने लगता है कि जैसे हमारा दिमाग और हमारा शरीर इसका कुछ तालमेल सा नहीं बन पा रहा है, या दिमाग की जो उलझन है वो शायद शरीर पर कहीं असर कर रही है।
0: हाँ, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ नया करने जा रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी परिस्थिति जो बहुत लंबे समय से चली आ रही हो और वो परिणाम तक न पहुंच रही हो, तो परिणाम से पहले का ये हम कहें, कष्ट कहें, प्रोसेस कहें, सफ़र कहें, जब हमें ठीक से दिखाई नहीं पड़ता, हम शायद कुछ खोज रहे होते हैं कि कोई आवाज़ कहीं से हमारा सपोर्ट करे और हमसे ये बात कह दे कि

0: बस यही करो।
1: हाँ
0: हमारी धड़कन इतनी बढ़ी हुई होती है, डर भी लग रहा होता है, मन में तमाम तरह की बातें चलती हैं, जाने क्या होगा, जाने क्या होगा,
1: सही होगा या गलत।
0: सही होगा या गलत, या इसके बाद हम टिक पाएंगे कि नहीं।
1: हाँ
0: ऐसे में सबसे अच्छा दोस्त क्या होता होगा?
1: जहाँ तक मेरा अपना जो डिसीजन लेने का तरीका है नेहा जी, वो ये है कि एक बात है, कोई चीज़ अगर सुधरी तो बहुत फ़ायदे दे के जाएगी, बिगड़ी तो शायद तजुर्बा देकर जाएगी। इसलिए जहाँ पर मुझे ये लगता है कि नहीं ये चीज़ सही है, मैं इसको अपने दम पे कर सकती हूँ और मुझे ये अपने आगे के जीवन के लिए करना चाहिए, तो मैं बहुत ज़्यादा दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होती हूँ। क्योंकि जब आप कई लोगों पे डिपेंडेंट होके काम करते हो ना, तो ज़्यादा डर होता है फेलियर का।
0: यहीं पे पॉइंट नोट करने वाली बात है दोस्तों।

0: ये चीज़ सही है, मैं इसको अपने दम पे कर सकती हूँ और मुझे ये अपने आगे के जीवन के लिए करना चाहिए, तो मैं बहुत ज़्यादा दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होती हूँ। क्योंकि जब आप कई लोगों पे डिपेंडेंट होके काम करते हो ना, तो ज़्यादा डर होता है फेलियर का।
1: यहीं पे पॉइंट नोट करने वाली बात है दोस्तों, हम कई बार इतना सुनने लगते हैं जो निर्णय हम ले नहीं पाते, मन में वैसे ही उलझन चल रही होती है। हम तमाम रिश्तेदारों से, दोस्तों से, लोगों से फ़ोन पर या उनसे मिलकर उस विषय पर या उस परिस्थिति पर इतनी बातें करते हैं और उसकी इतनी दिशाएं खुल जाती हैं, विकल्प खुल जाते हैं कि हम एकाग्र ही नहीं हो पाते
0: हम सही तरफ की रोशनी देख ही नहीं पाते।
1: नहीं देख
0: और
1: पाते।
0: नेहा जी, यहाँ पे सिर्फ राय की बात नहीं है, यहाँ पर रिसोर्सेज की भी बात है। सपोज़ हमें मैन पावर की ज़रूरत है या हमें फाइनेंसेस की ज़रूरत है, तो देखिए, मैं किसी सामने वाले को गलत नहीं कहती कि वो मुझे टाइम नहीं दे पा रहा या मुझे फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर पा रहा, क्योंकि हर किसी के अपने काम है, हर किसी की अपनी ज़रूरतें हैं। ठीक, तो अगर वो हमें नहीं कर पा रहा है तो उसके अपना कुछ काम होगा, उसकी अपनी कोई ज़रूरत होगी। लेकिन एक लिहाज एक रिश्ता भी है। सपोज़ उसने कह दिया कि हाँ करेंगे, आगे देखा जाएगा क्या होता है, एक्चुअली वो टाइम आ गया जब आपको उसकी ज़रूरत है, उस वक्त वो बहाना बनाने लगा। बहाना शायद सही शब्द नहीं है, या उसने आपको अपनी परिस्थिति उस वक्त बताई जब आप उसके भरोसे पे आगे बढ़ चुके हो, तब इससे तो बेहतर अकेला चलो रे।
1: पता है दोस्तों, जब तमाम तरह की आवाज़ें हो, जो भी बात हो रही थी कि हम अपने आप को ही नहीं सुन पाते, बैठ जाइए। सबसे अच्छा ये है कि आप समय लीजिए।
0: बिल्कुल।
1: आपने वो चीज़ या वो परिस्थिति क्यों क्रिएट की थी, वो बात सुनिए और अपने पल को पहचानिए। कहते हैं ना कि अपनी माटी भी सोने से अधिक कीमती होती है, और ये बात एकदम सच है। क्योंकि जो चीज़ आप अपने कर्म से प्राप्त करते हैं, तो उसमें आपकी खुशबू भी छुपी हुई है, आपके कर्म भी छुपे हुए हैं, आपकी मेहनत भी छुपी हुई है, और ये उलझन भी, इस उलझन से कभी मत घबराइए।
0: बिल्कुल। और देखिए दोस्तों, परिस्थितियां भी दो तरीके की होती हैं। एक तो वो जो प्राकृतिक है, अचानक आपके सामने कुछ आ गया, सपोज कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई। एक वो जो आप प्लान करते हो कि हाँ मुझे गाड़ी लेनी है या मुझे घर लेना है। दोनों ही परिस्थितियों में निर्णय लेने का तरीका अलग होता है। जब पहली परिस्थिति की हम बात करें, तो वहाँ पे मेरा मानना यह है कि हमें ईश्वर के आगे खुद को सरेंडर कर देना चाहिए। जो बेस्ट है करिए, बेस्ट सोचिए, जो आपकी कैपेसिटी में है, जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं वो करिए, और ईश्वर पे विश्वास रखिए, डॉक्टर्स पे विश्वास रखिए, और मुझे पूरा यकीन है कि आप उस परिस्थिति से ज़रूर बाहर आ जाएंगे। वहाँ पे ज़्यादा
2: अभी आप सुन रहे थे भोर, बातें कर रही थी नेहा गुप्ता और तनु आर्या। तो श्रोताओं, हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे, बोलते हैं नमस्कार।
3: नमस्कार। अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: हरण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज रात विशेष विमान से भारत पहुंचेंगे। ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर अमरीकी हमलों के जवाब में जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायाधिकरणों द्वारा उनके मामलों की दोबारा सुनवाई होने तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी थी। अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 1971 से पहले के अभिलेखों, मतदाता सूचियों और भूमि अभिलेखों जैसे दस्तावेजों का सहारा लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई की। इससे पहले 13 जून को एसआई का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में किसी गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 मई के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें प्रशासन से 28 मई को बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी भी और दिन राज्य में गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने को सुनिश्चित करने को कहा गया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के विपरीत बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घट कर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र एक महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज आईएनएस महेंद्र गिरी है जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6वां नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आईएनएस महेंद्र गिरी को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था।
2: पिछले महीने की 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित तीन प्लेटफॉर्म INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ

0: ब्रिगेड कार्यक्रम है जिसके तहत अगली पीढ़ी के साथ गाइडेड मिसाइल युद्ध पोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्ध पोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन का तीसरा संस्करण आज भोपाल में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने 178 करोड़ 70 लाख रुपए के कुल निवेश वाली 20 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पिछले वर्ष बार्सिलोना की उनकी यात्रा के बाद स्पेन, अमरीका और कनाडा की कंपनियों ने राज्य में निवेश किया है।
2: अपने दो वर्ष के अंदर जो छलांग लगाई, ये केवल यहाँ का अभियान हमारे पूरी नहीं हुआ, अब मध्यप्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने एफडीआई के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की ओर से दायर याचिका के बाद ये संज्ञान लिया। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सब मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरण में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेलीकॉप्टर पर्यटन और हवाई पर्यटन सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सेवा के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
3: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो, तब समझिए गया कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
1: श्री चौधरी ने कहा कि साप्ताहिक हवाई पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा में विस्तारित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में पटना, वाल्मीकि नगर

0: मामुंडेश्वरी और राजगीर को शामिल किया गया है। राज्य सरकार प्रति टिकट 15,422 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 18 जुलाई से शुरू होगी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत में अली अल सलीम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया है कि इससे ईंधन भंडार, गोला बारूद भंडारण प्रतिष्ठानों, वायु रक्षा प्रणालियों और रडार ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमरीका को चेतावनी दी है। ये दावे की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आए हैं, जिसमें ईरान में कई जगहों पर आक्रामक हमले किए गए थे। इन हमलों में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमेरिका ने कहा है कि ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और आवाजाही में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। न्यूजीलैंड के अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे जुरासिक पार्क और द पियानो जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 269 रन की बढ़त बनाते हुए दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर घोषित कर दी। विकेटकीपर और बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इंग्लैंड पहली पारी में 170 रन पर ही सिमट गई थी। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक बारिश का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सामान्य रूप से कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 20 अंक बढ़कर 77,589 पर और निफ्टी 7 अंक गिरकर 24,200 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया। तत्काल कार्रवाई के आदेश। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर, यानी 1026 किलोहर्ट्ज़।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूं विमलेश
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार और जय जोहार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है पोटियां कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदे नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है। जिस प्रकार प्रकृति सबसे प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम हमें प्रकृति के प्रति भी रखना चाहिए।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, राजाजी नगर बेंगलोर से लिखा है। लिखते हैं,
2: सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता।
0: आप आगे लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आज उमंग कार्यक्रम सुना, सिलिका पर आपका विषय उत्कृष्ट था। प्रस्तुति का तरीका वाकई सराहनीय है, चरण दर चरण समझाने का तरीका, सिलिका क्या है या सिलिकॉन से कैसे भिन्न है और इसका सामान्यतः उपयोग कहाँ होता है, साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में इसका व्यापक उपयोग वाकई अद्भुत है। विषय और प्रस्तुति दोनों ही शानदार थे।
2: सिलिकॉन घाटी में रहते हुए भी मुझे सिलिका और सिलिकॉन के सरल अंतर का पता नहीं था, इस उपयोगी जानकारी के लिए धन्यवाद।
0: आगे आप लिखते हैं, सबसे बढ़कर हमेशा की तरह आप दोनों की प्रभावशाली आवाज हर किसी के मन में तुरंत उतर जाती है, यही आपकी प्रस्तुति का असली प्रभाव है।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एन आर प्रसाद जी और अखिला जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास शिव कुमारी रामदुलारी जी का।
2: जी इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का, वो लिखते हैं,
0: उमंग कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद, प्रेरणाप्रद और ज्ञानवर्धक होता है। हम तो नियमित श्रोता हैं, आपके द्वारा दी गई जानकारी लाजवाब होती है। हमारे यहाँ बच्चों का सुझाव है कि
2: भारत की नदियों, ऊंची चोटियों और नए नए आविष्कार और वैज्ञानिकों पर जानकारी सुनाए तो बहुत इनायत होगी। आपकी पूरी उमंग कार्यक्रम टीम परिवार को उत्कृष्ट लगन और मेहनत के लिए हम सल्यूट करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने जी का।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी
0: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
2: धन्यवाद आप सबका भाग लेने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
0: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों।
2: श्रोताओं इसका जवाब जान लेते हैं। मातृ वृक्ष उन पेड़ों को कहते हैं जो जंगल में बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें धरती पर दूर दूर तक फैली होती हैं और वे अपनी जड़ों द्वारा अन्य छोटे पेड़ पौधों को पोषण पहुंचाते हैं।
0: जी, और हमारा दूसरा प्रश्न था पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता है। कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियां झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर निर्भर करती है। कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है। साथ ही साथ कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीड़ों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
0: जी, हमारा अगला प्रश्न था क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
2: जी इसका जवाब भी जान लेते हैं। बहुत से पेड़ हो सकते हैं ऐसे, लेकिन क्लोनल पेड़ का सबसे सरल उदाहरण है बरगद और नॉन क्लोनल पेड़ का उदाहरण है आम का पेड़।
0: जी अशोता, हमारा अंतिम प्रश्न था, हमने आपसे पूछा था जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो उदाहरण दीजिए।
2: जब हम किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उसी समय हमें ठंडक पहुंचा रहा होता है और हमारे लिए हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड

0: को अवशोषित कर रहा होता है।
1: जी, तो श्रोताओं ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कंगारू के कितने पैर होते हैं?
1: 8800440559 पर जो हमारा IVRS नंबर है और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर आप हमारे संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIET NCERT को फॉलो करना ना भूलें।
0: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
1: तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है सरितपुर की कहानी।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बाढ़ आने के विभिन्न कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारी अहम जिम्मेदारी है।
2: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारी फसल बर्बाद,
3: फसल बह गई।
4: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों बहुत समय पहले की ये बात है, हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी माँ की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता। वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी। नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
5: लो भाई, पहुंच गए सरितपुर। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
3: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत।
5: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। कितना साफ पानी है।
4: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
6: अरे मैंने आज 10 पेड़ काट डाले।
4: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए।

0: और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
1: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो। इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
0: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे, आसपास ही नहीं, दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
2: अरे काट काट काट, हाँ तो और काट, दस से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
3: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं और पैसे कमाने हैं।
0: गर्मियों का मौसम था, लोग कहते
3: उफ, इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
4: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
5: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेडीज गर्मी ने।
0: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे, और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
6: हमारे पशु पक्षी को क्या होगा, हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा।
7: लगता है नदी क्रोधित हो गई है।
4: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारे फसल बर्बाद,
7: सारी फसल बह गई।
6: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा, सारा सामान
7: जल्दी
6: से ऊपर ले जाना होगा।
7: चलो जल्दी ऊपर,
6: अरे हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो चलो जल्दी, चलो
7: चलो चलो,
6: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप वाप ना आ जाए।
7: ध्यान से संभल कर।
0: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जलस्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हाँ साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
8: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी, बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत

0: बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहुं ओर हाहाकार, अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
1: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार मुनीश शर्मा, कीमती आनंद, पूनम श्रीवास्तव और शशांक शर्मा। शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। श्रोताओं, आपको अवश्य ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है एक गांव की कहानी।

ये बात बहुत पुरानी है। आज से लगभग 200 वर्ष पहले गढ़वाल की पहाड़ियों में एक गांव बसा था। गांव का नाम था रैणी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, झरझर बहते झरने और नदी नाले थे। घाटियों में बहती हुई हवा फूलों की सुगंध को चारों ओर फैला देती थी। बहुत ही सुंदर था यह गांव। इस गांव के लोगों का काम था खेतीबाड़ी करना और पशु पालना। उनकी सारी जरूरतें जंगल से ही पूरी होती थी। दिन भर जंगलों और खेतों में काम करने के बाद लोग जब शाम को अपने घर वापस आते तो उनके नृत्य और लोकगीतों की मधुर आवाज सारे पहाड़ों में गूंजने लगती। जंगल ही इनका सब कुछ था। उन्हें जंगल से वैसा ही लगाव था जैसा अपने परिवारजनों से था। जंगल के पेड़ उनके जीवन का अंग थे। उन्हें लगता कि पेड़ अक्सर कहते हैं, मैं पेड़ हूं, मैं पेड़ हूं, सदियों से मैं खड़ा जीवन देने के लिए। मैं ही बसंत और वर्षा लाता, हवा का अमृत मैं ही पिलाता, खुशहाली को मैं ही लाता। मैं ही जीवन हूं धरती का, मुझे नष्ट मत करो। मैं नष्ट हो जाऊंगा तो झरने सूख जाएंगे, धूल उड़ेगी और फिर बनेंगे रेगिस्तान।

0: रैणी गांव के लोगों का जीवन बड़े ही संतोष से बीत रहा था। इसी गांव में गौरा देवी नाम की एक युवती रहती थी। वो बड़ी बहादुर और मेहनती थी। गांव के और लोगों की तरह वो भी दिन भर जंगल में ही रहती। जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती, फल फूल कंदमूल और शहद इकट्ठा करती।
1: गौरा, अरे ओ गौरा, अरे कहां निकल गई है तू? अकेली जंगल में दूर मत जा।
2: अरे चाची, मैं यहीं तो हूँ। अरे चाची,
1: हाँ,
2: यहाँ आकर तो देखो।
1: हाँ हाँ,
2: कितने सारे छत्ते लगे हैं मधुमक्खियों के।
1: हाँ,
2: सबको यहीं पे बुला लो चाची।
1: हाँ हाँ,
2: सात आठ छत्ते तो होंगे ही।
1: अरे ओ रेवती,
2: अरे सुनो तो, श्यामा।
3: हाँ चाची।
2: जिंदौरी।
3: हाँ चाची।
2: और
1: हाय हाय, ये नाम तो मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। हाँ, प्रसन्नी।

0: इधर आओ, जरा सुनो तो, ये गौरा क्या कह रही है?
1: आ रही हूँ चाची।
2: हाँ चाची।
3: क्या है चाची?
0: अरे क्या हुआ?
4: कोई घबराने वाली बात नहीं है री।
0: हाँ?
4: वो गौरा कह रही है कि सामने वाले पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हैं।
3: छत्ते? क्या मतलब?
4: हाँ हाँ, छत्ते, वो भी दो तीन नहीं, बड़े बड़े 7-8 छत्ते लगे हैं। हाँ,
3: 7-8 छत्ते, कमाल है।
1: अरे फिर तो मजा आ गया।
3: यानी अगर सारा शहद निकाल ले तो दो गगरी भर तो हो ही जाएगा।
2: अरे हम कितने दिनों से खोज रहे थे शहद, अब तक कहीं नहीं मिला, और आज मिला है तो
1: छप्पर फाड़ गए।
3: तो आओ पहले शहद ही निकाल लेते हैं।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, शहद निकालने के बाद दातुन भी तोड़ लेंगे।
1: अरे आज गुलर भी तो तोड़ने हैं।
2: हाँ ठीक है।

0: ऐसा था वहां का दैनिक जीवन। जंगल में चीड़, देवदार, बांस, भैमल, असीन, तूण, तिमल और धौड़ के पेड़ थे। पुरुष खेतों में काम करते और स्त्रियां जंगलों में। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह गौरा अपनी सहेलियों के साथ जंगल में गई। गौरा और उसकी सहेलियां गूलर के फलों को इकट्ठा करने के लिए जंगल में काफी दूर निकल गईं। घूमते घूमते वो अलकनंदा नदी के किनारे पहुंची।
1: अरे गौरा, ये आवाज कैसी आ रही है?
2: आवाज? हाँ, आवाज तो आ रही है। अरे लगता है कोई पेड़ काट रहा है। मुझे तो कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। वो देख गौरा। अरे हाँ, वो साल के बड़े पेड़ के पास।
3: हाँ वही,
2: न जाने कौन लोग हैं।
1: पता नहीं कौन लोग हैं, पता नहीं।
2: अरे धीरे धीरे बोलो, कहीं वो हमारी आवाजें ना सुन ले। चलो और नजदीक चल के देखते हैं।
1: चलो की पैंट, सिर पर टोपी और हाथों में बंदूक भी है।
4: हाय राम,
1: ये गांव के लोग तो नहीं लगते।
2: अरे मुझे तो ये शहर के लोग लगते हैं, जो पेड़ काटने आए हैं।
1: अरे अरे देखो तो, उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को काटकर अलग से इकट्ठा भी कर रखा है।
2: वहां में देखो, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग यहाँ चोरी से आकर अक्सर पेड़ काटते हैं। ऐसा है कि हम इन्हें जरूर रोकेंगे।
3: मगर कैसे? भला इतने सारे हथियारबंद लोगों को कैसे रोका जा सकता है? और वो हमें जान से भी तो मार सकते हैं।
2: अरे भले ही हमें जान की बाजी लगानी पड़े, इन्हें हर कीमत पर रोकना ही है। मगर इस समय इनके सामने जाना खतरे से खाली नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, गांव चलकर और लोगों को भी बुला लाते हैं। सुनो सुनो, मगर जिस रास्ते से हम आए हैं वो तो बहुत लंबा पड़ेगा। सामने वाले पहाड़ को पार करके चलते हैं, वो रास्ता छोटा रहेगा।
0: तो बस फिर क्या था, गौरा देवी अपनी सभी सहेलियों के साथ फौरन अपने गांव की ओर चल पड़ी। कटीली झाड़ियों में उनके कपड़े फट गए, खरोंचे लगी, प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो गया, पथरीली जमीन से पांव लहूलुहान हो गए। मगर बिना रुके वो दौड़ती रही, दौड़ती रही। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, अपने पेड़ों को बचाना। थकी हारी जब वो गांव में पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी। पुरुष काम करने खेतों में गए हुए थे, इसलिए एक भी पुरुष उस समय गांव में नहीं मिला।
1: हाय राम, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब क्या करें गौरा?
2: अरे गांव में मर्द नहीं है तो क्या हुआ, औरतें और बच्चे तो है।

0: हमें उन्हीं को लेकर चलना होगा।
1: हाँ, ठीक है, ठीक है।
2: मगर मगर ये औरतें और बच्चे।
0: अरे अगर मगर मत कर, क्या पेड़ हमारे भाई नहीं है? हम सब बहनें मिलकर अपने पेड़ भाइयों को बचाएंगी।
1: हाँ, हाँ, हाँ, बचाएंगी। हाँ,
0: नहीं तो सारा सत्यानाश हो जाएगा।
1: हाँ, हाँ,
0: अरे कोई

0: और फिर गौरा देवी चल पड़ी जंगल को बचाने। उसके साथ 21 स्त्रियां और 7 बच्चे थे। सभी के सभी निहत्थे थे। उन्हें एक तरकीब सूझी। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि जगह जगह पत्थरों के ढेर लगाकर उन्होंने रास्तों को लगभग बंद कर दिया, ताकि शहर के लोग यदि उन कटे पेड़ों को ले जाना भी चाहें तो ये संभव ना हो सके। अब सारी स्त्रियां आगे बढ़ी और पहुंची उस जगह पर जहां पेड़ काटे जा रहे थे।
1: वृक्ष हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं, इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जिन वृक्षों के कारण हम सांस लेते हैं, अन्न लेते हैं, दवा लेते हैं, आज जब उन्हें काटा जा रहा है तो आओ अपने प्राणों की आहुति देकर इनकी रक्षा करें।
2: लेकिन हम क्या करें, इनके पास तो हथियार है।
1: अरे डरो मत, भाग कर हर बहन एक एक पेड़ से चिपक जाए ताकि ये पेड़ न काट सके। भागो, चलो पकड़ लो प्राणों को। अरे हटो हथियार लो।
3: अरे अरे हटो हटो, नहीं काट सकते, नहीं और से काट
1: सकते, ये कुछ नहीं कर सकते। चाची आप हम पेड़ों से चिपक गई हैं। अब चलाओ कुल्हाड़ी।
4: अभी देखता हूँ सबको बड़ी बहादुर बनती है।
1: हम जान दे देंगे, मगर पेड़ों को नहीं छोड़ेंगे। अरे देखते क्या हो, चलाओ कुल्हाड़ी। अरे शिब्बा, शिब्बा तू तो हमारे गांव का ही है, मार अपनी बहनों को।
3: अरे साथियों देखते क्या हो, आगे बढ़ो और ये पकड़कर पेड़ों से अलग कर दो। अरे खुदा ये देवर ये आगे बढ़ो, आगे चलो।
0: इधर जंगल में ये हो रहा था और उधर आसपास के गांवों में ये खबर आग की तरह फैल गई। गांवों से लोग हथियार लेकर वहां आने लगे। जब पेड़ काटने वालों ने देखा कि अब उनकी दाल नहीं गल सकती तो फिर क्या था, उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए।
5: चिब्बू भाग ले यहां से,
0: सभी ने गौरा देवी और स्त्रियों के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की।
6: वाह भैया, गौरा ने तो बहुत कमाल का काम कर दिया।
4: ऐसी ऐसी चिपकी पेड़ से किसने छोड़ा ही पेड़ को। अरे क्या बात है भाई,
6: जीतती रहे मिट्टी, जीतती
1: रहे। तो हम सबका कर्तव्य है।
0: दोस्तों, इसी रैणी गांव से शुरुआत हुई चिपको आंदोलन की, जो आज सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया है।
7: एक गांव की कहानी अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम आपसे आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
8: और विमलेश को
7: कुसुमलता,
8: जगबंधु,
7: चेतना
8: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
7: नमस्कार, नमस्कार।
9: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
10: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज रहे हैं। अब मीडियम वेव पर हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम जारी रहेंगे। मीडियम वेव पर शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। अब आज की सांधिकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुनेंगे नन्ही दुनिया।
1: बच्चों जय हिंद। बच्चों आज आपके साथ मैं हूँ दीप्ति दीदी
2: और मैं हूँ शारदा दीदी।
1: तो दीदी देखिए ना कि हमारे नन्हे मुन्ने साथियों के स्कूल खुल चुके हैं, पढ़ाई शुरू हो चुकी है और वो अपने दोस्तों से घुल मिल के ढेर सारी बातें शेयर भी कर रहे हैं और हाँ एग्जाम्स भी हो चुके हैं, है ना?
2: बिल्कुल। और ऐसे में तो बच्चे जब दीप्ति जब गर्मी की छुट्टी होती है तो हम भी कभी बच्चे थे, है ना? और छुट्टियों में अपने घर जाते थे, नानी के घर जाते थे, बुआ जी के घर जाते थे और मतलब घूमते थे, खूब मस्ती करते थे। लेकिन एक समय के बाद जैसे स्कूल की याद सताने लगती थी, है ना, और अपने दोस्तों की भी याद आने लगती थी और इतने दिनों के बाद जब अपने दोस्तों से मिलते थे ना तो इतनी खुशी होती थी कि बस पूछो नहीं कि क्या बताएं। तो वैसे ही हमारे नन्हे साथियों को भी जरूर जरूर खुशी हुई होगी भाई अपने दोस्तों से मिलकर।
1: दोस्तों से मिलकर तो हमेशा ही खुशी होती है, चाहे वो स्कूल हो, घर हो या नानी का घर, दादी का घर, चाहे जहाँ हो। और कुछ खास मौकों पर अपने दोस्तों को बुलाना हम बिल्कुल नहीं भूलते और हमारे नन्हे मुन्ने की तो वो जान होती है। जैसे अगर बर्थडे

0: पार्टी हो गई तो हमारे नन्हे मुन्ने अपने दोस्तों को ज़रूर बुलाते हैं, उससे उनका जो खेल कूद है, उनके जो मज़े लेने के हैं, वो कारण जो दुगने हो जाते हैं, है ना दीदी?
1: और दीदी जैसे देखो अभी हम दोस्तों की बात कर रहे हैं, तो एक और दोस्त है हम लोगों का जो अनजाने में ही अपनी सच्ची मित्रता और अपनी ईमानदारी, अपना प्रेम और विश्वास हम सब के साथ जताता है, है ना?
0: वो हमारे घर के आसपास है, हमारी गैलरी में है, हमारे पार्कों में है,
1: हमारे नन्हे साथी भी उन्हें जानते हैं ना?
0: और ऐसे वो खड़े हैं, लेकिन वो बोलते तो नहीं, बात तो नहीं करते हैं, लेकिन हमारी सबसे ज्यादा मदद करते हैं। तो जी हाँ, हम आज किस पर बात कर रहे हैं दीदी?
1: हम पेड़ पौधे, पेड़ पौधों पर। बिल्कुल भाई, ये जो सबसे अच्छे हमारे मित्र है ना, वो बिना किसी कहे बिना कुछ लिए ही वो हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस देते हैं, ताजे फल देते हैं और हमारे वातावरण को भी शुद्ध बनाते हैं, अच्छी अच्छी औषधियाँ देते हैं, है ना? और हमारे जो है कि आंखों को भाता है, जो हमें अच्छा लगता है सुबह मॉर्निंग में, अगर ये पौधे ना हो दीप्ति, सोचो तो क्या ये जीवन लगे, कुछ नहीं। ये पौधे अपने प्रेम से, अपनी खुशियों से, अपनी हवा से, अपनी हरियाली से एक सच्ची अच्छी मित्रता हम सबके साथ निभाते हैं, है ना?
0: ये कभी भेदभाव नहीं करते, आप चाहे इनके पास खेलने जाओ या इनकी छाव में बैठ जाओ, ये कभी मना नहीं करते। तपती धूप में ये खुद जलते हैं, लेकिन हमें ठंडी ठंडी छाव देते हैं। और हाँ बच्चों, पेंसिल की जो लकड़ी है वो भी हमारे इन्हीं दोस्तों से ही बनती है। तो सोचिए कितनी गहरी दोस्ती है हमारे बच्चों की हमारे पेड़ पौधों के साथ, है ना?
1: वैसे बताएं बच्चों, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ना, उसको सोख कर हमें सांस लेने के लिए
0: कार्बन डाइऑक्साइड, जानते हैं बच्चों, जो दीदी ने भी बताया, वो हमारे लिए खतरा है, मतलब कि हमारे जीवन के लिए खतरनाक रसायन है। उस चीज को सोख कर ये पेड़ हमें जीवनदायी ऑक्सीजन देते हैं।
1: और देखो बारिश के में जो मौसम आ गया है, चारों तरफ बारिश भी हो रही है, ऐसी हालत में भूमि की ऊपरी परतें जो मुलायम परतें होती हैं वो बह जाती हैं, तो ऐसे में पेड़ पौधे इस मिट्टी को पकड़ के रखते हैं और बाढ़ आने से भी हमारी सुरक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पानी को सोखते हैं और धरती में उनको अपने जरिए, अपने जड़ के जरिए भेजते
0: नीचे पहुंचाते हैं।
1: ऐसे अनगिनत, मतलब
0: अनगिनत उनके लाभ हैं
1: वो हमें देते
0: हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
1: और उनमें से एक है कि ये इनके आश्रम में कितने पक्षी, कितने
0: छोटे छोटे घोंसले, आप सबने छोटे छोटे मेरे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आपने देखे होंगे जो छोटे छोटे घोंसले हैं। अगर ये पेड़ पौधे ना हो तो सोचिए वो पक्षियों का ठिकाना कहाँ होगा। और तो बच्चों, लेकिन ये सब बातें तो बहुत अच्छी, ये जो हमारे शांत दोस्त हैं जो खड़े रहते हैं, लेकिन कभी ना इनके साथ कभी अगर जरूरत ना हो तो इनके साथ छेड़छाड़ ना करें, इन्हें तोड़े ना, अनावश्यक इनकी पत्तियों को ना तोड़े। और गर्मी के इस मौसम में रोज सुबह या शाम को अपने घर के पौधे में थोड़ा सा पानी
1: डाल
0: दिए।
1: अच्छा पता है दीप्ति दीदी कि एक बात आपको बता रहे हैं, और ये हमारे नन्हे साथियों को भी सुनकर बहुत ही मतलब आश्चर्यचकित होंगे वो, कि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि पौधों में भी हमारी तरह जीवन और संवेदनाएं होती हैं, इसलिए इनकी देखभाल हमें करनी चाहिए जिससे हमारे वातावरण हरा भरा
0: रह सके। और इसी हरे भरे के साथ चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: इस खूबसूरत बालगीत के बाद आइए बच्चे जानते हैं अपने अपने नेक्स्ट सेगमेंट में आओ जाने। और इस आओ जाने सेगमेंट में हम अपने बच्चों को बताएंगे विज्ञान का एक ऐसा जादू जिसे देखकर हम सब हैरान रह जाते हैं। क्या दीदी बताते हैं? कभी बच्चों आपने सोचा है कि अगर हम पानी में एक छोटा सा लोहे का सिक्का या पत्थर डालें तो वो झट से डूब जाता है, लेकिन पानी में ही इतना बड़ा और भारी लोहे का जहाज तैरता रहता है, वो क्यों नहीं डूबता? या फिर जब आप नहाते समय पानी से भरी बाल्टी में खाली मग को उल्टा करके नीचे की तरफ दबाते हो तो ऐसा क्यों लगता है कि पानी के अंदर से कोई उसे ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है? नहीं समझे ना? तो चलिए हम बताते हैं इसे विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। इसे कहते हैं उत्प्लावन बल, यानी बियॉन्ड फोर्स।
1: और दीदी देखिए ना कि जब कोई वस्तु है, मतलब कोई चीज़ है, कोई भी चीज़, मान लीजिए एक आसानी एक छोटा लकड़ी का टुकड़ा ले लेते हैं और उसे तरल में डुबोई जाती है, तो वो तरल द्वारा जो वस्तु के ऊपर जो भार लगता है ना, अभी आपने जो बताया बियॉन्ड फोर्स, वो कहते हैं उत्प्लावन बल। और कहा जाता है इसमें ये होता है कि जो वस्तु का जो पानी जिसके हिसाब से, मतलब जो तरल में डुबोते हैं, उसके हटाए गए भार के बराबर होता है। अगर वस्तु का भार हटाए गए जल के बराबर होता है तो वह सतह पे तैरती है, और यदि कम होता है तो वह थोड़ा ऊपर तैरती है, और थोड़ा भी ज़्यादा होता है वो तो पूर्णतः डूब जाती है।
0: इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। जब हम किसी चीज़ को पानी में डालते हैं तो पानी चुपचाप नहीं बैठता, पानी नीचे से ऊपर की तरफ एक तरीके से बल लगाता है, यानी धक्का देता है। इसी ऊपर को लगने वाले बल को ही उत्प्लावन बल कहते हैं, जैसे पहले ही बताया। अगर पानी का ये धक्का वस्तु के वजन के वजन से ज़्यादा होता है तो चीज़ पानी में तैरेगी, जैसे कागज़ की नाव, प्लास्टिक की गेंद या लकड़ी का टुकड़ा, जैसे कि अभी शारदा दीदी ने बताया। अगर वस्तु बहुत भारी है, पानी का धक्का उसे संभाल नहीं पाया,

0: वो डूब जाएगी जैसे लोहे की कील या पत्थर। अब आप कहेंगे कि जहाज़ कैसे तैरता है, तो क्योंकि जहाज़ को इस तरीके से बनाया जाता है कि वो अपने वज़न से बहुत ज़्यादा पानी को हटाता है, जिससे नीचे से लगने वाला पानी का जो धक्का होता है, जो उत्प्लावन बल होता है, वो बहुत मजबूत हो जाता है और भारी जहाज़ भी मज़े से तैरता रहता है। है ना कमाल का जादू। आज ही आप सब अपने घर में एक टब में पानी भरिएगा और देखिएगा कौन सी चीज़ें तैरती हैं और कौन सी डूब जाती हैं, और अपने दोस्तों को भी इस उत्प्लावन बल के बारे में ज़रूर बताइएगा।
1: बिल्कुल, तो मेरे नन्हे बच्चों, वैज्ञानिकों और प्राकृतिक जो प्रेमी हैं उनको आज के बल आज का जो बाल कार्यक्रम है ना दीदी,
0: आज जो नन्ही दुनिया है वो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। पेड़ों की दोस्ती निभाते रहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए और सुनते रहिए इस शो को। लेकिन अभी हम टाटा बाय बाय नहीं कहेंगे आपसे, क्योंकि अभी बहुत ढेर सारी बातें और भी हैं आपको बताने के लिए।
1: अब देखिए ना कि मौसम बदल रहा है ना दीदी, और ऐसे में हमारे जो नन्हे साथी हैं वो बाहर की चीज़ें खाने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि स्कूल गया है खुद, और जब ये स्कूल जाते हैं तो मम्मा से कहते हैं चाउमीन खिलाएं, है ना, और मतलब पिज्ज़ा, ये सब चीज़ें भाई बाहर का अभी बिल्कुल ही ना खाएं, क्योंकि इससे को खाने से आप पड़ सकते हैं बीमार, है ना बच्चों। तो कोशिश करें कि बाहर की चीज़ें खाने से बचें, और घर के जो अच्छे पौष्टिक आहार हैं जो आपकी मम्मी आपको खिलाना चाहती है, आप वो खाएं जिससे आप अच्छे रहें। और ठंडे पानी पीने से, कोल्ड ड्रिंक पीने से, फ्रिज के ठंडे पानी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने से भी आप उसे बचें, है ना।
0: बिल्कुल दीदी।
1: और दीदी देखिए ना कि मच्छरों का प्रकोप बहुत बढ़ गया है।
0: बहुत
1: भाई, आज बारिश के मौसम में इधर उधर के कितने मच्छर आ रहे हैं घरों में। तो ध्यान दें बच्चों कि मच्छर की वजह से थोड़ा अपने आप को मच्छरों से सुरक्षित करें। हाथ में कुछ तेल या कुछ ऐसी औषधि लगाएं जिससे कि आपको मच्छर ना काटे, और स्कूल जाते समय भी पाँव में, हाथ में ऐसे कुछ लगा लें जिससे कि मच्छर ना काटे।
0: स्कूल जाते समय फुल स्लीव के शर्ट्स पहने, और सॉक्स पहने, जिससे कि जो मच्छर से काटने वाली बीमारियां हैं उससे हमारे बच्चों का बचाव हो सके। और घर में भी जो मच्छरों से बचाव के लिए क्रीम्स आती हैं जो हार्मफुल नहीं होती हैं, उसको आप लगा सकते हैं, स्कूल भी लगा के आप जा सकते हैं। और हाँ, बारिश का मौसम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पानी नहीं पीना है, क्योंकि इस समय जो जल की मात्रा है हमारे शरीर में वो भी बराबर निरंतर बनी रहनी चाहिए। इसलिए पानी पीते रहिए हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों, और हमारा कार्यक्रम सुनते रहिए। और इसी के साथ हम बोलते हैं जय हिंद।
2: अभी नन्हे मुन्ने बच्चे अपना कार्यक्रम सुन रही थी नन्ही दुनिया। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आप हमारे कार्यक्रम प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। थोड़ी देर में युवाणी कार्यक्रम।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से अब युवजन अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।
4: हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। शाम के सफर में स्वागत है आपका युववाणी के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त अंजलि श्रीवास्तव।
5: और मैं हूं उन्नति। उम्मीद है कि आपकी शाम अच्छी गुजर रही होगी। शाम की चाय की प्याली भी आपके साथ होगी,
4: हल्की हल्की हवा चल रही होगी, और रेडियो पर हो युववाणी तो फिर क्या ही बात है।
5: और दोस्तों, इन दिनों तो मौसम भी कुछ ऐसा ही है, जुलाई का महीना, मानसून का मौसम,
4: कहीं हल्की फुहारें, कहीं रिमझिम बारिश, तो कहीं बादलों और धूप की आँख मिचौली।
5: बिल्कुल, और प्रयागराज सहित देश के कई हिस्सों में इन दिनों बारिश लोगों को गर्मी से राहत भी दे रही है।
4: मगर दोस्तों, मानसून सिर्फ मौसम नहीं है, ये खेतों की उम्मीद है, नदियों की धड़कन है, जलाशयों की पूंजी है, और करोड़ों

0: लोगों की आजीविका का आधार है।
1: लेकिन दोस्तों, जब भी बारिश बहुत कम होती है या अचानक इतनी ज़्यादा हो जाती है कि शहरों में जल भराव हो जाता है, तब हम अक्सर कहते हैं मौसम अब पहले जैसा नहीं रहा।
0: और बात केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं है, गर्मियों की ही बात ले लीजिए। गर्मियों की वो तपिश जो पहले कुछ दिनों तक महसूस होती थी, अब महीनों तक आपका और हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है।
1: या सुबह सुबह पक्षियों की वो चहचहाहट जो कभी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा थी, वो भी धीरे धीरे सुनाई ही देना बंद हो गई है। ज़रा सोचिए, कितने लोगों ने पिछले कुछ दिनों में गौरैया देखी होगी।
0: बिल्कुल, शायद ही किसी ने देखी हो। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि हम अक्सर दोस्तों के साथ बैठ कर कहते हैं, यार इस गर्मी ने तो एकदम हाल ही ख़राब करके रखा है, और पिछले साल से तो कहीं ज़्यादा है इस बार की गर्मी, इस बार तो मौसम ही समझ नहीं आ रहा, या पहले ऐसा तो नहीं होता था।
1: लेकिन शायद हम में से बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये बदलाव जो हम अपने आसपास महसूस कर रहे हैं, ये हम सोचते हैं कि सिर्फ साइंटिस्ट की जिम्मेदारी होती है इस पे सोचना। पर्यावरण की चिंता करना सिर्फ साइंटिस्ट करेंगे, सरकारें करेंगी या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस करेंगी।
0: लेकिन जब बारिश का पैटर्न बदलता है, गर्मी बढ़ती है, पानी की कमी होती है और हवा की क्वालिटी अफेक्ट होती है, तो उसका असर सीधे हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है। और बस दोस्तों, यहीं से खुलता है आज की चर्चा का दरवाज़ा।
1: जी हाँ, आज युवाणी में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण संरक्षण की, बट आफ्टर दिस म्यूजिकल ब्रेक।

0: दोस्तों, जब हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन या इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में जंगल, नदियाँ या पहाड़ आते हैं।
1: लेकिन सच कहें तो पर्यावरण की कहानी हमारे कमरे के पंखे, हमारी वाटर बॉटल, हमारे मोबाइल चार्जर और हमारी डेली हैबिट से शुरू होती है।
0: और यही वजह है कि आज पर्यावरण संरक्षण केवल प्रकृति का नहीं बल्कि हमारी लाइफस्टाइल और फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी का भी टॉपिक बन चुका है।
1: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अनुसार आज दुनिया तीन बड़े एनवायरमेंटल चैलेंजेस को फेस कर रही है, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस और पोल्यूशन। इन्हें मिलाकर ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस कहा जाता है।
0: यानी एक तरफ मौसम में लगातार बदलाव हो रहे हैं, दूसरी तरफ कई वाइल्ड लाइफ स्पीशीज, प्लांट स्पीशीज खतरे में हैं और साथ ही एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल डिग्रेडेशन भी बढ़ रहा है।
1: और इसका असर किसी एक देश पर नहीं बल्कि हमारी एवरीडे लाइफ पर पड़ रहा है। कभी बढ़ती गर्मी के फॉर्म में, कभी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के फॉर्म में, तो कभी वाटर स्कार्सिटी के फॉर्म में।
0: यूनाइटेड नेशंस एंड इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC की रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इंडस्ट्रियल एरा के कंपैरिजन में लगभग 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है और यही वजह है कि पिछले कुछ साल दुनिया के सबसे गर्म सालों में गिने जाते हैं।
1: दोस्तों, हमें अक्सर लगता है कि मेरे अकेले से क्या फ़र्क पड़ेगा, मगर अगर करोड़ों लोग यही सोचे तो क्या होगा, कभी सोचा है? कलेक्टिव इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। और एक्चुअली इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की शुरुआत अक्सर छोटी छोटी केयरलेस हैबिट से होती है और सॉल्यूशंस भी छोटे छोटे रिस्पॉन्सिबल हैबिट से ही शुरू होते हैं।
0: और इसी के साथ दोस्तों, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक नेशनल प्रायोरिटी भी है। यही वजह है कि भारत में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाटर एक्ट 1974 और एयर एक्ट 1981 जैसे इंपॉर्टेंट लॉज बनाए गए हैं ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके और इन्वायरमेंट को कंजर्व किया जा सके।
1: वही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 हमारी बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
0: और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दोस्तों, हमारे संविधान का आर्टिकल 48A राज्य को पर्यावरण और वनों की रक्षा करने का निर्देश देता है।
1: वहीं आर्टिकल 51AG हम सभी नागरिकों को फंडामेंटल ड्यूटी बताता है कि हम प्रकृति, नदियों, जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा करें।
0: अच्छी बात यह है कि बीइंग इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल कोई मुश्किल काम नहीं है। पर्यावरण संरक्षण हमेशा किसी बड़े कैंपेन से शुरू नहीं होता,
1: वो शुरू होता है एक पेड़ लगाने से, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ कम करने से और पानी बचाने से,
0: बिजली की अननेसेसरी कंजम्पशन रोकने से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कार पूलिंग अपनाने से और अपने आसपास क्लीनलीनेस बनाए रखने से।
1: जब हम किसी पौधे को लगाते हैं तो सिर्फ प्लांटेशन नहीं करते बल्कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक बेहतर एनवायरनमेंट तैयार करते हैं।
0: दोस्तों, आज सस्टेनेबिलिटी कोई फैशनेबल वर्ड नहीं है बल्कि इस समय की ज़रूरत बन चुका है ये।
1: क्योंकि पर्यावरण की रक्षा करना केवल पेड़ों को लगाना नहीं होता, ये स्वच्छ हवा, सुरक्षित पानी, बेहतर स्वास्थ्य और एक सस्टेनेबल फ्यूचर को सुरक्षित करना है।
0: डू रिमेम्बर दोस्तों, स्मॉल एक्शंस व्हेन रिपीटेड बाय मिलियंस ऑफ पीपल क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट।

दोस्तों, अब अगले सेगमेंट में हमारे पास आपके लिए है एक वार्ता जिसका शीर्षक है संस्कृति एवं समाज के विकास में रेडियो की भूमिका, और जिसके वार्ताकार हैं अंश गोस्वामी। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।

संस्कृति और समाज के विकास के लिए रेडियो की भूमिका। रेडियो केवल विज्ञान का एक अद्भुत आविष्कार नहीं है, बल्कि यह मानव सभ्यता, संस्कृति और समाज ताने बाने को बदलने वाला एक सशक्त माध्यम है। जब 20वीं सदी की शुरुआत में रेडियो का आगमन हुआ तो इसने दूरियों को पाट दिया और शब्दों को पंख दे दिए। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश जहाँ भूगोल, भाषा और संस्कृतियाँ हर कुछ किलोमीटर पर बदल जाती है, रेडियो ने एक सूत्रधार भूमिका निभाई है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ काम करने वाली रेडियो ने समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सूचना, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाने का भागीरथ प्रयास किया है। चाहे वह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्रांति लाना हो, लोक संगीत को पुनर्जीवित करना हो या फिर राष्ट्रीय संकटों के समय देश को एकजुट करना हो, रेडियो की भूमिका सदैव अग्रणी रही है। रेडियो के विकास की कहानी मानव चेतना के विस्तार की कहानी है। गुगली एल्मो मार्कोनी के आविष्कारों से शुरू होकर

आज के डिजिटल और पॉडकास्ट युग तक रेडियो ने कई उतार चढ़ाव देखे। भारत में 1920 के दशक में अमेच्योर रेडियो क्लबों से शुरू हुई यह यात्रा 1936 में ऑल इंडिया रेडियो के रूप में एक औपचारिक शक्ति बनी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रेडियो ने राष्ट्रवाद की भावना को फूंकने और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आजाद हिंद रेडियो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जिसने ब्रिटिश हुकूमतों के खिलाफ भारतीयों को लामबंद किया। स्वतंत्रता के बाद देश के सामने भुखमरी, अशिक्षा, सांप्रदायिकता और गरीबी जैसी विशाल चुनौतियां थीं। ऐसे समय में रेडियो सरकार और जनता के बीच का सबसे बड़ा मजबूत पुल बना। समाज का विकास तभी संभव है जब सूचना और ज्ञान का लोकतांत्रिकरण हो। रेडियो ने इस कार्य को बेहद सरलता और सुगमता से अंजाम दिया है। भारत जैसे देश में जहां एक समय साक्षरता दर बहुत कम थी, वहां लिखित माध्यम से बहुत सीमित लोगों तक ही पहुंच पाते थे, रेडियो ने इस सीमा को भी तोड़ा। इसने ध्वनि को शिक्षा का माध्यम बनाया। आकाशवाणी ने स्कूलों और विश्वविद्यालयों के सहयोग से शैक्षिक प्रसारणों की शुरुआत की। ज्ञानवाणी जैसे चैनलों ने छात्रों को घर बैठे गुणवत्ता शिक्षा प्रदान। समाज के उन वयस्कों के लिए जो बचपन में स्कूल नहीं जा सके, रेडियो ने विशेष कार्यक्रम चलाकर उन्हें व्यवहारिक ज्ञान, नागरिक अधिकारों और बुनियादी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। 1960 के दशक में जब भारत खाद्यान्न संकटों से जूझ रहा था, तब रेडियो ने देश को आत्मनिर्भर बनने में सैनिक भूमिका निभाई। आकाशवाणी के कृषि जगत जैसे कार्यक्रमों ने किसानों को नए बीजों, खादों, सिंचाई की तकनीकों और मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी सीधे खेतों तक पहुंचाई। वैज्ञानिकों और किसानों के बीच सीधा संवाद स्थापित कर रेडियो ने कृषि के आधुनिकीकरण को गति दी, जिसके परिणाम स्वरूप देश में हरित क्रांति सफल हो सकी। महामारियों से निपटने, स्वच्छता बनाए रखने और अंधविश्वासों को दूर करने में रेडियो एक मार्गदर्शक रहा है। चेचक, पोलियो उन्मूलन और हाल के वर्षों में कोविड-19 महामारी के दौरान रेडियो ने अफवाहों को रोकने और सही जानकारी पहुंचाने में अभूतपूर्व काम किया है। दो बूंद जिंदगी का नारा रेडियो के माध्यम से देश के हर कोने में गूंजा। बाल विवाह, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और छुआछूत जैसी समाज बुराइयों के खिलाफ रेडियो, नाटकों और वार्ताओं के जरिए समाज की चेतना को झकझोरा गया है। जब चक्रवात, भूकंप या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो बिजली गुल हो जाती है, मोबाइल नेटवर्क ठप हो जाता है और इंटरनेट बंद हो जाता है। ऐसे समय में केवल ट्रांजिस्टर ही काम आता है जो सूखी बैटरी से चलता है। रेडियो ने हमेशा संकट के समय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दी है और राहत कार्यों में समन्वय स्थापित किया है। संस्कृति किसी भी समाज की आत्मा होती है। रेडियो ने न केवल भारतीय संस्कृति को संरक्षित किया है, बल्कि उसे समृद्ध और प्रसारित भी किया है। भारत की असली संस्कृति उसके गांवों और लोक धुनों में बसती है। रेडियो के आने से पहले एक क्षेत्र का लोक संगीत वहीं तक सीमित रहता था। आकाशवाणी के क्षेत्रीय केंद्रों ने स्थानीय लोक गायकों, सोहर, चैती, बिहू, भांगड़ा, गरबा और बाउल जैसे लोकगीतों को रिकॉर्ड करना और प्रसारित करना शुरू किया। इससे इन कलाकारों को न केवल आजीविका मिली, बल्कि भावी पीढ़ी के लिए यह समृद्ध सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित हो गई। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत केवल राजाओं महाराजाओं के दरबारों की महफिलों तक सीमित थी। रेडियो ने इसे आम आदमी के घर की रसोई और बैठक तक पहुंचा दिया। आकाशवाणी के संगीत सम्मेलन ने पंडित भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर, उस्ताद अमीर खान और MS सब्बुल लक्ष्मी जैसी महान विभूतियों की कला से देश को पूरा सराबोर कर दिया। इसने आम जनता में संगीत की समझ और अभिरुचि पैदा की। रेडियो ने भाषा के मानकीकरण और साहित्य के प्रचार प्रसार में असंतुलनीय योगदान दिया। मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और मंटो जैसे महान साहित्यकारों की कृतियों को रेडियो नाटकों के रूप में प्रस्तुत किया गया। हवा महल जैसे कार्यक्रमों ने गल्प और कहानियों को हर भारतीय के जीवन का हिस्सा बना दिया। नेतृत्व क्षमता का विकास हुआ है और वे स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वरोजगार के मामलों पर खुलकर अपनी बात रख पा रहे हैं। राजनीतिक और सामाजिक संवाद आधुनिक सेतु। आधुनिक युग में जहां टेलीविजन और सोशल मीडिया का बोलबाला है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से जुड़ने के लिए रेडियो को चुना। अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ मन की बात कार्यक्रम इस बात का जीवंत प्रमाण है कि रेडियो आज भी कितना प्रासंगिक है। इस कार्यक्रम

0: के माध्यम से राजनीतिक से दूर देश के उन गुमनाम नायकों की कहानियों को सामने लाया जाता है जो समाज में बदलाव ला रहे हैं। प्रधानमंत्री अक्सर देश के विभिन्न त्योहारों, स्थानीय कलाओं और विलुप्त हो रही भाषाओं का जिक्र करते हैं, जिससे नागरिकों में अपनी धरोहर के प्रति सम्मान जागृत होता है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक इस कार्यक्रम में देश को जन आंदोलन का रूप ले लिया है। इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के इस दौर में एक ऐसा समय ऐसा लग रहा था कि रेडियो शायद इतिहास के पन्नों में खो ही जाएगा, लेकिन रेडियो ने अपनी प्रकृति को बदला, एक नए अवतार में सामने आया। 1900 के दशक से और 2000 की शुरुआत में निजी FM चैनलों के आने से रेडियो पूरी तरह से कूल और युवाओं का माध्यम बन गया। शहरी समाज में गाड़ियों और यात्रा के दौरान FM सुनना एक संस्कृति बन गई। इससे समसामयिक मुद्दों पर तीखे और मजेदार ढंग से बात करना शुरू हो गई। आज रेडियो तरंगों की सीमाओं से मुक्त हो चुका है। इंटरनेट और पॉडकास्ट के रूप में रेडियो एक डिजिटल रूप ले लिया है। अब श्रोता अपनी सुविधा के अनुसार इतिहास, विज्ञान, दर्शन, डरावनी कहानियां और वित्तीय ज्ञान के ऑडियो सुन सकते हैं। स्क्रीन टाइम से थक रही दुनिया अब ऑडियो की तरफ लौट रही है। लोग काम करते हुए, जिम करते हुए या खाना खाते हुए ज्ञान और मनोरंजन के लिए पॉडकास्ट सुन रहे हैं। रेडियो, अखबार और इंटरनेट के होते हुए भी समाज के विकास के रेडियो की कुछ एक ऐसी अनूठी विशेषताएं हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। रेडियो खरीदने और उसे सुनने के लिए महंगे इंटरनेट पैक या केबल कनेक्शन की जरूरत नहीं होती है। यह समाज के सबसे गरीब व्यक्ति के बजट में भी समा जाती है। दृश्य माध्यम हमारी कल्पना को सीमित कर देते हैं क्योंकि सब कुछ स्क्रीन पर दिख रहा होता है। इसके विपरीत रेडियो सुनते समय इंसान का दिमाग शब्दों और आवाजों के आधार पर खुद तस्वीरें बनाता है। यह रचनात्मकता और बौद्धिक विकास के लिए बहुत फायदेमंद है। रेडियो सुनते सुनते आप गाड़ी चला सकते हैं, खेतों में हल चला सकते हैं, घरों की सफाई कर सकते हैं या कारखानों में काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना काम रोकने की आवश्यकता नहीं है। अखबार पढ़ने के लिए साक्षर होना जरूरी है, लेकिन रेडियो से अपना ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल सुनने और समझने की क्षमता ही काफी है। संस्कृति और समाज के विकास की यात्रा में रेडियो केवल एक मूक गवाह नहीं रहा है, बल्कि वह एक सक्रिय मार्गदर्शक, शिक्षक और मित्र भी रहा है। इसने राजा और रंक, शहर और गांव, साक्षर और निरक्षर के बीच दूरियों को समाप्त कर पूरे समाज को एक धरातल पर खड़ा किया है। शब्द कभी मरते नहीं और जब देश ध्वनि की तरंगों पर सवार होकर रेडियो के माध्यम से हवा में तैरते हैं तो वे समाज की चेतना को हमेशा के लिए बदल देते हैं। आज जब हम एक अत्यधिक डिजिटल और कभी कभी अकेलेपन से भरे समाज में जी रहे हैं तो रेडियो की मानवीय आवाज हमें एक जुड़ाव का एहसास कराती है। भविष्य में तकनीक चाहे कितनी भी बदल जाए, जब तक मानव समाज में बातचीत, संगीत, कहानियां और सूचनाओं में भूख रहेगी तब तक रेडियो प्रासंगिक रहेगा। समाज को संस्कारित करने और संस्कृति को जीवित रखने में रेडियो की भूमिका कल भी अतुलनीय थी, आज भी अनिवार्य है और कल भी मार्गदर्शक रहेगी।
1: तो दोस्तों, ये थी वार्ता जिसका शीर्षक था संस्कृति एवं समाज के विकास में रेडियो की भूमिका। वार्ताकार थे अंश गोस्वामी। आपको ये वार्ता कैसी लगी बताइएगा हमारी ईमेल ID yuvvaniald@gmail.com पर और हमारे फ़ोन नंबर 8004926250 पर। प्रोग्राम में बढ़ेंगे हम आगे, आपको गीत भी सुनाएंगे, मगर उसके पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: आज हम एक ऐसे महान समाज सुधारक के जीवन पर बात करने जा रहे हैं जिनका पूरा जीवन मानवता, समानता, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के लिए समर्पित रहा। जब भी भारत में समाज सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने वाले महापुरुषों का नाम लिया जाता है, तब महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम अत्यंत सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है। उन्होंने अपने विचारों, कार्यों और दूरदृष्टि के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का एक उज्ज्वल उदाहरण प्रस्तुत किया।
1: महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। उनका परिवार खेती और फूलों के व्यवसाय से जुड़ा था और यही कारण था कि उनका परिवार फूले उपनाम से जाना जाने लगा। बचपन से ही वो अत्यंत जिज्ञासु और मेधावी थे। उन्होंने ये अनुभव किया कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्ति के जीवन को बदलने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। यही विचार आगे चलकर उनके जीवन का उद्देश्य बन गया।
0: महात्मा फुले का सबसे बड़ा विश्वास था कि यदि समाज को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा को हर व्यक्ति तक पहुंचाना होगा। वो मानते थे कि शिक्षित समाज ही जागरूक समाज बन सकता है। आज भी हम देखते हैं कि शिक्षा किसी भी व्यक्ति के आत्मविश्वास, सोच और भविष्य को नई दिशा देती है।
1: महात्मा फुले के जीवन का सबसे प्रेरणादायक अध्याय उनकी पत्नी क्रांतिकारी ज्योति सावित्रीबाई फुले के साथ था। मिलकर उन्होंने उनके साथ कई कार्य किए और दोनों ने मिलकर ये वर्ष 1848 में पुणे में बालिकाओं के लिए पहला आधुनिक विद्यालय प्रारंभ किया। उस समय ये केवल एक विद्यालय नहीं था, बल्कि समाज में शिक्षा के एक नए युग की शुरुआत थी। महात्मा फुले का विश्वास था कि यदि एक लड़की शिक्षित होगी तो पूरा परिवार और आने वाली पीढ़ियाँ शिक्षित होंगी। आज जब हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों की बात करते हैं, तब उनके विचार और भी अधिक प्रासंगिक प्रतीत होते हैं।
0: महात्मा फुले केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहे, वो समाज में समानता, भाईचारे और मानवता के पक्षधर थे। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान और अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने समाज में जागरूकता फैलाने के लिए अनेक कार्य किए और लोगों को ये संदेश दिया कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। उनका उद्देश्य लोगों को जोड़ना और समाज में सहयोग तथा सद्भाव की भावना को बढ़ाना था।
1: इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने साल 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य लोगों में सत्य, समानता, आत्मसम्मान और सामाजिक जागरूकता की भावना विकसित करना था। वो चाहते थे कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने विवेक से निर्णय ले और शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बने। आज भी हम यदि अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि जागरूकता और शिक्षा किसी भी समाज के विकास की सबसे मजबूत नींव है।
0: महात्मा फुले एक संवेदनशील लेखक और विचारक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकों और लेखों के माध्यम से समाज को नई दिशा देने का प्रयास किया। उनकी प्रसिद्ध कृति गुलामगिरी केवल एक पुस्तक नहीं थी, बल्कि मानव समानता और आत्मसम्मान का संदेश देने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ भी थी। वो मानते थे कि विचारों की शक्ति किसी भी परिवर्तन से बड़ी माध्यम होती है, इसलिए उन्होंने लेखन को समाज जागरण का प्रभावी माध्यम समझा।
1: प्रिय श्रोताओं, महात्मा फुले का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो स्वयं आगे बढ़ने के साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ने का अवसर दे। उन्होंने किसानों, महिलाओं और समाज के वंचित वर्गों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक रचनात्मक प्रयास भी किए। वो चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो और आत्मनिर्भर बनकर समाज की प्रगति में योगदान दे।
0: आज के समय में जब हम डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन लर्निंग और नई तकनीकों की बात करते हैं, तब भी महात्मा फुले का संदेश वही है, शिक्षा सबके लिए हो, अवसर सबके लिए हो और प्रगति सबकी हो। यदि आज का युवा अपने ज्ञान का उपयोग केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं बल्कि समाज के विकास के लिए भी करे, तो उनके जीवन से जो हमें प्रेरणा मिलती है वो सच साबित होगी।
1: दोस्तों, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि महात्मा ज्योतिबा फुले को उनके समाज सेवा, शिक्षा और मानवता के प्रति समर्पण के कारण लोगों ने महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया। ये सम्मान किसी पद या पुरस्कार से नहीं, बल्कि लोगों के प्रेम, विश्वास और उनके महान कार्यों से प्राप्त हुआ था। यही किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है।
0: अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि महात्मा ज्योतिबा फुले का जो जीवन था वो केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए एक प्रेरणा भी है। उन्होंने हमें सिखाया कि शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति है, समान

0: सबसे बड़ा मूल्य है और मानवता सबसे बड़ा धर्म है। यदि हम इन तीनों सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं तो हम न केवल स्वयं आगे बढ़ेंगे बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
1: आइए हम सब महात्मा ज्योतिबा फूले के आदर्शों से प्रेरणा लें और शिक्षा, समानता, सेवा तथा मानवता के मूल्यों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।

0: तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने प्रोग्राम में रोज Q&A सेशन लेके आते हैं, तो कल का हमारा प्रश्न था,
1: उस भारत राजा का नाम बताइए, उस भारतीय राजा का नाम बताइए जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त।
0: और दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है, ओजोन परत संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। आप हमको अपना आंसर्स भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी yuvvaniald@gmail.com पर, और हमारे फ़ोन नंबर 8004926250 पर। दोस्तों, हम ये Q&A सेशन आपके लिए इसलिए लेके आते हैं ताकि जो हमारे यूथ हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनके लिए रोज़ कोई ना कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ रहे जो अगर वो कहीं सुन लें या रेडियो में अभी वो कैजुअली सुन रहे हैं तो उनके दिमाग में वो रह जाए, ताकि वो एग्ज़ाम आए तो रिकॉल हो जाए उनको।
1: और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि उन्हें बस सुन करके रख लेना है, वो ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे हम उनके लिए हर रोज़ नए नए सवाल लेकर के आते हैं, तो वो उन सवालों को सुन करके उसे फिर अपने हिसाब से उसे नोट डाउन करके रखें, ताकि जब भी वो आगे रिविज़न करने बैठे तो उनका काम जो है वो आसान हो जाए, उन्हें अलग से कुछ पढ़ने की या फिर कोई नई किताब खोलने की ज़रूरत ना पड़े।
0: एग्जैक्टली, जैसा हम कहते हैं कि हमारा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं तो कई चीज़ें हम ऐसी चर्चा करते हैं जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके लिए यूजफुल हो सकती है। तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए, एंड इफ नॉट दैट तो आप अपने फोन में नोट्स ऐप खोल सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं, ताकि जो आपने लिखा है वो आपके एग्जाम टाइम में रिकॉल हो जाए।
1: यानी आज के टाइम पे जो पढ़ाई भी है वो भी स्मार्ट स्टडी हो गई है। तो इसी के साथ अंजलि, मुझे लगता है अब समय हो चला है कि हमें अपने दोस्तों से अलविदा कहना होगा। दोस्तों, इजाजत दीजिए मुझे यानी उन्नति,
0: और मुझे अंजलि श्रीवास्तव को नमस्कार।
2: अभी हमारी युवा श्रोता युवाणी कार्यक्रम सुन रही थी। हम आकाशवाणी प्रयागराज से बोल रहे हैं, 6 बजने को हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार हम रिले कर रहे हैं, बस थोड़ी प्रतीक्षा।

0: किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और इसके लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायालय ने असम के विदेशी न्यायाधिकरणों से विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए ये बात कही। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष जांच दल से जांच संबंधी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को इस मामले में 3 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्रियों को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधा योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 6 लेन का यह देश का दूसरा सबसे लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर है। इसकी लंबाई 63 किलोमीटर है। यह स्वचालित और रोबोटिक मशीनों की सहायता से निर्मित देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। इस एक्सप्रेसवे से लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर केवल 35 से 45 मिनट रह जाएगा। दोनों शहरों के बीच कार से यात्रा करने पर ₹275 टोल टैक्स लगेगा। एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों की अनुमति नहीं है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेजी से विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल के

0: यहाँ पर स्थापित हुई है और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही हैं और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी और सैनिक स्कूलों के बारे में जानकारी दी। एनसीसी के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियम कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की एक उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित एनसीसी की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। भारत और जापान ने मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान के टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान द्वारा किए गए हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन की लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर ही सिमट गई। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 341 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। लीजिए सुनिए इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष और कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। पहले आज के शेष कार्यक्रम 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में गुरु प्रसाद शर्मा का वायलिन वादन सुनवाया जाएगा। 6:30 पर ग्रामीण भाइयों के लिए पंचायत घर कार्यक्रम प्रसारित होता है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे ग्रामीण भाई सुनेंगे राम प्रसाद और साथी के स्वर में निर्गुण, इसके अलावा अनीस देहाती से लोकभाषा कविता पाठ और धान की फसल में प्रमुख रोग एवं उपचार इस विषय पर डॉक्टर अरुण कुमार चतुर्वेदी से चंद्रजीत यादव की बातचीत। प्रसारण समय याद रखिएगा 6:30। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे डॉक्टर वर्षा अग्रवाल की वार्ता जयशंकर प्रसाद के नाटकों में देश प्रेम। 7:45 पर सुगम संगीत के प्रोग्राम में ममता त्रिपाठी के स्वर में गीत और भजन सुनिएगा और 8 चित्रपट संगीत का कार्यक्रम प्रसारित होगा और 8:30 पर विज्ञान जगत। श्रोताओं ये थी जानकारी इस सभा में प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों की और अब कल के कुछ प्रमुख आकर्षण इस तरह से हैं। कल रात 9:30 पर गजलों का प्रोग्राम सुनिएगा कहकशा। 10 आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से हम रिले करेंगे खेल दर्पण कार्यक्रम। सुबह 6:05 पर सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। विचार बिंदु में 6:30 पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार प्रसारित किए जाएंगे। किसान भाइयों के लिए रोज की तरह कृषि जगत कार्यक्रम हमारी प्रातःकालीन सभा में 6:35 पर सुनवाया जाएगा जिसमें डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप से अरविंद कुंवर की बातचीत सुनवाई जाएगी। विषय होगा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम रोज की तरह 6:45 पर आप सुन सकेंगे। कल के इस कार्यक्रम में डॉक्टर आशुतोष राय की वार्ता होगी

विषय होगा ईयरफोन के ज्यादा उपयोग से होने वाली हानियां। सुगम संगीत के प्रोग्राम में सुबह 9:50 पर अमित कुमार जायसवाल और शाम 7:45 पर अमृता मालवीय के स्वर में भजन और गीत प्रसारित किए जाएंगे। श्री रामचरितमानस से संगीत ने पाठ आप रोज सुनते हैं हमारी प्रातःकालीन सभा में ठीक 7 बजे और 7:10 पर हाजिर होंगे फिल्मों से ली गई चुनिंदा भक्ति रचनाओं के साथ। शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में सुबह 7:30 पर, दिन में 12:15 पर और रात्रि 10:30 पर उपशास्त्रीय गायन के अंतर्गत विदुषी मुनीर खातून बेगम से ठुमरी भैरवी सुनिएगा। सुबह 10:05 पर वॉइस ऑफ प्रयागराज के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे नूपुर जोशी से नेहा गुप्ता और अभय कांत तिवारी की बातचीत का पहला भाग। प्रसारण समय याद रखिएगा कल सुबह 10:05। दिन में 12:30 पर आपकी फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा हेलो फरमाइश। 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में हमारी ग्रामीण बहनें सुनेंगी आकांक्षा भारती और साथी के गए लोकगीत के अलावा रंजना पटेल से की गई बातचीत महिलाओं के सुनहरे सपने। सुबह 8:45 पर कार्यक्रम प्रसारित होगा नमस्कार प्रयागराज। दिन में 2:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा NCERT उमंग। इसके अलावा सुबह 10:30 पर लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे कलाकार होंगे राजा राम यादव और उनके साथी। शाम 5 बजे धरती के गीत कार्यक्रम में राम बाबू यादव और साथी के गाए लोकगीत प्रसारित किए जाएंगे। शाम 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम में हमारे युवा श्रोता करियर की बात और प्रेरणा पुंज के केंद्र में कैप्टन विक्रम बत्रा के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में विष्णु राजा के गए लोकगीत सुनवाए जाएंगे। इसके अलावा विजय शंकर त्रिपाठी से रामायण पाठ कार्यक्रम सुन सकेंगे। शाम 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में डॉक्टर अनिल कुमार इसे फिर सुन लीजिए शाम 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में डॉक्टर अनिल प्रताप गिरी की वार्ता होगी। विषय होगा नव्य न्याय भाषाया वैशिष्टम। रात 8 बजे सेहत की बात के अंतर्गत बदलते मौसम में त्वचा रोग का होम्योपैथिक द्वारा उपचार विषय पर डॉक्टर राकेश राज से सुंदरम तिवारी की बातचीत सुनवाई जाएगी। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे इस सभा में प्रसारित होने वाली शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में कुछ सूचनाएं। मंजू देवी, थाना पिपरी, जनपद कौशाम्बी से हमें सूचित करती हैं कि इनकी संबंधी अलीशा, जिसकी उम्र 17 वर्ष है, कद 5 फिट, शरीर की बनावट औसत है, रंग गोरा है, चेहरा गोल है और ये सफ़ेद काला फूलदार नीले रंग का दुपट्टा पहने हुए हैं और इनके विषय में कोई भी जानकारी यदि आपको उपलब्ध होती है तो कृपया इस पते पर संपर्क करें। पता नोट करें, मंजू देवी, थाना पिपरी, जनपद कौशाम्बी।

फ़ोन नंबर है 8470926538। मोबाइल नंबर हम आपको एक बार फिर बता दें 8470926538। एक अन्य सूचना, रामचल यादव थाना सराय इनायत प्रयागराज से मैं सूचित करती हैं कि इनकी संबंधी रितिका यादव, जिनकी उम्र 20 वर्ष है, कद 5'1", शरीर की बनावट सामान्य है, ये दिनांक 7 मई 2026 से मुट्ठीगंज से लापता हो गई हैं। रितिका यादव के विषय में कोई भी जानकारी यदि आपको उपलब्ध होती है तो कृपया इस पते पर संपर्क करें। पता नोट करें, रामचल यादव थाना सराय इनायत प्रयागराज। एक अन्य सूचना, अनीता देवी पत्नी राम कैलाश निवासी बड़ौदा थाना मोवियामा प्रयागराज से मैं सूचित करती हैं कि इनकी संबंधी प्रिया देवी, जिनकी उम्र 17 वर्ष है, कद 5'3", रंग गेहुआ है, चेहरा गोल है, ये दिनांक 4 अप्रैल 2026 से बड़ौदा सुकुलपुर से लापता हो गई हैं। इनके विषय में कोई भी जानकारी यदि आपको उपलब्ध होती है तो कृपया इस पते पर संपर्क करें। पता नोट करें, अनीता देवी पत्नी राम कैलाश निवासी बड़ौदा थाना मोवाइमा प्रयागराज। मोबाइल नंबर है 9305402492। मोबाइल नंबर हम आपको एक बार फिर बता दें 9305402492। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खोई हुई व्यक्तियों के संबंध में कुछ सूचनाएं।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। इस स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने को हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचारों का अब से थोड़ी ही देर में।

0: का रोल हो, तब समझिए गया कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
1: योजनायाः प्रथमे चरणे पटना, वाल्मीकि नगरं, माता मुंडेश्वरी, राजगीर इत्येतानि स्थानानि समाविष्टानि सन्ति। राज्य प्रशासनं प्रत्येकस्मै यात्रानुमति पत्राय 22,400-15,000 रूप्यकाणि यावत् अनुदानं प्रदास्यति। उदग्रयान पर्यटन सेवा जुलाई मासस्य 18 दिनांकाद आरभ्य प्रत्येकस्मिन् शनिवासरे रविवासरे च संचालिता भविष्यति। मध्य प्रदेशस्य भोपाल नगरे एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 इत्यस्य आयोजनं प्रचलति। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादवः सम्मेलनस्य उद्घाटनं अकरोत् तथा 870 दशांशोत्तर 7 कोटि रूप्यकाणां निवेशेन स्थापितानां 20 औद्योगिक केन्द्राणां शुभारम्भम् अकरोत्। अस्य सम्मेलनस्य उद्देश्यं मध्यप्रदेशं देशस्य प्रमुख प्रौद्योगिकी औद्योगिक केन्द्ररूपेण विकसितुम् अस्ति। सम्मेलनं सम्बोधयन् मुख्यमंत्री अवदत् यत् विगत 12 वर्षेषु भारतं विश्वस्य शीघ्रतम विकासमान देशेषु अन्यतमं जातम्। असौ अवदत् यत् पूर्वं मध्य प्रदेशः केवलं कृषेः कृते प्रसिद्धः आसीत्, किन्तु अधुना राज्ये ड्रोन यानात् आरभ्य प्रक्षेपणास्त्र पर्यन्तं निर्माणं क्रियते। भारत जापान देशौ अद्य स्वतंत्रं मुक्तं नियमाधारितं च हिंद प्रशांत प्रदेशं प्रवर्धयितुं स्वस्य प्रतिबद्धतां पुनः सुदृढीकृतवन्तौ। जापान देशस्य टोक्यो नगरे आयोजिते अष्टमे रक्षा नीति संवादावधौ उभौ देशौ विद्यमानस्य क्षेत्रीय वैश्विकयोः सुरक्षा पर्यावरणस्य विषये चर्चां कृतवन्तौ। टेनिस क्रीडायां इटली देशस्य यैनिक सिनर इत्येषः जर्मनी देशस्य अलेक्जेंडर जेवेरेव इत्यमुं पराजित्य स्वस्य विम्बल्डन पुरुष एकल उपाधिं यथावदेव धारयति। इति वार्ताः।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे पंचायत घर।
3: पंचो राम राम।
4: राधा बहनी।
3: हाँ भैया।
4: देखा जोन है रबी और खरीफ दो महत्वपूर्ण फसल चक्र हैं।
3: हाँ।
4: रबी में जैसे गेहूं के खेती का हमारे सभी तैयारी की जाते हैं, ठीक वही तरह जब खरीफ का मौसम आवत है तो धान का बात होते है।
3: बिल्कुल, बिल्कुल।
4: और धान का बात जब होता है जैसे इस समय चल रहा बाट है, बरखा बुन्नी का दिन है, तो धान के फसल में सबसे ज्यादा जो दिक्कत का बात आवत है क्योंकि बरसात का मौसम है वो है खरपतवार का बात। कभी कभी तो धान के खेत में देखे में ये आवत है बहनी कि जरूरत से ज्यादा खरपतवार बढ़ जाते हैं और मुख्य फसल जौन हो के ढाक लेते हैं। कहे का मतलब कि खरपतवार का बढ़वार ज़्यादा हो जाता है और मुख्य फसल का बढ़वार कम हो जाता है।
3: बिल्कुल सही।
4: तो खरपतवार जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो निश्चित रूप से जौन मुख्य फसल है ओकर बढ़वार कम होता है तो पौधा अस्वस्थ हो जाता है, रोग रोधी ना ही रह पावत है और जौने का सीधा सीधा प्रभाव पैदावार पर पड़ता है। जरूरत ये बात का है राधा बहनी की, देखा हम किसान भाई खर पतवार का नियंत्रण कैसे कीन जाए, चाहे तो साग सब्जी की बात हो ये समय पर देखा ननुआ है, लौकी है, तरोई है, भिंडी है, टमाटर है, बैगन है, जौन साग सब्जी है में भी खर पतवार बढ़त है।
3: बिल्कुल।
4: जौन मुख्य फसल है धान उनमें भी बहुत ज़्यादा खर पतवार बढ़त है। जौन दलहन फसल है वहूँ में इस समय खरपतवार ज़्यादा बढ़त हैं, तो उनके रोकथाम कैसे कीन जाए एकर बहुत जरूरी बात है कि उनके रोकथाम के खातिर पहले तो ऐसन खेत का जुताई हो जाए माटी पलटले वाले हल से कि जितना भी खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाए, वो बढ़वार ना हो पावे। और लेकिन अगर फसल के समय ही आ गए बाटें जैसे कि धान में होते हैं तो देखा जाता है कि खुरपी से निकाई गुड़ाई भी होता है। लेकिन बात यह आवत है राधा बहनी की अगर एक बड़े पैमाने पर हमारे सभी धान का फसल लीन जाता है तो कितना खेत में

0: श्रमिक लगा के, खेती किसानी वाले मजदूर लगा के हमारे सभी निराई गुड़ाई करावा जाए,
1: देखा
0: बहुत
1: भैया,
0: महंगा हो
1: ओके,
0: जाता है।
1: सबसे तो एक ही तरीका समझ में आवत है, निराई गुड़ाई तो करबे करें, और जौन है कि उचित फसल चक्र है वह अपनावें। ओकरे साथे साथे जैसे कहें कि अब बड़े क्षेत्र में अगर धान लगाए हैं तो संतुलित रासायनिक दवाओं का छिड़काव करें,
0: हाँ,
1: ओकर प्रयोग करें, जैसे कि जौन खरपतवार है समय पर
0: बिल्कुल
1: नियंत्रण हो
0: सही बात
1: सके।
0: कहूँ राधा बहनी, कि जौन खरपतवार नाशी है ना, ओ हम तो कहें कि कृषि रक्षा इकाई पर जावा जाए,
1: हाँ
0: और एक दो खरपतवार जौन है उनकर नमूना भी ले जाया जाए उखाड़ के,
1: बिल्कुल
0: जो और कृषि रक्षा इकाई से संबंधित जौन जानकार विशेषज्ञ हरे भैया लोग हैं वो बता देते हैं कि खरपतवार नाशी का प्रयोग कैसे की जाए।
1: हाँ, कितना
0: वही
1: मात्रा में की
0: जी
1: जाए।
0: वही का संतुलित मात्रा में प्रयोग कर दिया जाए, जौन से कि खरपतवार नाशी खत्म हो जाए तो पैदावार बढ़िया हुई।
1: बिल्कुल
0: साथे
1: भैया,
0: साथे अगर धान का बात की जाए तो धान में देखे में ये आवत है कि अब ऐसा प्रजाति हैं जौन की अगर हमेशा उनके जड़ में पानी रहत है तो खरपतवार नहीं पैदा होते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो कोशिश ये रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक खेत में पानी रहे, एक समय के बाद जब खरपतवार पूरा नष्ट हो जाइए, पानी उनके ऊपर रहे तो नष्ट हो जाइए और धान का बढ़वार अच्छी हो जाए, तो उससे जौन है खरपतवार
1: ओकरे
0: की
1: बाद चाहे
0: समस्या
1: तो
0: के
1: पानी कम रखें और माटी
0: हाँ
1: में जो नमी है उसका बरकरार
0: बरकरार
1: रखें।
0: रखें।
1: देखा सही कहन भैया कि अगर खरपतवार पर नियंत्रण करें ना, तो अपन जो मिट्टी के पोषक तत्व है वो बनिया रही, पानी धूप सब समुचित मात्रा में अपन फसल के मिली, जैसे कि अपन फसल के उत्पादन अच्छी हो पाए।
0: हाँ, और राधा बहनी ये है बात तो जाना कि साग सब्जी में भी है, बरसात का मौसम में इतना ज़्यादा खरपतवार हो जाते हैं क्योंकि मौसम जो है नम रहता है, बरखा का दिन अधिक रहता है
1: बिल्कुल
0: और
1: भैया,
0: धूप कम लगाते हैं, तो बढ़वार बढ़िया खरपतवार का होता है।
1: देखा जैसे अपन सभी में है ना कि कोनो अच्छा बीज होए के चाहिए, ओमा खाद अच्छा होए के चाहिए, तो ओकरे साथे साथे यहू जरूरी है कि ओकर देखभाल भी अच्छी होए के चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमारे सभी अपने जौन है साग सब्जी जौन लगाए हैं ओकर प्रतिदिन देखभाल की जाए, खरपतवार पर रोकथाम लगावा जाए तो पैदावार बढ़िया होए, और जौन बताए हुए ना कि कृषि रक्षा इकाई पर जाए के
1: बिल्कुल भैया,
0: संस्तुत दवा का छिड़काव या भुड़काव जैसन कि विशेषज्ञ हरे भैया बता रहा बाटे, उनके कहे के मुताबिक ही अगर खेती किसानी में काम कर दिया जाए तो ये बरसात के मौसम में भी हमरे सभी अपने फसलन के खरपतवार से बचावा जात है और बच सकत है। तो ये हिसाब से किए से हमरे सभी के साग सब्जी भी बढ़िया मिल जात है, और दूसर बात जो धान मुख्य फसल है ओमें भी हमरे सभी बचावा जा सकत है।
1: बिल्कुल
0: तीसर
1: भैया,
0: बात राधा बहनी ये आवत है कि जैसे बरसात के समय में नया बाग हमारे सभी बनावा जाते हैं या जो नया बाग हैं उनमें भी खरपतवार हो जाते हैं, तो कोशिश ये करे कि चाहिए अगर पौधा से पौधा के बीच की दूरी इतनी है कि छोटा ट्रैक्टर अगर जा सकत है तो जितना अधिक से अधिक हो सके उकर जुताई कर दिया जाए, तो खरपतवार वही माटी में मिल के सड़ जाता है और वो खाद बन जाता है। अगर कहीं घना घनी बाग है तो कोशिश ये करे करे के चाहिए वह जो बताए हुए कि कृषि रक्षा इकाई पर जाके जो विशेषज्ञ अरे भैया बता रहा बाटे उनकर संस्तुत दवा बाग में भी छिड़काव या भुड़काव कर दिया जाए तो हमारे सब एक खरपतवार नाशी से बचाव किया जा सकता है।
1: देखा भैया, जे हुआ जाए सके वो तो जानकारी मिल ही जात है। अपन सभी के कार्यक्रमों से समय समय पर विशेष विशेषज्ञ भैया से जानकारी मिलत रहता है कि कैसे अपने फसल के अच्छी कीन जाए,
0: हाँ
1: कैसे खरपतवार का नियंत्रण कीन जाए।
0: बिल्कुल,
1: तो अपन जोन पंच भैया हरे हैं, कार्यक्रम से भी पता लगा सकते हैं।
0: हाँ कार्यक्रम भी हम कहें कि किसान भैया अगर सुनत रहे हैं तो हमारे सभी समय समय पर कृषि रक्षा से संबंधित विशेषज्ञ हरे भैया के बुलावा जाता है, उनसे खरपतवार नाशी के बारे में जानकारी लीन जात है, कैसे हमारे सभी अपने खेती किसानी में बाग बागवानी में या साग सब्जी वाले क्षेत्र में खेत में खरपतवार नाशी से कैसे बचा जाए खरपतवार से, एक बारे में जानकारी लीन जात है। देखा आज तो हम कहें कि है जोन की कार्यक्रम है, लोक भाषा कविता पाठ है, धान की फसल में प्रमुख कौन कौन रोग हैं और कैसे उपचार होते हैं एक बारे में ही बात बत कही है, लेकिन

0: देखा बहनी इ निर्गुण रहा राम प्रसाद और संग हाथिन के।
1: बिल्कुल भैया।
0: अब एक बात हम बताएं कि बात बत कही तो कीन जाए, लेकिन सनेश बाटे अब पहले सुन लीजिए।
1: बिल्कुल सुनवा दे भैया।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: भैया देखा संदेशों सुन लेवा गवा।
4: हाँ।
3: और आज सोमवार के दिन बाटे तो अपने पंचायती मा लोक भाषा कविता पाठ के दिन बा, तो आज अनीस देहाती भैया के लोक भाषा बाटे कविता पाठ आवाज सुना जाए।
4: सुनवा।
5: रथ हाकू संजय से धृत राष्ट्र बोली परे, रथ हाकू संजय से धृत राष्ट्र बोली परे, देख देख माई देखा काम ई बड़ा बवा, कुरुवंश पांडुवंश दोनों रहे एक मुला, जाने के ही स्वार्थ मा विरोध ही खराब हवा, अपक्ष और विपक्ष के तमाम वीर के समूह, धर्म ध्वजा वाले कुरुक्षेत्र मा अड़ा भवा, देख के बतावा युद्ध भावना से जे डटे हैं कौरव और पांडु युद्ध कितना बड़ा भवा, संजय बताए सुना राजन विपक्ष एक, कौरव के दल तो दिखात बिखराओ माँ, संजय बताए सुना राजन विपक्ष एक, कौरव के दल तो दिखात बिखराओ माँ, अब पांडव के युद्ध के तरीका देख पाए जब राजन दुर्योधन अबाक हुए तान माँ, पांडव के युद्ध के तरीका देख पाए जब राजन दुर्योधन अबाक भय ताओ माँ, अब डर से ढिलान देह मुखड़ा के रंग फक जैसे कोनो केवट के जल देख नाओ माँ, और सेनापति द्रोण के नगीच जाए गुरुनाथ आपन मुसीबत बताए दीन भाव माँ, का बताएं भैया कि बोले दुर्योधन की देखा तनी सेनापति, बोले दुर्योधन की देखा तनी सेनापति द्रुपद के पूत दृष्ट दुम्न वाले नाम के, बोले दुर्योधन की देखा तनी सेनापति द्रुपद के पूत दृष्ट दुम्न वाले नाम के, हमरे बड़े जे रहा कीमत से हीन सदा, पांडवों के दल माँ बना है बड़े काम के, अब बुद्ध के महान बना बैरियन के शान बना, खाए हियाँ और काम करिश्ना छदाम के, और जिंदगी माँ बैर के बुआई करे रात दिन दुश्मन के साथे फल खाए जला आम के। अगला क्षण भैया, 11 अक्षौहिणी के सेना है आपन, 11 अक्षौहिणी के सेना है आपन और 7 अक्षौहिणी के सेना पांडुपूत के, तबो मूल लागत विपक्ष है विशाल आज, जान परे इनमा है ताकत अकूत के, युद्ध के लड़ैया सूर वीर में जमाव हुआ, युद्ध के लड़ैया सूर वीर के जमाव हुआ, बात ना दिखाए परे छूत या अछूत के, अद्रुपत विराट भीम अर्जुन समान वीर,

रणमा सजी है फौज दूत अवधूत के। पंच भाई आगे सुने कि सेनापति, सेनापति देखा तो विपक्ष के बहादुर का, सेनापति देखा तो विपक्ष के बहादुर का, धृष्ट केतु चेकितान कुंती भोज वीर का, और काशीराज बलवान अभिभू तमाम नाम, साथ साथ जोधा महान सैब वीर का, और कुंत के सपूत पुरुजित का निहारा तनी, देखिन भयाई के बहावा जिन नीर का, और इनके अलावा एक शक्ति है महान शक्ति, जौन की बढ़ाए रहा द्रौपदी के चीर का। द्रौपदी के पांचों पति रणमा बिराजा आए, बालवीर अभिमन्यु ठोंक रहा ताल है। द्रौपदी के पांचों पीर रणमा बिराजा आए, बालवीर अभिमन्यु ठोंक रहा ताल बा, अयोध्या मनु जेह कह बहादुरी बखानी जाए, साथे उत्तमौजा बलवान महीपाल बा, इनसे निपट लीन जाए है आसान, और हमारी बहादुरी माँ देख लिया उछाल बा, अगुरुदेव पार मिले कैसे भला कृष्ण जी से, देवकी के लाल तो पछार देख काल का, अपांड पक्ष वाले महावीरन का सोच सोच जियरा दुर्योधन के सुख गवा तन माँ, पांड पक्ष वाले महावीरन का सोच सोच जियरा दुर्योधन के सुख गवा तन माँ, अजाने कौन जीते कौन हार के सवाद चीखे, इतना सवाल बार बार उठे मन माँ, लड़काई और ई जवानी कटी ठीक ठाक, लड़काई और ई जवानी कटी ठीक ठाक, जाने कौन विपदा है आई यह पन माँ, सेनापति बाभन महान सुना मोर बात, कौरवों के वीर का गिनाई एक क्षण माँ। पंच भाई आगे सुने कि सेनापति द्रोण तू वीरन माँ महावीर, सेनापति द्रोण तू तो वीरन माँ महावीर, चारू के तोहरे बखान आए जग माँ, अशांतनु के पूत गुरु भीषम के जोड़ नाही, कर्ण जाके तीर छेद करते सरग माँ, असाथ साथ कृपाचार्य धनुहा के जानकार, अश्वत्थामा वीरता दिखावा करे मग माँ, दूसर विकर्ण सोमदत्त पुत्र भूरि श्रवा, जस के पताका है समान रग रग माँ, अयह के अलावा और वीर वाली खेप हिया, धीर महावीर से सजा है दल अपना, यह के अलावा और वीर वाली खेप हियाँ, धीर महावीर से सजा है दल अपना, और हथियार धारी और जनैया हियाँ, शास्त्र वाले गदा तेग धारी से सजा है दल अपना, अछिन माँ मिरोर दे दुश्मन के हाथ गोड़, ऐसे बाणधारी से सजा है दल अपना, अजीव से प्यार जे का कौरव के सेना भाई, ऐसे हितकारी से सजा है दल अपना, कि एक और भीषम पितामह दिखाई पड़े, एक और भीषम पितामह दिखाए परें, एक और मंदमति भूमि रन भूमि माँ, एक ओरी सूरमा के ठाठर दिखाए परे, एक और आलसी असीम रन भूमि माँ, हमका ई जान परे यह मुँह सुखेन बैद, वह ओरी मूरख हकीम रन भूमि माँ, और आपन विशाल सेना हमका अजेय लागे, शत्रु हार कै पिए अफीम रन भूमि माँ। और आखिरी छंद भैया कि सुना गुरु द्रोण यह दल के महान वीर, सारे जानकारन से विनती हमार बा, सुरा गुरु द्रोण यह दल के महान वीर, सारे जानकारन से विनती हमार बा, ओहदा और हल्का में सारे लोग डट जाए, बदला की ताई यह देश के पुकार बा, और देखा जाए दुश्मन बचाव करे कौनी भांति, आज देखा बैरिन के ध्यान गवा मार बा, अभीषम का आज से अभेद देखा जाए भाई, कौरवों के हाथ माँ सोहात ई दुधार बा। पंच भैया ई तो हम श्रीमद् भगवत गीता के कुछ छंद आपके सामने रखे, अब इसके बाद एक गाय माई की कविता ही आपके सामने प्रस्तुत है कि गऊ माई तो हैं हम बखानी कती, गऊ माई तो हैं हम बखानी कती, तोहरी करनी न उद्धार हो बई कबऊ, अल्लाह के कुटिया से महलन तलक तू आहा, अपनी जाति न तोहका भिजर बई कबऊ, लाल पैदा भवा जब केहू के घरे, लाल पैदा भवा जब केहू के घरे, तोहरे दुधवा तो ओहका पियावा गवा, और पहिल माई भयू तू गदेलन के सब, ई अनीसव तुही से जियावा गवा, अब बाप तू न बोला भले मूल तू जानत हु सब, तू न बोला भले मूल तू जानत हु सब, सुख और तकलीफ दुनिया के जानत हु तब, अब बिन कसुरवा के जो तुहका पीटिस केहू,

0: फूल आपन समझ के तू सह ले तू सब। अब बाप माई है जस वैसे ओकर हुरिल, बाप माई है जस वैसे ओकर हुरिल, ई नियम आज तक तोहरे अंदर आहे, आ तोहरी नाई जो ये मारा पीटा गयन रीत आपन समझ ये बेचारे सहें। लय के दुखिया से राजा और महाराजा तक, लय के दुखिया से राजा और महाराजा तक तोहरे पूतन से आपन किसानी करें, आ तोहरे ये पूते सारी उमिरिया तलक खेत सींचे का कंधवन से पानी भरें। आ तू न जानू कि हिंदू तुरुक की एहन, तू न जानू कि हिंदू तुरुक की एहन, तू न जानू कि छोटका जबर की एहन, सबके सथवा दिहू तू सदा प्रेम से, तोहरे सथवा सबई जाति साथे रहन। आ जब तलक तू जीव केहू का दुख ना दिहू, जब तलक तू जीव केहू का दुख ना दिहू, मर गयो पर सबई घर निशानी रहे, अचाम से तोहरे चपकी और नाधा बनन, जौने माँ आज दुनिया ई रांझी है। और आखिरी द्विबंध भैया कि हम सबे एक प्रभु के संतान ही, हम सबे एक प्रभु जाना हम तोहरे व्यवहार से, हम सबे एक प्रभु के संतान ही, ई नियम जाना हम तोहरे व्यवहार से, अहोत भिनसार सब हाथ जोड़े तू है, जीतू मन सबके तू अपनी पुचकार से। और आखिर में चार डाणी भैया कि माई कोखिया से अपने भले ना जन्यू, माई कोखिया से अपने भले ना जन्यू, मोक्ष वाली घड़ी जिन हेरायु तनी, एक बिनती यह है पूछ पकड़ाए के, पार भव सिंधु हमका करायु तनी।
1: श्वेता बहनी देखा ये जौन है लोक भाषा कविता पाठ रहा अनीश देहाती जी के, और बड़ा बढ़िया देखा गंगा माई पर भी और गांव की बात पर भैया कहे हैं। एक बात है राधा बहनी कि आज जौन समय चल रहा बाटे है ना, धीरे धीरे मन पलायन कर रहा बाटे गांव से, ये अच्छी बात ना है।
2: बिल्कुल भैया,
1: हम कहें गांव के संस्कृति के अपने खेती किसानी के बचावे का समय है, और ऐसा ना है देखा धुआंधार अंधाधुंध जौन मशीनीकरण हो रहा बाटे, औद्योगिकरण हो रहा बाटे, एकरे बीच में भी खेती किसानी करे वाले लोग बढ़िया लोग हैं, बढ़िया ढंग से नई नई तकनीक से उन्नतशील ढंग का खेती करत हैं, और जाना कि प्रगतिशील विधि के खातिर जौन नया नया यंत्र आगे बाटे खेती किसानी में, उसे खेती किसानी सहज और सरल हो गई बाटे, मानव श्रम कम लगत है, पैदावार फसल में बढ़िया होते हैं, तो पढ़े लिखे लोग भी अगर आवत हैं खेती किसानी में तो बहुत अच्छी बात बाटे।
2: पढ़े लिखे लोग आवत हैं ना भैया, तो जौन अपन परंपरागत खेती है ओमा जौन अपने तकनीकी के मिलावत हैं, अपन ज्ञान के मिलावत है ना, तो उत्पादन और बढ़त है, विकास होते है, न केवल उनकर विकास होते है साथ साथ पूरे गाँव के विकास होते
1: है। सही बात बाटे। अब देखा जैसे अब धान का बात आई बाटे, इस समय चूंकि खरीफ का मौसम चल रहा बाटे और सबसे प्रमुख फसल बाटे, धान में भी पहले परंपरागत ढंग से धान का रोपाई होत रही, लेकिन अब नई तकनीक के हिसाब से ऐसन मशीन आ गई बाटे कि खुद धान रूप देते, तो मानव श्रम का तो कमी
2: के लगे, हाँ, लगे पड़त रहा हम के सबे के।
1: हाँ, हाँ, एक बात है कि धान में जल प्रबंधन बहुत जरूरी है, धान के पानी का व्यवस्था बहुत जरूरी है, तो खेती किसानी करे वाले हर प्रगतिशील किसान भाई, कोनो भी किसान भाई, ये धान में जल प्रबंधन का जरूर व्यवस्था करते हैं, ओकरे खातिर जरूरी है कि क्यारी छोटी रहे, जल का संचरण खूब होत रहे, तो उससे होता है कि खरपतवार भी कम होते हैं, रोग भी कम लगते हैं, और फसल का बढ़वार भी बढ़िया होते हैं।
2: भैया देखा धान के फसल के हम सब बात करे थे, कैसे रोपाई नई तकनीकी से हो जाते है
1: जी,
2: और कहूँ ना कहूँ आज के जो किसान भैया लोग हैं इतने जागरूक हैं कि जब धान लगावे के समय आवत है तो अपन खेतन के ऐसे तैयार करते हैं कि फसल के जौन पैदावार होए वो इतनी बढ़िया है और इतने बढ़िया तरीके के धान लावत हैं, लगावत हैं, जैसे कि उसका बाज़ार में अच्छा दाम मिल सके। लेकिन भैया ये सब के बीच में एक काम बहुत ज़रूरी है, वो है कि जब हम सब अपन फसल लगावे थे ना, अब चाहे धान के फसल के बात होए, तो ओमा जौन रोग लग जाते हैं उसका समय पर उपचार की ज़रूरत पड़त है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: तो हमार कहे के मतलब इतना है।

किसान भैयारिन से, अपने पंच भैयारिन से कि धान के फसल के समय तो है, रोपाई के समय है, लेकिन ओकरे साथे साथे अगर उनके जानकारी मिली जाए कि कैसे उमा लगे वाले कौन प्रमुख रोग होते हैं, का उनके उपचार हो सकत है, तो भैया आज अपने पंचायती में यही पे एक बातचीत बाटे कि धान की फसल के प्रमुख रोग एवं उपचार। डॉक्टर अरुण कुमार चतुर्वेदी भैया से चंद्रजीत यादव भैया के बातचीत बाटे, फरियाए फरियाए के बताए हैं, और हमका लागत है कि अगर हमार सभी पंच भैया एक सुनी है गुनी

0: डॉक्टर अरुण कुमार चतुर्वेदी भैया से चंद्रजीत यादव भैया के बातचीत बाटे फरियाए फरियाए के बताए हैं। और हमका लागत है कि अगर हमार सबे पंच भैया एक सुनी हैं गुनी हैं तो उनके आए वाली जो धान की फसल है पैदावार है वो बहुत अच्छी हुई।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कहें कि आवा किसान भाइयों के साथ सुन लीजिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सुनवाए दे भैया।
2: डॉक्टर अरुण कुमार चतुर्वेदी भैया, आप खेती बाड़ी के जानकार हैं। देखें किसान भाई, धान के रोपाई तो भैया कई लेत बाटे, लेकिन धान के फसल में कुछ जगह रोग और भैया रोग लग जाता है, ओकर उपचार के बात कही जाते है, तो भाई एका जाना बहुत जरूरी बाटे। तो हम आज जानना चाहब आपसे कि जवन ई धान के फसल में प्रमुख रोग लागत है, एकर कैसे उपचार किसान भाई करें जौन से धान से अच्छा लाभ मिल सके, ये संबंध में कुछ जानकारी दें भैया।
3: धान खरीफ की मुख्य फसल है, इसकी उपज में वृद्धि तो हो रही है लेकिन अन्य प्रदेशों की अपेक्षा अभी कम है। इसकी उपज बढ़ने में काफ़ी संभावनाएं हैं, इसके लिए सघन विधियों को अच्छी तरह से प्रयोग में लाना होगा। धान की फसल को कई प्रकार की बीमारियों व कीटों से बहुत नुकसान होता है, जिससे धान की फसल की पैदावार बहुत कम हो जाती है।
2: जी जी।
3: धान की फसल को नुकसान पहुंचाने वाली कुछ बीमारियां इस प्रकार हैं।
2: जी बताओ।
3: इसमें सफ़ेद रोग, जीवाणु झुलसा, सीट झुलसा, भूरा धब्बा का रोग है, जीवाणुधारी रोग है, झोंका और खैरा रोग के नाम से जानते हैं।
2: ये तरह तरह के भैया बीमारी हैं जवन की धान के फसल में लग जाता है और उत्पादन के घटावत है।
3: जी
2: भैया, जैसे जवन सिंचाई के जहाँ कम साधन बाटे, ऐसी स्थिति में कौन तरह के बीमारी धान के फसल में हो सकत है, एक विषय में थोड़ा सा जानकारी दें।
3: जहाँ असिंचित परिस्थिति है वहाँ पे भूरा धब्बा, सीट झुलसा, झोंका और खैरा रोग का ज़्यादा संभावना है।
2: अच्छा अच्छा।
3: और जहाँ गहरा पानी वाली परिस्थिति, जहाँ मतलब बरसात खूब होती है, पानी है, वहाँ पे जीवाणु झुलसा या जीवाणुधारी और सीट झुलसा का प्रकोप होने की संभावना है।
2: अच्छा, जैसे भैया आप एक बात बताएं कि सफ़ेद रोग जो उन लागत है, ये ऐसी क्या करें उपचार के लिए भैया करें?
3: सफ़ेद रोग अक्सर नर्सरी में ही लगता है।
2: अच्छा।
3: इसमें सभी पत्तियां सफ़ेद रंग की निकलने लगती हैं और ख़ास तौर से जो नई पत्ती होती है।
2: जी जी।
3: जो कागज़ के समान फट जाती है। और इस रोग का मुख्य कारण है कि मिट्टी में लोहे के तत्व की कमी है, जिसको आयरन बोलते हैं।
2: अगर लौह तत्व की कमी न रहा है, हम समझते हैं खेत में, तो इस तरह के भैया जो सफ़ेदा रोग की बात करते बाटे, ये हो भी नहीं करे भैया।
3: हो भी नहीं करे।
2: लेकिन अगर हो जाए भैया, तो का उपचार के लिए करे?
3: एक उपचार के लिए सबसे पहले तो मिट्टी में ही अगर हम डाल देते हैं
2: जी
3: फेरस सल्फेट, तब तो ठीक है। नहीं तो अगर खड़ी फसल में होती है
2: जी,
3: तो 5 किलोग्राम फेरस सल्फेट को 20 किलोग्राम यूरिया
2: जी
3: या 2.5 किलोग्राम बुझा हुआ चूना के साथ 800 लीटर पानी में मिला करके प्रति हेक्टेयर 2-3 छिड़काव 5-5 दिन के अंदर पे कर दें, तो इससे काफ़ी सहायता मिलेगी।
2: अच्छा, मतलब तो जो सफ़ेदा रोग लग जाते है उसी भैया कुछ राहत मिल जाए।
3: जी।
2: अब भैया जो आप भूरा धब्बा पत्तियों पे जो हो जाता है, ये जो बीमारी बतावत रहे हैं, एकरे लिए का एकर लक्षण बा और काहे खो जात, का उपचार करें किसान भाई?
3: एकर लक्षण तो पत्ती पे गहरा कत्थई रंग का गोल गोल या अंडाकार धब्बा पड़ जाता है
2: जी,
3: जिसके एक बीच का हिस्सा कुछ पीलापन लिए होता है और कत्थई रंग का बाद में हो जाता है
2: जी।
3: इन धब्बों के चारों तरफ पीला सा एक घेरा बन जाता है जो कि इस रोग का विशेष लक्षण है
2: जी जी जी।
3: इसके उपचार के लिए सबसे पहले तो हम बोने के पहले ही 3 ग्राम थीरम या 4 ग्राम टाइकोडर्मा बेडी प्रति किलो बीज की दर से अगर बीजोपचार कर लेते हैं तो ये रोग की संभावना बहुत कम होगी।
2: अच्छा।
3: लेकिन अगर खड़ी फसल पे ये रोग लग गया है, तब जिंक मैंगनीज कार्बामेट या जीरम
2: जी
3: 80% का 2 किलो या GM 27 मतलब 27 EC 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं, या थायोफेनेट मिथाइल 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर दें, तो पत्तियों को भूरा धब्बा वाला रोग धान में ख़त्म हो जाएगा।
2: तो भैया आप बताएं कि एक तो भाई एक ऐसी बचे के उपाय हुए कि बीज को उपचारित कर बोएं।
3: हाँ।
2: लेकिन अगर किसान भाई कोनो कारण से भैया बीज को उपचार ना कर पाए, तो ऐसा स्थिति में जवन खड़ी फसल बाटे उनमें आप भैया 2-3 तरह की दवाई बताए हैं, कोनो भी दवाई के लेके ओकर अगर उचित मात्रा में घोल बना के छिड़काव कर दी, तो हम समझते हैं भाई यह रोग के उपचार हो जाए।
3: हाँ, उपचार हो जाए।
2: अच्छा, जवन भैया जीवाणु झुलसा लागत है, ये भैया बीमारी जवन धान के खेत में होते है, एकरे लिए का कुछ करे चाहे किसान भाई के?
3: जीवाणु झुलसा रोग में पत्ती का नोक या किनारे से एकदम पत्ती सूखने लगती है, सूखे हुए किनारे भी अनियमित और टेढ़े मेढ़े हो

0: जाते हैं, इसमें भी अगर बीज का पहले हम बोने के पहले ही उपचारित कर लें
1: जी
0: ये थीरम से,
1: हाँ,
0: नहीं तो अगर खड़ी फसल है तो रोग के लक्षण दिखते ही खेत में पानी निकाल दें,
1: खेत से पानी निकाल
0: दें और 15 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन,
1: हाँ,
0: और 500 ग्राम कापर ऑक्सीक्लोराइड
1: जी,
0: ये दोनों मिला करके 800 लीटर पानी में घोल बना लें और प्रति हेक्टेयर 2-3 बार छिड़काव कर दें।
1: अच्छा,
0: तो इससे सुधार होने के चांस है।
1: अच्छा, मतलब एक रोग के भैया निदान हो सका थे।
0: हाँ, और अगर रोग का लक्षण दिखाई पड़ने लगा तो कभी कभी नाइट्रोजन का टैप ड्रेसिंग जैसे कल्ला निकलते समय या बाली निकलते समय करते हैं
1: जी,
0: तो अगर टैप ड्रेसिंग बाकी रह गई है तो उसको रोक दें कुछ दिन, जब तक कि रोग न ठीक हो जाए तब तक वो टैप ड्रेसिंग यूरिया की न करें।
1: अच्छा, ये ध्यान दें चाहिए,
0: ये ध्यान दें।
1: तो काहे मतलब भैया कुल की अगर किसान भाई थोड़ा सा अगर भैया चेत लें और भाई नर्सरी डाला समय ही बीज के उपचारित कई कोई नर्सरी डालें तो इस तरह के जौन रघुआ बतावत बाटें भैया ये लागे की संभावना बहुत कम हो जाती
0: जी।
1: हाँ, तो काफ़ी कुछ नहीं, उनका पैसा भी बचे भैया और जौन मेहनत करते हैं वह से राहत मिले
0: जी।
1: अब भैया हम जाने चाहब एक जौन शीत झुलसा होत है जौन की धान के फसल में लागत है, ऐसी भी धान के फसल के नुकसान होते है, इसमें का कुछ करे की जरूरत होते है?
0: पत्ती पे इसमें भी अनियमित आकार के धब्बे बनने लगते हैं जिनका किनारा गहरा भूरा तो हो जाता है तथा बीच का भाग हल्के रंग का होता है
1: जी,
0: और पत्ती पर घेरेदार धब्बा बन जाते हैं, घेरा लेते हुए धब्बा बन जाता है
1: जी, जी।
0: इसके उपचार के लिए खड़ी फसल पे 1.5 किलोग्राम थायोफिनेट मिथाइल
1: जी
0: या 1 किलोग्राम कार्बेंडाजीम का प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोल बना करके आवश्यकता अनुसार इसे कम ज्यादा हो
1: जी, जी,
0: 10
1: जी।
0: दिन के अंतराल पर छिड़काव कर दें।
1: अच्छा,
0: ज्यादा है तो फिर 10 दिन के बाद फिर से छिड़काव कर दें।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: और इसे जीवाणुधारी रोग है तो इस रोग में पत्तियों पर इसमें भी कत्थई रंग की लंबी लंबी धारी नस के बीचों बीच जो पत्ती में एक नस दिखाई पड़ती है मोटी वाली उसके बीच में पड़ जाती है
1: जी।
0: इसका उपचार के लिए भी वही 1.5 किलोग्राम थायोफिनाइड मिथाइल या 1 किलोग्राम कार्बेंडाजीम का प्रति हेक्टेयर की दर से अगर छिड़काव कर दें तो इसमें भी लाभ मिलता है।
1: तो भैया जीवाणुधारी रोग जो लागत है जौन आज बता बाटेंगे नसियन को बगलियाँ बगलियाँ जौन है भैया रेखा पड़ जाते जौन है निशान हो जाते तो एक भी उपचार हो जाए
0: जी।
1: अब भैया एक बहुत ही भैया प्रमुख बीमारी झोंका रोग लागत है जौन की धान के फसल में, ऐसे भी काफ़ी नुकसान होते धान के, तो इस रोग के लक्षण और उपचार के विषय में कुछ बताएं भैया।
0: एकर लक्षण तो है कि पत्ती पे आँख की तरह के आँख की आकृति का ही धब्बा बनता है
1: जी जी,
0: जो बीच में राखी के समान रंग तथा किनारे पर गहरा कत्थई रंग का होता है
1: जी।
0: इसके अतिरिक्त ये रोग में बाली, डंठल
1: जी,
0: पुष्प शाखा जो होती है जहाँ फूल निकलने लगते हैं,
1: हाँ हाँ हाँ,
0: गांठ पर भी काले भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं
1: जी। अगर भैया इस तरह के लक्षण दिखाई दे किसान भाई इनके फसल में तो उन्हें समझ ले चाहे कि धान के फसल में झोंका रोग लग गया
0: जी, जी।
1: और भैया अगर भैया आश्वस्त हो चाहत बाटे तो भाई नज़दीक के जौन भाई स्वास्थ्य जौन सुरक्षा इकाई बाटे जौन फसल सुरक्षा इकाई बाटी वो भी भैया जानकार लोगों से समझ सकते हैं। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो उपचार के लिए क्या करे चाहे?
0: इसमें भी कार्बेंडाजीम 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से
1: जी
0: 800 लीटर पानी में घोल करके 2-3 छिड़काव प्रति हेक्टेयर खड़ी फसल पर 10-12 दिन के अंतराल पर करते हैं।
1: अच्छा,
0: खैरा रोग आजकल यह हर जगह दिखाई पड़ता है
1: जी, जी,
0: और
1: जी।
0: यह रोग भी मिट्टी में मुख्य रूप से जस्ता या जिंक की कमी के कारण होता है
1: जी जी।
0: इसमें पत्ती पहले पीली पड़ती है, बाद में कत्थई रंग के इसमें धब्बे बनने लगते हैं और बाद में पूरी पत्ती सूख जाती है। यह धान में अक्सर दिखाई पड़ता है, रोग खैरा रोग के नाम से जानते हैं
1: जी जी।
0: इसमें भी खड़ी फसल पर 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट को 20 किलोग्राम यूरिया के साथ या 2.5 किलोग्राम बुझा हुआ चूना के साथ 800 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर छिड़काव कर लेते हैं तो खैरा रोग से बचाव किया जा सकता है।
1: अच्छा।
0: लेकिन अगर हम रोपाई के समय या नर्सरी में ही 20-25 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से जिंक सल्फेट का प्रयोग कर लेते हैं तो खैरा रोग से बहुत हद तक बचा जा सकता है।
1: काहे मतलब भैया अगर नर्सरी में ही अगर जिंक के प्रयोग किसान भाई कर लेते बाटे तो ऐसा स्थिति में भैया जो खैरा रोग उनके फसल में लग जाते है भाई उसी भी उनका राहत मिल जाए या भैया अगर लगबो करे तो ओकर असर कम होए तो उनका ओकर निदान करे में आसानी होए
0: जी।
1: भैया एक चीज़ हम जाने चाहते बाटी जैसे आप तरह तरह के जौन ये बीमारी बताएं धान के फसल में तो भैया ये बीमारी कितना दिन के फसल हुई जाए तो संभावना

0: रहा था दिखाई दे उनके खेत में?
1: बुआई के 15-20 दिन के बाद ही शुरू हो जाती है और
0: यानी
1: 30-35 दिन पे अक्सर ये दिखाई पड़ती है।
0: तो भैया बुआई के मतलब नर्सरी में जो उन बिया डाला था वो नर्सरी में ही दिखाई दे लगी बीमारी कुछ?
1: हाँ, सफ़ेदा रोग
0: जी
1: ये वाला दिखाई पड़ने लगेगा आपको नर्सरी में।
0: अच्छा अच्छा। और जैसे दवाई के भैया छिड़के में कौन तरह के सावधानी किसान बहन के बरते की जरूरत होती, या कभी कभी देखे में आओ तो भैया कि मात्रा पर ध्यान ना देते हैं, जितनी मात्रा बताई जाती सोचा तो उसी थोड़ी बीसे रखा, तो ऐसी स्थिति में का उनके फसल को नुकसान हो सकता है या भैया का नुकसान हो उनका एक विषय में कुछ बताओ?
1: नुकसान हो ही सकता है फसल के लिए भी, ज़्यादा ये केमिकल अगर कहीं पड़ा तो वो जल भी सकती है फसल।
0: जी जी जी।
1: दूसरी चीज़, इसके दवा छिड़कने के समय पे अपने मुंह को काफ़ी कपड़े से ढक ले और जिससे कि वो अपने ऊपर ना आने पाए दवा। दूसरी चीज़, जब बरसात हो रही हो तब इसका प्रयोग न करें।
0: अच्छा।
1: इसका प्रयोग दोपहर के बाद हवा न चल रही हो तब करें, और हवा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हवा के विपरीत दिशा में खड़े होकर के ही इसका वो करें,
0: जोने से भैया उनके स्वास्थ्य पे कौन
1: उनके
0: नुकसान
1: स्वास्थ्य पे असर न पड़े।
0: अच्छा अच्छा। एक चीज़ भैया, जो बातचीत के दौरान समझ में आवत भैया कि ढेर कुछ ऐसी बीमारी हैं कि जौन की भाई या तो बीज जनित बाटी या तो भाई माटी में ऐसा कुछ तत्व रहे जौन की कमी से हो जाते, तो ऐसा स्थिति में किसान भाई के का माटी के जांच कराए से कुछ राहत मिल सकती है?
1: हाँ, मिट्टी की जांच करा लें अगर, तो संतुलित मात्रा में अगर अपने खेत में उर्वरकों का किसान भाई प्रयोग करते हैं
0: जी,
1: तो बहुत कुछ बीमारी से तो अपने आप वो बच सकते हैं
0: जी।
1: मिट्टी की जांच, जैसे खाद के लिए संतुलित मात्रा में, अभी आपको बताया कि नाइट्रोजन का ज़्यादा प्रयोग न करें
0: जी जी,
1: इससे खरपतवार और कीटनाशक दवाएं और बढ़ेंगी। इसमें मिट्टी में संतुलित मात्रा के लिए जो है 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास एक सामान्य सिफारिश है हर जगह के खेत के लिए
0: जी जी।
1: लेकिन अगर हम मिट्टी की जांच करा लेते हैं तो इसमें पता चल जाएगा हमें कि हो सकता है कि ये मात्रा कुछ थोड़ा किसी के लिए कम पड़ती हो या कुछ ज़्यादा पड़ेगी
0: जी,
1: तो उसके लिए एकदम सही सही मात्रा पता चलेगी और हमें उर्वरकों पे ज़्यादा पैसा खर्च करने से भी हम बच सकते हैं।
0: एक चीज़ भी और बताऊँ, जैसे आजकल सूक्ष्म पोषक तत्व की चर्चा की जाती है या भैया जैव उर्वरक की चर्चा की जाती है, तो ये कहाँ तक कितना हद तक जो है अगर एक प्रयोग करें किसान भाई तो उनके फसल के लिए अच्छा रहे?
1: सूक्ष्म मात्रिक तत्व, तो जैसे इसी में आपने देखा है कि दो रोग, सफ़ेद रोग आयरन सल्फेट डालते हैं उसमें आयरन की कमी से होता है
0: जी,
1: दूसरा खैरा रोग बहुत है लग रहा है इस समय, ये जिंक की कमी से होता है। ये दोनों सूक्ष्म मात्रिक तत्व के ही हैं और अगर जांच करा लेते हैं, इनकी कमी मिट्टी में पाई जाती है तो हम पहले ही उसका प्रयोग कर लेते हैं तो हमें फसल में उत्पादन भी बढ़ता है और बीमारी रोग बीमारी से भी बचाव होता है। बायो फर्टिलाइजर, जहाँ तक जैव उर्वरक का प्रश्न है, जैव उर्वरक डालने पर खेत में जो भी मिट्टी में रासायनिक खादों के प्रकोप डालते हैं उसमें 25% की कमी कर सकते हैं
0: जी जी,
1: एक चौथाई। और जैव उर्वरक सस्ते हैं, सुलभ हैं और पर्यावरण रहित भी होते हैं,
0: मतलब पर्यावरण के भी नुकसान न पहुँचेंगे,
1: नहीं पहुँचाएंगे,
0: फसल के लिए भी कोनो नुकसान न हो, माटी के लिए कोनो नुकसान न हो, और भैया आसानी से उपलब्ध भी बाँटें, सस्ता भी बाँटें, तो जरूरत इस बात की कि भाई जौन भी जैव उर्वरक उपलब्ध बाँटें और जौने फसल के लिए उनका कहा जाता भैया वही फसल में उकर इस्तेमाल जरूर करें,
1: उसका करें। और जो भी मिट्टी में अघुलनशील रूप में ये तत्व पाए जाते हैं
0: जी,
1: जो उनके पोषक तत्वों के बारे में है, जैसे सबसे महंगा आपका फास्फोरस है
0: जी जी,
1: ये DAP महंगी खाद है,
0: हाँ हाँ हाँ।
1: तो फास्फोरस के लिए जो मिट्टी में उपलब्ध है लेकिन पौधे को नहीं उपलब्ध हो पा रहा है
0: जी जी,
1: मिट्टी में उसकी मात्रा होते हुए भी
0: अघुलनशील
1: हाँ हाँ। है, तो उसको घुलनशील बनाने के लिए फास्फोबैक्टीरिया प्रयोग करते हैं।
0: अच्छा। तो भैया हर तरह की जानकारी लेके किसान भाई के भाई देखा आधुनिक खेती वैज्ञानिक खेती पे ध्यान दें तभी भैया अच्छा फायदा होए, भैया आप आएँ उतनी बढ़िया जानकारी दें, आपके सब जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ, देखा राधा बहनी जन बातचीत रहे ना कि धान की फसल में कौन कौन प्रमुख रोग हैं, उनका उपचार कैसे होता है, एक पर विशेषज्ञ डॉक्टर सूर्य कुमार अरुण कुमार चतुर्वेदी जी से बहुत बढ़िया अपने चन्नर भैया जो है चंजीत जी बात कही।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
2: देखा किसान भाई एक बात तो निश्चित है कि भाई कुछ जो मोटा मोटी हमारे सभी जाना जाता है कि जैसे धान का पाती अगर पियरा जाता है तो मैं को जो यूरिया का ट्रॉप ड्रेसिंग होती है, मतलब अगर ट्रॉप ड्रेसिंग करे के है तो मौसम बहुत आवश्यक है कि मौसम खूब खुला रहे, खूब धूप रहे, जोने से कि ट्रॉप

0: ब्रशिंग में पौधे के पत्ती पर वो दवा का असर हो जाए,
1: बिल्कुल
0: चाहे
1: भैया,
0: जो उर्वरक है ओकर असर हो जाए, तो ज़्यादा कारगर होता है। इस सब बातन का ध्यान रखा चाहिए। हवा जौन तरफ बह रही बाटे ओकर विपरीत दिशा में खड़ा होके ही अगर भुरकाव करे के बात है तो अगर भुरकाव का किया जा सकत है। हाँ, ये सब को जरूर ध्यान रखा जाए कि मुँह पर मास्क रहे, पूरे बदन का कपड़ा रहे, त्वचा से कम ओकर संपर्क रहे, जौन कीटनाशी दवा है या रोग रोधी दवाई है, तो मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता
1: काहे
0: है।
1: के मतलब है कि फसल के सुरक्षा के साथे साथे आपन सबे के सुरक्षा भी करत रहें, जैसे कि आपके फसल अच्छी हो सके और आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहे।
0: हाँ
1: रामतर भैया, देखा पंचायती आपन सजत है रोज संझा के, और अपन किसान भैया लोगन के समय समय पर जानकारी भी दीन जात है,
0: जी
1: लेकिन हम अपन पंच भैया से कहे चाहब कि अगर उनके कोनो तरह के सुझाव दे के है, कोनो तरह के जानकारी प्राप्त करे के है अपने पंचायत घर कार्यक्रम के माध्यम से, तो हमार सबे के व्हाट्सएप नंबर है, ऊपर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 800-4926-2550।
0: भैया हो, एक बार फिर से कापी कलम उठा ला और लिख ला। राधा बहनी, एक बार फिर से दोहरा दा नंबर।
1: 800-4926-2550।
0: ये नंबर पर आप अपन प्रतिक्रिया दें, हमारे सभी जरूर आपके प्रतिक्रिया के मुताबिक अपने कार्यक्रम में बदलाव या संशोधन करे की कोशिश की जाए। आपसे अरदास है कि जरूर अपन प्रतिक्रिया दें। राधा बहनी, देखा समय समय से सब ठीक लागत है। अब
1: बिल्कुल
0: चला
1: भैया,
0: चली का बेला है, झोला उठावा, काल फिर पंच भाइयों से भेंट
1: मुलाकात
0: होए
1: हुई,
0: तो पंचों
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।
2: अभी ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुन रही थी पंचायत घर। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी प्रयागराज का प्राइमरी चैनल, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ के साथ साथ एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर भी आप हमारे प्रसारण सुन सकती हैं। इसके अलावा प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी आप हमारी कार्यक्रम कभी भी कहीं भी मोबाइल के जरिए सुन सकती हैं।

हम अपने सुनने वालों को याद दिला दी, आज रात 9:30 पर गजनों का प्रोग्राम प्रसारित होगा कहकशा। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में गुरु प्रसाद शर्मा का वायलिन वादन हम आपको सुनवाएंगे। सात 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में डॉक्टर वर्षा अग्रवाल की वार्ता होगी जयशंकर प्रसाद के नाटकों में देश प्रेम। 7:45 पर सुगम संगीत के प्रोग्राम में ममता त्रिपाठी के स्वर में गीत और भजन सुनवाया जाएगा।

आज रात 8:20 पर हम आपको एक बातचीत सुनवाएंगे। विषय होगा 12वीं के बाद मेडिकल तथा इंजीनियरिंग के अलावा करियर की संभावनाएं। डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह से दीपक राय की ये बातचीत आप सुन सकेंगी आज रात 8:20 पर।

कल के शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में सुबह 7:30 पर, दिन में 12:15 पर और रात्रि 10:30 पर विदुषी मुनीर खातून बेगम का उपशास्त्रीय गायन आप सुन सकेंगे। दिन में 12:30 आपकी फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित होगा हेलो फरमाइश। 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में हमारी ग्रामीण बहनें सुनेंगी आकांक्षा भारती और साथियों के गए लोकगीत के अलावा रंजना पटेल से की गई बातचीत का विषय होगा महिलाओं के सुनहरे सपने।

कल शाम 5 बजे धरती के गीत कार्यक्रम में रामबाबू यादव और साथी आपको लोकगीत सुनाएंगे। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई विष्णु राजा के गाय लोकगीत के अलावा विजय शंकर त्रिपाठी से रामायण पाठ सुन सकेंगे। शाम 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में डॉक्टर अनिल प्रताप गिरी की वार्ता होगी नव्य न्याय भाषाया वैशिष्टम। रात 8 बजे सेहत की बात कार्यक्रम में बदलते मौसम में त्वचा रोग का होम्योपैथिक द्वारा उपचार विषय पर डॉक्टर राकेश राज से सुंदरम तिवारी की ये बातचीत सुनवाई जाएगी।

0: आपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी प्रयागराज का प्राइमरी चैनल मीडियम 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 7:20 होने को ही वक्त हो चला है आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का। अब से थोड़ी ही देर में
1: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का शुभारंभ, कल से आम नागरिक कर सकेंगे यात्रा, 40 से 45 मिनट में तय होगा दोनों शहरों का सफर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 22वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित, कहा स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी, सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईटी से मांगी जांच की स्टेटस रिपोर्ट। और एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची लखनऊ, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किया विमर्श, कल राजनीतिक दलों के साथ बैठक। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज उन्नाव में 4,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लखनऊ हरदोई राष्ट्रीय राजमार्ग के 32 किलोमीटर के एक खंड का लोकार्पण और इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर बनने जा रहे 4 लेन वाले फ्लाईओवर का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश बेहतरीन सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन के लिए अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे प्रदेश की कनेक्टिविटी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा।
3: राज्य आज सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे का नेतृत्व कर रहा है और आज हम लोग प्रदेश की 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी की ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टिविटी, ये हमारे SCR को, स्टेट कैपिटल रीजन के जो हमारे जनपद है लखनऊ के इर्द गिर्द, इन सबको जोड़ करके लखनऊ को एक भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले उस प्रयास का हिस्सा है।
2: कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राजधानी लखनऊ ही नहीं पूरे प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुदृढ़ कानून व्यवस्था के चलते प्रदेश में कई बड़े निवेश आ रहे हैं जो आने वाले दिनों में धरातल पर देखने को मिलेंगे।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का तेजी के साथ विकास हो रहा है, कुछ ही महीनों के अंदर, कुछ साल के अंदर नहीं, कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही हैं और वहाँ जिनको स्थापित करना है उनमें से कुछ लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री जी से आकर बातचीत की है और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
2: इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर

0: केन्द्र सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 सालों में प्रदेश में 5 लाख करोड़ के विकास कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा।
1: 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता मिली और आज बदलते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप सब लोग देख रहे हैं और हमारा देश का उत्तर प्रदेश एक प्रकार से हमारे देश का हृदय है। अगर उत्तर प्रदेश समृद्ध होगा, संपन्न होगा, प्रगतिशील होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, रोजगार निर्माण होगा, एक्सपोर्ट यहाँ से ज्यादा होगा तो हिंदुस्तान की भी तरक्की होने वाली है।
0: आधुनिक सुविधाओं से लैस लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे कल से यात्रियों के लिए खुल जाएगा। पेश एक रिपोर्ट।
2: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। दोनों शहरों के बीच कार से यात्रा करने पर टोल 275 रुपए होगा और इस पर दोपहिया वाहनों की अनुमति नहीं होगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़क अवसंरचना से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 22वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और मेडिकल रिसर्च में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल इलाज उपलब्ध कराना ही नहीं बल्कि सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाना भी है।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का लक्ष्य केवल इलाज उपलब्ध कराना ही नहीं है बल्कि एसेसिबल, एफोर्डेबल, एफोर्डेबल और क्वालिटी ड्रिवन हेल्थ केयर सिस्टम बनाना भी रहा है। आज भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में अनियमितता मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT से जांच संबंधी स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में CBI जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने SIT की संरचना का विवरण भी मांगा है। मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। उधर श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावे में अनियमितता मामले में सुनवाई के दौरान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज प्रतिभा नारायण ने 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी है। अब आरोपियों की पेशी 27 जुलाई को होगी। वहीं SIT ने मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए धर्मसेना के अध्यक्ष संतोष दुबे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की। संतोष दुबे ने बताया कि SIT ने उनसे कुछ दस्तावेज मांगे हैं जो उन्होंने SIT को सौंप दिए हैं।
4: SIT के सम्मानित सदस्यों ने, अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से हमारा पक्ष जाना, अपेक्षा की कि और भी कुछ आपके पास हो तो हम तक उपलब्ध करें। जो बातें उन्होंने हमसे पूछा मैंने उनको पूरा जो हमने देखा, सुना, जाना, समझा वो सब बताया।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति JPC आज 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंची। ये समिति विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों और विशेषज्ञों के साथ इस विषय पर मंथन करने के लिए राज्य के दौरे पर है। लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने बताया कि आज समिति ने प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बैंकर्स और वकीलों से विचार विमर्श किया। कल सुबह ये समिति राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर एक राष्ट्र एक चुनाव पर उनके विचार जानेगी।
5: कल सुबह जो राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, राजनीतिक दल हैं, इन सब के क्या विचार हैं वन नेशन वन इलेक्शन को।

0: लेकर, क्योंकि अगर एक समय पर दोनों चुनाव विधानसभा लोकसभा के होते हैं तो उससे बहुत सारी चीजों पर फर्क पड़ता है। विधानसभा के चुनाव, कभी लोकसभा के चुनाव, कभी एक राज्य के चुनाव, कभी दूसरे राज्य के चुनाव, तो इन सबसे मुक्ति पाई जा सकती है। लेकिन अभी देखना यह है कि अलग अलग दलों के इस पे क्या विचार है।
1: सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, शाही ईदगाह मस्जिद और संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद से जुड़े विवादों को विशेष लोक अदालत के माध्यम से सुलझाने के निर्देश दिए हैं। ये विशेष अदालत 21 से 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित होगी। कार्यवाही से पहले इन मामलों से जुड़े पक्षों को लोक अदालत से पहले होने वाली सुलह वार्ता में शामिल होने के लिए नोटिस भेजे गए हैं। ज्ञानवापी मामले में मंगलवार को वाराणसी के जिला और सत्र न्यायालय परिसर स्थित मध्यस्थता केंद्र में प्रस्तावित है। इसमें ज्ञानवापी से जुड़े विभिन्न वादों के पक्षकारों और उनके अधिवक्ताओं को आमंत्रित किया गया है। ज्ञानवापी मामले से जुड़े अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि अगर मध्यस्थता से कोई समाधान नहीं निकलता तो मामले की सुनवाई न्यायालय में जारी रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का शुभारंभ, कल से आम नागरिक कर सकेंगे यात्रा, 40 से 50 मिनट में तय होगा दोनों शहरों का सफर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 22वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित, कहा स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। और श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी, सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईटी से मांगी जांच की स्टेटस रिपोर्ट। और एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची लखनऊ, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किया विमर्श, कल राजनीतिक दलों के साथ बैठक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर वर्षा अग्रवाल की वार्ता, जिसका विषय है जयशंकर प्रसाद के नाटकों में देश प्रेम। आइए सुनिए।
3: संस्कृति के प्रति राग उत्पन्न कराने वाले, अपने साहित्य के माध्यम से एकता का पाठ पढ़ाने वाले जयशंकर प्रसाद ने अपनी साहित्यिक कृतियों के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। उनका साहित्य समरसता, सद्भाव, विश्व कल्याण एवं मानवतावाद की कुंजी है। साहित्य युग स्वप्न को अपने अंदर समेटते हुए भविष्य की एक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। साहित्य जनमानस की इच्छित लालसाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनता है। प्रत्येक साहित्य अपने युग एवं देश काल को प्रभावित करने के साथ साथ ही उससे प्रभावित भी होता है। इस संदर्भ में यदि हम प्रसाद के नाटकों को देखें तो हम पाते हैं कि प्रसाद ने भी अपने साहित्य में युग स्वप्न को समेटा है। यह युग स्वप्न स्वदेश की स्वतंत्रता का है, जन जागरण का है, सामाजिक समरसता का है, पुरुष स्त्री की समानता का है। प्रसाद जिस युग में लिख रहे थे वह राष्ट्रीय आंदोलनों का युग था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरा देश स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत था। युवक युवतियां देश की गलियों में जन जागरण के गीत गाया करते थे, प्रभात फेरियां निकाली जाती थी। इस तरह से प्रसाद अपनी युगीन परिस्थितियों से प्रभावित होते हुए अपने साहित्य के द्वारा उन परिस्थितियों को प्रभावित भी करते हैं। जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों के विषय, उद्देश्य और मूल संवेदना का गहरा अध्ययन करने के पश्चात यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि उसमें भारतीय संस्कृति एवं विश्वादर्शों की गंभीर संवेदना है। प्रसाद के नाटक राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित हैं, किंतु उसमें राष्ट्रीयता की मूल संवेदना भी है। प्रसाद के साहित्य सृजन का युग राष्ट्र की अवधारणा के वर्तमान स्वरूप का भी है। यह वही समय है जब भारतवर्ष को संपूर्ण रूप में देखा गया। इसी कारण प्रसाद के

साहित्य में राष्ट्रीयता की लहर प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है। राष्ट्रीय भावबोध की अभिव्यक्ति प्रसाद के नाट्य विधान का मूलाधार कही जा सकती है। इतिहास के माध्यम से राष्ट्रीय भावना को उद्दीप करने का सजग प्रयास उनके अधिकतर नाटकों में दृष्टव्य है। प्रसाद के नाटक भारत की राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना से अनुप्राणित हैं। किसी भी राष्ट्र के लिए जीवन के लिए यह चेतना अनिवार्य है। जब तक राष्ट्र रहेगा, राष्ट्रीय भावना की आवश्यकता बनी रहेगी और अपनी सांस्कृतिक महत्ता का बोध अपेक्षित रहेगा। प्रसाद ने जिस रूप में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को अपने नाटकों में प्रस्तुत किया है, वह केवल सामयिक नहीं है, उनके समय के पहले के भी हैं, उनके समय के बाद के भी। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु इत्यादि में राष्ट्रीयता का उद्घोष सुनाई देता है। इस दृष्टि से स्कंदगुप्त उनकी विशिष्ट कृति है। यह उनके अन्य नाटकों से इस अर्थों में भिन्न है कि इसमें प्रसाद ने केवल राष्ट्रीयता की व्याख्या नहीं की, अपितु उसकी गहरी संवेदना का भी स्पर्श किया है। प्रसाद का नाटक स्कंदगुप्त राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव को अपने अंदर समेटते हुए युग सापेक्ष में एक समाधान प्रस्तुत करता है। स्कंदगुप्त नाटक में राष्ट्रीय संदर्भों की व्यापक व्याख्या हुई है। स्कंदगुप्त की रचना 1928 ईस्वी में हुई थी, जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का समय था। यह वह समय था जब असहयोग आंदोलन की असफलता को लगभग एक दशक हो गया था। इस तरह से यह अपने इच्छित प्राप्य को न पाने से उपजे अफजात का भी काल था, जो हमें स्कंदगुप्त के चरित्र में दिखाई देता है। स्कंद की यह उदासीनता युग सत्य है, जिसके माध्यम से प्रसाद यह पाठ पढ़ाना चाहते हैं कि स्वतंत्रता और स्वत्व की रक्षा कैसे की जाए और किस लिए की जाए, अधिकार के प्रति अनासक्ति और कर्म के प्रति जागरूकता का सामंजस्य करना प्रसाद जी भूले नहीं हैं। स्कंदगुप्त में प्रसाद की राष्ट्रदृष्टि खुलकर प्रकट होती है। इस नाटक में प्रसाद भारत को एक स्वरूप प्रदान करते दिखाई देते हैं। यह टुकड़े में विभक्त भारत नहीं है, अपितु इसका विस्तार कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का है। स्कंदगुप्त में भी देश को पराधीनता से मुक्ति दिलाने का उद्घोष सुनाई पड़ता है। इस नाटक के प्रायः सभी पात्र स्कंदगुप्त, देवसेना, बंधु वर्मा, पर्णदत्त, मातगुप्त, चक्रपालित, रामा, शर्वनाग, कमला, जयमाला इत्यादि प्रसाद की राष्ट्रनीति का परिचय देते हैं। इन पात्रों के माध्यम से ही स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे युवकों को प्रेरणा देते हुए प्रसाद जयमाला के माध्यम से कहलवाते हैं कि स्त्रियों की, ब्राह्मणों की, पीड़ितों और अनाथों की रक्षा में प्राण विसर्जन करना क्षत्रिय धर्म है। स्कंदगुप्त के चरित्र के माध्यम से ऐसे चरित्र के सृजन का प्रयास किया गया है जो निर्लिप्त हो, वह केवल राजसुख के लिए ही न संघर्ष कर रहा हो, उसका ध्येय केवल एक छत्र साम्राज्य का हो। वह सदा एक सैनिक की भांति अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो। राष्ट्र दृष्टि देश की संस्कृति, राजनीति और भूगोल एवं इतिहास से मिलकर बनती है। प्रसाद ने अपने साहित्य में देश की राजनीतिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति और भौगोलिक स्थिति एवं ऐतिहासिक स्थिति का चित्रण किया है। चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया कहती है, अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, भारत मानवता की जन्मभूमि है। इसी तरह स्कंदगुप्त नाटक में भी प्रसाद अपने स्वदेश प्रेम को चित्रित करते हैं। प्रसाद भारतीय संस्कृति

की व्याख्या अधिकतर ऐसे पात्रों से कराते हैं जो भारत के भौगोलिक सीमा के बाहर का रहने वाला हो। धातुसेन, जो सिंघल का राजकुमार है, कहता है भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पाश में आबद्ध है। अनादिकाल से ज्ञान की, मानवता की ज्योति वह विकीर्ण कर रहा है। वसुंधरा का हृदय भारत किस मूर्ख को प्यारा नहीं है। तुम देखते नहीं कि विश्व का सबसे ऊंचा श्रृंग है। तुम इसके सिरहाने तथा गंभीर तथा विशाल समुद्र इसके चरणों के नीचे है। एक से एक सुंदर दृश्य प्रकृति ने अपने इस घर में चित्रित कर रखा है। प्रसाद की राष्ट्र दृष्टि इस नाटक के अन्य पात्रों के दृष्टिकोण से भी ज्ञात होती है। पृथ्वी सेन नामक चरित्र इस नाटक में अपने देश प्रेम को प्रकट करता है। प्रसाद के राष्ट्र दृष्टि का परिचायक ही प्रतीत होता है। वह गुप्त साम्राज्य की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। प्रसाद जी का चंद्रगुप्त नाटक 1931 में प्रकाशित हुआ, जो राष्ट्रीय आंदोलन का समय था। प्रसाद का चंद्रगुप्त राष्ट्रीय आंदोलन का साहित्यिक स्वर बन गया। पूरे नाटक में राष्ट्रीय एकता, भाईचारे और वाह आक्रमणकारी शक्ति के प्रतिरोध का स्वर सुनाई देता है। प्रसाद जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को तीव्र करने और स्वतंत्रता प्राप्ति के स्वप्न को साकार करने के लिए नाटक में प्रेरणात्मक स्वर भरने का प्रयास किया है। प्रसाद ने जिस प्रकार से राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को अपने नाटकों में उठाया है, उसमें गीतों का भी महत्व है। राष्ट्रीय चेतना को स्वर प्रदान करने में नाटक में नियोजित गीत काफी महत्वपूर्ण साबित हुए, क्योंकि इन नाट्य गीतों में स्वतंत्रता प्राप्ति की तीव्र कामना विद्यमान है। नाट्य गीतों का स्वर एकता और संघर्ष को पैदा करने में अपूर्व सहायक साबित हुआ। चंद्रगुप्त नाटक में अलका द्वारा गाया गया गीत राष्ट्र प्रेम और स्वतंत्रता के आह्वान का गीत है, जिसमें स्वतंत्रता की पुकार दिखलाई देती है, साथ ही गौरव एवं वीरता की भावना को जागृत करने का भी प्रयास किया गया है। हिमादि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। नाटक में कार्नेलिया द्वारा भारतीय संस्कृति का यशोगान भी देखने को मिलता है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सांस्कृतिक समन्वय की चेष्टा और वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा का वर्णन चंद्रगुप्त नाटक में विद्यमान है। विदेशी पात्र कार्नेलिया द्वारा भारतीय संस्कृति का गुणगान करना इसी का परिचायक है। कार्नेलिया चंद्रगुप्त से कहती है, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यहाँ के श्यामल कुंज, घने जंगल, सरताओं की माला पहने हुए शैल श्रेणी, हरी भरी वर्षा, गर्मी की चांदनी, शीतकाल की धूप और भोले कृषक तथा सरल कृषक बालिकाएं बालकाल की सुनी हुई कहानियों की जीवित प्रतिमाएं हैं। यह सपनों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालना। प्रसाद का समय राष्ट्रीय आंदोलन और सामाजिक सुधार का समय था। उस समय स्त्री जीवन के सुधार को लेकर भी सामाजिक स्तर पर प्रयास किया जा रहा था। प्रसाद के संपूर्ण साहित्य में स्त्री जीवन केंद्र में दिखलाई देता है। चंद्रगुप्त नाटक भी इससे अछूता नहीं रहा। झांसी की रानी के समान भारतीय नारियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई थी। अलका इस संदर्भ में प्रतिनिधि चरित्र कही जा सकती है। कानन पथ में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस के पूछने पर अलका का प्रकृति एवं राष्ट्र प्रेम प्रकट होता है। वह कहती है, मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, मेरी नदियां हैं और मेरे जंगल हैं। इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं और मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र अंश उसी परमाणुओं के बने हैं। अपने राष्ट्र के प्रति ऐसा प्रेम और समर्पण भाव ही उस समय आवश्यक था। राष्ट्रीय भावना से भरपूर प्रसाद जी के नाटक भारतवर्ष की संपूर्ण परिकल्पना प्रस्तुत करते हुए सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से राष्ट्र के विभिन्न तत्वों की समीक्षा करते हैं। उनकी राष्ट्र दृष्टि में स्पष्टता है।

श्रोताओं, हिंदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रही थी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल की वार्ता। विषय था जयशंकर प्रसाद के नाटकों में देश प्रेम। इसी के साथ आज का हिंदी कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। वक्त हो चला है सुगम संगीत के कार्यक्रम का। आज के इस कार्यक्रम में हमारी कलाकार हैं ममता त्रिपाठी। इनके स्वर में कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं मीराबाई की इस भक्ति रचना के साथ।

श्रोताओं, आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम और हमारी कलाकार हैं ममता त्रिपाठी। आइए सुनते हैं इनके स्वर में ये रचना।

श्रोताओं सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रही थी ममता त्रिपाठी के स्वर में एक दो भक्ति रचनाएं। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज के साथ साथ एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर भी आप हमारे कार्यक्रम सुन रही हैं। आपको याद दिला दी, रात्रि 9:30 पर गजलों का प्रोग्राम प्रसारित होगा कहकशा, और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में गुरु प्रसाद शर्मा का वायलिन वादन सुनवाया जाएगा।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज के साथ साथ एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर भी आप हमारे कार्यक्रम सुन रही हैं। आपको याद दिला दी, रात्रि 9:30 पर गजलों का प्रोग्राम प्रसारित होगा कहकशा, और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में गुरु प्रसाद शर्मा का वायलिन वादन सुनवाया जाएगा।

प्रस्तुत है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। शुरुआत करती हैं लता मंगेशकर की आवाज में गुमनाम फिल्म के इस गाने के साथ। गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और संगीत शंकर जयकिशन का।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की मिलीजुली आवाजों में अभी आप सुन रही थी शोर फिल्म का ये गाना, संतोष आनंद का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ।

श्रोताओं, प्रोग्राम के आखिर में आपको सुनवाने जा रही हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की मिली जुली आवाजों में कभी अलविदा ना कहना फिल्म का ये गाना। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर साहब ने और संगीत शंकर एहसान लॉय का है।

सोनू निगम और अलका याग्निक की मिलीजुली आवाजों में अभी आप सुन रहे थे शंकर एहसान लॉय के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर का लिखा ये गाना। फिल्म का नाम था कभी अलविदा कहना। श्रोताओं, इस गाने के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है विज्ञान जगत कार्यक्रम। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपको एक बातचीत सुनवाने जा रहे हैं जिसका विषय है 12वीं के बाद मेडिकल तथा इंजीनियरिंग के अलावा करियर की संभावनाएं। इस विषय पर डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह से दीपक राय ने बातचीत की है। आइए सुनते हैं ये बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विज्ञान कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे कि हमारे देश में विज्ञान की दिशा में जो स्कूल हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, उसमें एडमिशन कैसे मिलता है, उनकी पढ़ाई किस तरह होती है। कोई भी छात्र जो कि 12वीं पास करता है, हर व्यक्ति, हर छात्र, हर उस पेरेंट्स का सपना होता है कि उसका बेटा, उसका पुत्र, उसका पुत्री या वो छात्र देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़े, उस स्कूल से शिक्षा प्राप्त करे और अपना करियर आगे की तरफ ले जाए। बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए जो एज होती है 12वीं क्लास की, जनरली 15 से 17 साल के बीच की उम्र के होते हैं, जो कि एक टीनेजर उम्र को कह सकते हैं, जहाँ पे कि बहुत सारा डिसीजन लेने में उनको जो है दुविधा का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे पेरेंट्स भी इस तरह अवेयर नहीं है कि उनको अपने बेटे को, पुत्रों को या पुत्रियों को किस दिशा में भेजना चाहिए, किस तरह के कोर्सेज का चयन करना चाहिए। ये आज भी हमारे लिए हर घर में एक चैलेंज है कि क्या तय किया जाए कि हमारा बेटा, हमारा पुत्र या छात्र स्वयं क्या पढ़े और किस दिशा में आगे जाए। आज हम बात करने के लिए हमने आमंत्रित किया है इविंग क्रिश्चियन कॉलेज के भौतिकी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह को। आपने लंबे समय तक विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया है, अभी भी कर रहे हैं, और आपने अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की। आपका देश के बाहर भी एक संस्था में अनुभव रहा है। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह का विज्ञान के क्षेत्र में करियर और विज्ञान के इतर, क्योंकि भारत में एक प्रीमियम सर्विस है सर, विज्ञान और मेडिकल में जाना। प्रत्येक छात्र या फिल्में भी उस पर बन चुकी हैं कि जैसे ही घर में बच्चा पैदा होता है, कह दिया जाता है कि बच्चा या तो मेडिकल करेगा या तो नीट की तैयारी करके वो डॉक्टर बनेगा। तो आज हम बात करेंगे कि क्या इनके इतर भी कोई करियर है जो कि बेहतर ग्राफ दे सकता है किसी भी छात्र को या किसी भी पेरेंट्स को कि हाँ, उनका बेटा सही दिशा में जा रहा है। सर, सबसे पहला सवाल मेरा कि जो हमारी प्रीमियम संस्थाएं हैं, जो प्रीमियम एग्जाम्स है जिसको हम IIT और NEET कहते हैं, इसके बारे में हमें बता दें कि ये किस तरह के एग्जाम्स होते हैं, किन किन विश्वविद्यालयों में से एडमिशन होता है और इनका जो कैरियर ग्राफ है वो क्यों इतना हाई है।
2: धन्यवाद दीपक जी। देखिए, अब तो मुख्यतः दो ही एग्जाम हैं, IIT JEE और NEET। NEET से आप पूरे इंडिया में जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें आप प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं, और IIT JEE के थ्रू उनके दो चरणों का एग्जाम है, उसमें जो दूसरा चरण है जिसको हम एडवांस कहते हैं, उससे जो है आप IITs में जगह पा सकते हैं, और उसके पहले वाले जो चरण से बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजों में आप जगह पा सकते हैं,
1: जिसको हम NIT,
2: हाँ NIT है, बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो भी मिल जाए। अच्छा। मेंस और एडवांस के तर्ज पे होता है। तो अब इसको बहुत सरल कर दिया गया, आपको दो एग्जाम देना है, आप अपनी मेरिट देखिए और मेरिट के हिसाब से आप प्रवेश प्राप्त करिए। अब यहाँ भी एक समस्या ये है, जैसे हम कहते हैं कि जो भी फील्ड है उसमें स्किल्ड लोगों का होना और अच्छी जगह से पढ़ाई करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपको अच्छी जगह पढ़ेंगे तो आपको अच्छे शिक्षक मिलेंगे, आपका एक्सपोजर ज़्यादा होगा। तो जरूरी नहीं है कि ये कहा जाता है कि आप इंजीनियर बन जाओ काम चल जाएगा, ऐसा है नहीं। हमारे पास एक बेरोजगार इंजीनियरों की बहुत बड़ी फौज तैयार है। तो जो भी व्यक्ति है, जो भी छात्र है, उसके अंदर कुछ ना कुछ स्किल है, ये आपका प्रूफ हो चुका है, थ्योरेटिकली प्रूफ है। तो लेकिन जरूरी नहीं कि वो इंजीनियरिंग करके ही जीवन करेगा, मेडिकल करके ही जीवन यापन करेगा। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि उसका किस

0: में उसकी इंटरेस्ट है, उसका स्किल किस में है। तो जैसा मैंने बताया कि एक IIT का एग्जाम दीजिए तो इंजीनियरिंग में उस पर चल जाता है, नीट दे लीजिए तो मेडिकल में एडमिशन होता है, लेकिन अच्छे रैंक आने चाहिए, अच्छी जगह पर आपका प्रवेश होना चाहिए। भरते सब लोग हैं, लेकिन अधिकतर बच्चों को पता होता है कि मैं इसमें जाने लायक हूँ या नहीं हूँ। ऐसे लोगों को जबरदस्ती नहीं आगे बढ़ना चाहिए, बहुत सारे और भी स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, उसमें प्रवेश लेना चाहिए।
1: आपने स्किल ओरिएंटेड कोर्स की बात की, तो अगर जो प्रीमियम एग्जाम्स जो आपने बताया कि नीट और मेडिकल, हर पेरेंट्स को भी यही सपना होता है कि उनका बेटा या तो इंजीनियर बने और या जो है डॉक्टर बने। ये हमारी समाज ने एक तरह से धारणा भी गढ़ दी कि अगर आप इन दोनों एग्जाम्स में फेल होते हैं या इनको नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं तो आप उतने मेधावी छात्र नहीं माने जाएंगे। इस धारणा को बदलने की ज़रूरत है, तमाम तरह के कोर्सेज आ गए हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि पेरेंट्स को भी इस अपनी धारणा को, उनकी अवेयरनेस को कैसे बढ़ाया जाए, उनको कैसे बदला जाए।
0: आप तो इंजीनियरिंग और मेडिकल पे चले गए, उससे और पहले आइए, क्लास 10th के बाद कितने लोग आर्ट्स लेते हैं।
1: जी
0: जनरली आर्ट्स उन्हें लेने के लिए कहा जाता है, वही लोग लेते हैं जो जिनकी मैथमेटिक्स एकदम वीक होती है, जिनको नहीं पढ़ने आता है। कई लोग इंजीनियरिंग पढ़ने के मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद, जिनको मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो BA करने चले जाते हैं, उनको भी एक समाज का एक सेक्शन जो है बहुत कमज़ोर छात्र मानता है। लेकिन सोचिए, जो इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर होगा उसकी क्या क्वालिटी है, कितना शानदार है। जो हिस्ट्री का प्रोफेसर, उसकी क्वालिटी कितनी शानदार है। तो किसी भी जब फील्ड में आप जाएंगे, आप हायर स्टडी लेते हैं तो आप मूल्यवान हो जाते हैं, आपके पास नॉलेज हो जाता है। तो ज़रूरी ये है कि आपका अपना इंटरेस्ट हो, आप उसमें खूब इन्वेस्ट करिए, पढ़ने में खर्च करिए, अच्छी जगह से पढ़िए, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे देखिए, बच्चा BA भी कर रहा है अगर,
1: जी
0: तो जब वो BA करने जा रहा है तो इसलिए BA नहीं करे कि उसको साइंस नहीं आता है, वो इसलिए BA करे ताकि क्योंकि उसके पास मानविकी विषयों की समझ अच्छी है, उसके पास इमोशंस हैं। उसके पास वो हिंदी विषय कब कोई पढ़ना चाहेगा, जब उसके पास इमोशंस होंगे, जब उसके पास साहित्य की समझ होगी। संस्कृत वो तभी पढ़े, इकोनॉमिक्स वो तब पढ़े जब उसको ये समझ हो कि कैसे आपका अर्थव्यवस्था में किन किन कारणों की ज़रूरत होती है, उसके अर्थव्यवस्था के प्रति उसका लगाव हो। पॉलिटिकल साइंस भी सब्जेक्ट वो तब पढ़े। अब अगर उनको केवल विषय के रूप में पढ़ता है कि अच्छा, उसको मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती तो लो हम BA कर लें, फिर आगे तैयारी कर लेंगे, और BA में उसको कोई 3 सब्जेक्ट मिल गया, तो बहुत बेहतरीन करियर नहीं बनता। संभवतः एक नौकरी मिल जाती है, जो कि हमारा सेट पैटर्न पे एग्जाम्स होते हैं, तो नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन करियर रुचकर नहीं होता है।
1: जो आजकल नए कोर्सेज आए हैं देश भर में, अलग अलग विश्वविद्यालयों में, अलग अलग राष्ट्रीय स्तर पर उनकी परीक्षाएं होती, आप उनके बारे में बताएं कि वो कौन कौन से एग्जाम्स हैं, कौन कौन से संस्थाएं हैं जहां पे प्रवेश लिया जा सकते हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल के इतर।
0: दीपक जी, आप कंपेयर करिए प्रयागराज के किसी बच्चों को और दिल्ली के बच्चों से कंपेयर करिए। आप एक सैंपल लेके देखिएगा, दिल्ली के अधिकतर बच्चे एक अपनी कोर्स पूरा करने के बाद नौकरी कर रहे होंगे, यहाँ हमारे बच्चे कोर्स पूरा करते हैं, फिर तैयारी करते हैं। और आप देखेंगे कि जो दिल्ली के बच्चे हैं, वो एक समय के बाद अर्निंग उनकी बेहतरीन हो जाती है, क्योंकि वो स्किल बेस्ड करते हैं, उनको नए नए कोर्सेज पता चले, नए कोर्सेज को उन्होंने पढ़ा, मार्केट भी उनके यहाँ उपलब्ध है, उनको पढ़ते हैं और तुरंत नौकरी में आ जाते हैं।
1: वो सर वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जरा विस्तार से
0: जैसे
1: हमारे।
0: देखिए, मान लीजिए किसी को कंप्यूटिंग जिसकी अच्छी है, एनालिटिक्स जिसका बढ़िया है, वो साइबर सिक्योरिटी में काम कर सकता है, डेटा साइंस में काम कर सकता है। तो हम जो कोर्सेज पढ़ते हैं, मान लीजिए कंप्यूटर साइंस आप पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस का पूरा कोर्स पैकेज एक अलग है, लेकिन अगर उसमें आप डेटा साइंस स्पेशली पढ़ें, आप उसमें साइबर सिक्योरिटी स्पेशली पढ़ें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इस समय आया हुआ, आप उसको स्पेशली उसको पढ़ें, कैसे उसका उपयोग हो रहा है, किस प्रकार उसका टेक्नोलॉजी में उपयोग कर सकते हैं आप एक डिजिटल मार्केटिंग देख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो आपको ये मार्केटिंग आना चाहिए जो हम MBA में पढ़ाया जाता था। साथ ही साथ आप देख, एनिमेशन एंड ग्राफिक्स डिजाइनिंग का कोर्स होता है। अच्छा, इन कोर्सेज को करने के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट भी हैं, छोटे छोटे कोचिंग सेंटर बने हैं, आप वहाँ मत जाइए, डेडिकेटेड सेंटर्स हैं इसके लिए। IITs बहुत सारे कोर्सेज चल करा रही हैं, आप इसमें देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे कोर्सेज IITs करा रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये विजन था कि स्किल इंडिया के प्रति, तो स्किल इंडिया के प्रति जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपने क्लासरूम कोचिंग के अलावा ये कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, आप देखेंगे IIT दिल्ली, IIC बेंगलोर सिलिकॉन के लिए, इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे कोर्सेज जो पढ़ा रहे हैं, तो इन कोर्सेज को आप वहाँ से कर सकते हैं। आप LLB एक ट्रेडिशनल कोर्स है, देखिए उसी कोर्स को BLLB का टर्म आया, BLLB के से जो बच्चे हैं वो अधिकतर कॉरपोरेट में जा रहे हैं, तो इन कोर्सेज को आप अच्छी जगह से करेंगे। फैशन टेक्नोलॉजी कोर्स है जिसका इतना बेहतरीन एग्ज़ाम आपका होता है,
1: नहीं निफ्ट नाम
0: नेफ्ट
1: से
0: होता है,
1: एग्जाम जो
0: तो
1: है।
0: वहाँ से आप जो बड़े बड़े इंडस्ट्री को जो फैशन डिजाइनर मिलते हैं, आपके अंदर कला होनी चाहिए।

0: आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। आप आर्किटेक्चर का कोर्स कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो माइटी जेई का एग्ज़ाम होता है
1: जी
0: उसी में एक पोर्शन आर्किटेक्चर के लिए भी होता है।
1: जी
0: आर्किटेक्चर का भी अलग से एग्ज़ाम होता है। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड डिज़ाइन है, IIT रुड़की इसके लिए बहुत ही फेमस है। इन जगहों से आप इन जगह कोर्स कर सकते हैं। हम लुटियंस दिल्ली की बात करते हैं,
1: जी
0: लुटियंस कौन थे
1: जी
0: जो उन्होंने दिल्ली को जिन्होंने
1: जिन्होंने
0: आर्किटेक्चर
1: डिज़ाइन
0: बनाया
1: किया,
0: है, तो
1: जिन्होंने
0: आर्किटेक्चर बहुत बड़ा चीज़ होता है।
1: जी जैसे अक्सर पेरेंट्स जब भी IIT का या नीट का नाम लेते हैं तो वो टॉप कोर्सेज जो उसमें हैं ज़्यादातर समझ पेरेंट्स की या छात्र की होती है कि अगर हमें कंप्यूटर साइंस नहीं मिला और या उसके एक दो नीचे जो कोर्स है मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिला तो उनको लगता है कि ये कोई मतलब नहीं है करने का, लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है। आपने बताया कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर जो कि एक बेहतरीन जो है कोर्स माना जाता है आर्टिफिशियल
0: हाँ, जरूरी नहीं
1: इंटेलिजेंस।
0: कि वो इंजीनियरिंग फिर पढ़े ही पढ़े, दूसरी जगह चले
1: इसके
0: जाए।
1: अलावा जो है हम अक्सर अखबारों में भी पढ़ते हैं कि होटल मैनेजमेंट में भी जो है नए नए पेशेवर लड़कों की जो है एंट्री हो रही है और वो एक अच्छा सैलरी पैकेज और एक अच्छी लाइफ स्टाइल अवेल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो इस तरह के एग्जाम्स कैसे होते हैं और कौन इनको आयोजित करता है?
0: अब देखिए, होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स है ये बहुत ही बेहतरीन, और इसमें बहुत सारा पैकेज है। आप
1: जी
0: कई सारे मेरे साथी हैं, जूनियर्स हैं,
1: जी
0: अगर आप इलाहाबाद के ही परस्पेक्टिव में देखेंगे तो आपको एक दो होटलों के अलावा बढ़िया होटल नहीं दिखेंगे।
1: नहीं
0: कारण यह है कि वो केवल होटल चला रहे हैं,
1: जी
0: मैनेजमेंट नहीं है उसमें।
1: मैनेजमेंट
0: जब आप भोजन करने जाते हैं, आप रहने जाते हैं, और अगर वो एक थ्रू द प्रोसेस मैनेजमेंट के थ्रू आपको जो सर्विस मिलता है आप उसको एंजॉय करते हैं, तो आप पे ज़्यादा करते हैं। तो ये पूरा इंडस्ट्री होटल मैनेजमेंट की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। एक टूर एंड टूरिज्म की यूनिवर्सिटी इस समय चल रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे जगहों पे वोकेशनल कोर्सेज चला रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले जो आपका ये जेबी पंत इंस्टीट्यूट है,
1: जी
0: उसके
1: झूसी में
0: हाँ झूसी में, उसके डायरेक्टर प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सर बता रहे थे, वो भी एक कोर्स खोलने जा रहे हैं टूरिज्म के लिए।
1: जी
0: तो इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन लोग स्किल्ड होने चाहिए और प्रोफेशनल होने चाहिए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट, प्रोफेशनलिज्म आएगा आपके नॉलेज से, आपके अंडरस्टैंडिंग से।
1: आपने बार बार स्किल का जिक्र किया। प्राइम मिनिस्टर ने भी जो है 2015-16 के दौर में स्किल इंडिया प्रोग्राम भारत में लॉन्च किया कि देश की जनता जो है जिनके पास डिग्री तो है लेकिन स्किल नहीं है तो उस स्किल को बढ़ाने के लिए इस तरह के कोर्सेज लॉन्च किए। कुछ बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूट का सर आप हमें नाम बताएं जहाँ से जो बच्चा अगर 12वीं के बाद उसको इंजीनियरिंग नहीं करना है लेकिन उसको एक स्किल सीखनी है, उसको पूरा कंप्यूटर नहीं जाना लेकिन कंप्यूटर की कोई स्किल सीखनी है या आर्किटेक्चर की कोई स्किल सीखनी है डेटा साइंस की कोई स्किल सीखनी है तो वो क्या करना चाहिए, उसको कहाँ पर संपर्क करना चाहिए, कौन कौन सी साइट्स पर उसे जाके चेक करना चाहिए?
0: देखिए, आजकल तो जितने भी प्रीमियर IITs हैं
1: जी
0: सभी ने एक को कोर्सेज ज्वाइन कर दिया है। ये गवर्नमेंट का चूंकि डायरेक्शन है तो उन्होंने कोर्सेज जो है वोकेशनल कोर्सेज के रूप में, स्किल कोर्सेज के रूप में यूनिवर्सिटीज़ को नई शिक्षा नीति में ऐसा कर दिया। जैसे आप हमारे यहाँ आएंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ ने, उसने भी वोकेशनल कोर्सेज शुरू किए हैं, हम उसमें भी आपको ट्रेनिंग देंगे। आप अगर इस डिज़ाइंड और स्पेसिफिक कोर्सेज की बात करेंगे तो जैसे IIT रुड़की आर्किटेक्चर के लिए कोर्स चला रही है,
1: जी
0: मैंने बताया IIT दिल्ली आपके सिलिकॉन इंडस्ट्री के लिए कोर्स चला रही है, आपके फोटोनिक्स के लिए कोर्स चला रही है। तो अभी आप IIT गुवाहाटी में चले जाए, IIT गुवाहाटी दो स्पेशल कोर्सेज चला रही हैं, वो माइनिंग का एक कोर्स चला रहे हैं आपके धनबाद में। ये वो कोर्सेज है जिनके लिए आपको IIT पास करने की जरूरत नहीं है। आप जो कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं आप उनका शनिवार रविवार में कोर्सेज को
1: वीकेंड
0: पढ़िए,
1: प्रोग्राम में
0: हाँ वीकेंड प्रोग्राम में उसको पढ़िए। और पढ़ने के बाद आप, क्योंकि ये मानते हैं कि आप मार्केट में जा रहे हैं, आप देखेंगे MBA करते हैं लोग, एक एग्जीक्यूटिव MBA होता है,
1: जी
0: वो लोग जो नौकरी कर रहे होते हैं और अपने आप को स्किल्ड होना चाहते हैं,
1: जी
0: वो इसी तरह का ये मेथड है।
1: जी
0: आप जैसे अब देखिए प्रोडक्ट डिज़ाइन, अब मेरे पास कोई प्रोडक्ट है और मुझे मार्केट में बेचना, मार्केट हमारा इतना बड़ा हो गया
1: जी
0: कैसे हम बेचेंगे, उसकी एक डिज़ाइनिंग, उसका मैनेजमेंट होना चाहिए। हम सभी लोग 2014 के चुनाव के बाद से ही प्रशांत किशोर का नाम सुन रहे हैं।
1: जी
0: देखिए, उन्होंने एक नया मार्केट खड़ा कर दिया
1: जी
0: है। अब कोई भी चुनाव होता है तो
1: जी
0: उस चुनाव को, व्यवस्था को संभालने के लिए चुनावी एजेंसी आ जाती है।
1: चुनाव
0: ये
1: एजेंसी
0: इसमें भी लोग होने चाहिए जिनके पास नॉलेज हो, जिनको पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हो, जिनको डेटा की अंडरस्टैंडिंग हो। तो देखिए, इसमें आपको डेटा भी आना चाहिए, डेटा को आप कैसे एनालाइज करेंगे, और आपकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दो चीज़ें मिक्स करके आपका हो गया कोर्स। इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज आजकल बढ़ रहे हैं। आपके स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है भाई, आपको स्पोर्ट्स की भी मालूम है और आपको ये भी पता है कि उसका जो प्रॉब्लम होता है, इंजरी होती है, उसको कैसे सही है, तो आपके अंदर वो मेडिकल नॉलेज भी होना चाहिए।
1: अपने जो है अलग अलग स्किल पे बात की, इसमें मैं एक चीज़ और आपसे लेना चाहूँगा कि जो ज़्यादातर युवा हैं या जो पेरेंट्स हैं उनको ये लगता है कि ये जो कैरियर है बहुत टिकाऊ नहीं है, ऐसा जो है उनको मिथ है कि ये कैरियर बहुत टिकाऊ नहीं है, अगर मेरा बच्चा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट डिजाइनिंग में जाएगा तो शायद उतने स्थायित्व तो उसके कैरियर को नहीं मिलेगा या वो ग्रोथ नहीं मिलेगा जो IIT और नीट से करने के बाद बच्चों को मिल रहा है। तो इस धारणा को छात्रों में और पेरेंट्स में कैसे बदला जा सकता है?
0: देखिए,

0: जब हम आईआईटी और नीट कर रहे हैं तो हम टॉप इंस्टीट्यूट्स की बात करें, वो नो डाउट वहाँ पर ग्रोथ भी है और वहाँ स्थायित्व तो भी है, लेकिन अगर आपका बच्चा इन जगहों पे नहीं जा पा रहा है तो उसको कहीं किसी जगह से इंजीनियरिंग मत कराइए, किसी जगह से मेडिकल मत कराइए। आप जो कह रहे थे ग्रोथ है स्थायित्व, ग्रोथ तो बहुत है, आप अपने आसपास देखिए जो बच्चे इन कोर्सेज जो कर रहे हैं ग्रोथ बहुत है, अस्थायित्व के बाद भी कंपेरिजनली करते हैं। हम क्यों कंपेयर करते हैं? हम कंपेयर उन नौकरियों सरकारी नौकरियों से करते हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत स्थायित्व है।
1: हाँ,
0: कितनी
1: स्टेबल
0: सरकारी नौकरियाँ हैं आप
1: जी,
0: देखिए कि कितना लोगों को दे
1: बेरोजगारियाँ।
0: सकती है। वही एक मुझे लगता है कि एक तरह का हॉलो क्रिएट कर रहा है, हर कोई उधर आ रहा है अपना प्राइम टाइम वहाँ खर्च कर रहा है और फिर उसके पास ज़्यादा समय बचता नहीं है। उससे ज़्यादा बेहतर है कि वो इन्वेस्ट करें। आप साउथ में चले जाइए,
1: जी
0: साउथ में लोगों के नौकरियों के प्रति बहुत क्रेज नहीं है,
1: जी
0: वो स्किल्ड बेस्ड नौकरियां ज्यादा करते हैं।
1: मेरा, आपने साउथ को जब आपने नाम लिया तो ऐसा क्यों है कि उत्तर भारत में जो ज़्यादातर छात्र या पेरेंट्स हैं वो ज़्यादातर पारंपरिक पढ़ाई या पारंपरिक शिक्षा की तरफ ज़्यादा जाते हैं, और साउथ इंडियन दक्षिण भारत के लोग ज़्यादातर स्किल पे जोर देते हैं, ये जो है डिवाइड जो है क्लियर देखने को मिलता
0: हाँ,
1: है।
0: उनके यहाँ
1: क्योंकि
0: इंडस्ट्री,
1: आपने भी साउथ में समय बिताया है तो आप अपने अनुभव से बताएं कि क्यों उस तरह के लोग वहाँ की मानसिकता ऐसी क्यों है और उत्तर भारतीयों में ऐसी मानसिकता
0: मुझे लगता
1: कमी
0: है कि
1: क्यों है?
0: उनके यहाँ इंडस्ट्री आ गई, थोड़ा उनके यहाँ जो बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ और जो प्रोफेशनलिज्म उनके यहाँ बेहतर आ गया। हमारे यहाँ वो चूंकि इंडस्ट्री है नहीं तो हमारे जीविकोपार्जन का एक ही ऑप्शन दिखता है कि हम सरकारी नौकरी प्राप्त करें,
1: जी
0: इस कारण से ही ऐसा है और हम इसी में रच बस गए हैं और ये बहुत गलत ट्रेंड है, इसको सुधारने की ज़रूरत है।
1: हम आखिरी में जाते जाते जो है आपसे वो जानना चाहेंगे कि जो भी छात्र या पेरेंट्स सुन रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर उनका बच्चा नीट इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहा है तो वो किस दिशा में और किस तरह अपने छात्रों को समझाएं और स्वयं को भी समझाएं कि नीट और आईआईटी के अलावा भी कैरियर है जो बच्चे को जीवन में स्थायित्व प्रदान करेंगे, एक अच्छा ग्रोथ प्रदान करेंगे।
0: मुझे लगता है कि उन्हें इस समय बहुत जरूरी है कि काउंसलर से मिले, बहुत सारे न्यूमरस कोर्सेज इस समय हैं और आप ये मत समझिए कि उससे, मैंने कहा कि ग्रोथ नहीं, ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है, मार्केट में को जो पैसा दिलाएगा वो पैसा मिलेगा, आपकी इन नौकरियों से बहुत ज़्यादा पैसा, सरकारी नौकरियों से बहुत ज़्यादा पैसा है। स्थायित्व की जो आप बात करते हैं वो भी, जब आपके पास अर्निंग आती है, मेहनत, आज का जो युवा पीढ़ी हो केवल मेहनत करना जानता है, उसको बहुत ज़्यादा मतलब फ्री टाइम की ज़रूरत है नहीं, वो मेहनत करता है और फिर अपना काम करता है, इंजॉय करता है, तो लाइफ धीरे धीरे उसी तरफ से जा रही है। तो मुझे लगता है कि बच्चे पर छोड़ दीजिए, उसका क्या इंटरेस्ट है, और उसके अलावा ज़रूरी है कि उसको आप नए कोर्सेज के बारे में आप काउंसलर से आइडिया लीजिए और उसको उतरने दीजिए, ज़बरदस्ती उसको किसी कोर्स से मत भेजिए। जीवन 5 या 10 साल का नहीं है, बहुत लंबा जीवन होता है, उसी के साथ उसको जीना है, इस बात का विशेष ध्यान, अपनी इच्छाएं मत थोपिए।
1: आपने जो है वार्ता में आपने सारी बातों को शामिल किया और आपने जो बात कही कि अपनी इच्छाओं को अपने बच्चों पे ना थोपे, जो भी कोर्स उपलब्ध हैं, जो नए नए कोर्सेज आ रहे हैं, दुनिया बदल रही है, तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग है, अलग अलग कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं कि हमें स्किल युवा चाहिए, तो हम स्किल के कोर्सेज भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने लॉन्च किए हैं, तो उनसे भी जुड़ के हम
0: अभी
1: अपना
0: इंटरनेशनल रिलेशन का एक कोर्स डिजाइन लॉन्च
1: जी
0: किया है जेएनयू ने
1: जी
0: आईआईटी
1: इंटरनेशनल
0: दिल्ली के साथ।
1: आईआईटी दिल्ली के साथ, तो अब लगातार हम यही क्या बताना चाह रहे हैं अपने छात्रों को कि जो भी नए नए कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी से, अलग अलग विश्वविद्यालयों से, वहाँ पे छात्र जाकर एडमिशन लेकर अपना करियर बना सकते हैं, वहाँ भी एक अच्छा ग्रोथ और एक अच्छा ग्राफ उनके जीवन में दिख सकता है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।
0: धन्यवाद।
2: विज्ञान जगत कार्यक्रम में अभी आप सुन रही थी बातचीत। बातचीत का विषय था 12वीं के बाद मेडिकल तथा इंजीनियरिंग के अलावा करियर की संभावनाएं। डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह से इस विषय पर दीपक राय बातचीत कर रहे थे। इसी के साथ विज्ञान जगत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युवावाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग। पहली
1: बार हुआ। सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।

एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। अपने सुनने वालों को याद दिला दी, कल सुबह 10:05 पर वॉयस ऑफ प्रयागराज के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे नूपुर जोशी से नेहा गुप्ता और अभय कांतिवारी की विशेष बातचीत। कल आप सुनेंगे इस बातचीत का पहला भाग। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम रोज की तरह 6:45 पर सुनवाया जाएगा। कल के इस कार्यक्रम में डॉक्टर आशुतोष राय की वार्ता होगी। विषय होगा ईयरफोन

ज्यादा उपयोग से होने वाली हानियां। सुगम संगीत के प्रोग्राम में सुबह 9:50 पर अमित कुमार जायसवाल और शाम 7:45 पर अमृता मालवी के स्वर में भजन और गीत प्रसारित किए जाएंगे। विदुषी मुनीर खातून बेगम का उपशास्त्रीय गायन हम आपको सुनवाएंगे। शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में सुबह 7:30 पर, दिन में 12:15 पर और रात्रि 10:30 पर। सुबह 8:45 पर हमारा विशेष कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। श्रोताओं, अभी आप हमारे कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को है, वक्त हो चला है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या का अब से थोड़ी ही देर में।

समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमरीका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशिया अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन की स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर हैं। भारत और जापान ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास

0: नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात 9:30 बजे पहुंचेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4N को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता भड़काने, दंगा, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। ये कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को 4 लेन का बनाने का कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है, और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है, और मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: श्री गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
2: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3-लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा, ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
3: 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। AI आधारित गति नियंत्रण प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। इससे पहले अपने दौरे पर लखनऊ पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक

0: आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में BSNL की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी।
2: Provisionally, we are looking at a 10% increase.
3: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4,000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4,418 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं है।
2: अदर ऑपरेटिंग इनकम इज नॉट इंक्लूडेड।
1: इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
4: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़ डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88 अरब 76 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: नागालैंड के चूमो केदिमा जिले के शुखोबी के पास खोप नाला में एक संदिग्ध IED विस्फोट में आज असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस महानिदेशक रूपेन शर्मा ने बताया कि अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक जहाज नहीं गुजरा है। एक रिपोर्ट।
5: अमेरिका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्यवाही ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमले के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ईरान द्वारा संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने की निंदा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछली रात समझौते का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रात भर चले हमलों में ईरान के उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इससे पहले ईरान ने अमेरिकी हमलों की निंदा करते हुए अमेरिका पर जलडमरू मध्य में सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करके वैश्विक वाणिज्यिक जहाजों के आगमन को बाधित करने का आरोप लगाया था। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाजों और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। मौसम विभाग ने बिहार और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।

अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी कल तेज वर्षा हो सकती है। असम के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक साप्ताहिक कार्यक्रम में जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के संयुक्त सचिव सुमंत नारायण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका एक मुतवाजिन और तिजारती लिहाज से मौसर तिजारती माहिदे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने तिजारती मुजाकिरात में तातुल से मुतालिक मीडिया की खबरों को मुस्तरद कर दिया। रवां माली बरस की पहली सहमाही में भारत की मजमू बरामदात 232 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज कर गईं, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले 11.37% ज्यादा हैं। आम आदमी पार्टी के साबिक लीडर ताहिर हुसैन और दीगर चार अफराद को साल 2020 के दिल्ली फसादात के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अफसर अंकित शर्मा के कत्ल के मामले में मुजरिम करार दिया गया है। अमरीका और ईरान ने एक बार फिर एक दूसरे पर हमले किए हैं। आबनाए हुरमुज पर कंट्रोल के तनाजे के बायस खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई है। खवातीन क्रिकेट में भारत ने तारीख रकम करते हुए लॉर्ड्स के मैदान में खेले गए पहले खवातीन टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया। और जकार्ता में जारी 19 साल और 23 साल तक की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाज फाइनल में पहुंचे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कम से कम चांदी का तमगा यकीनी बना लिया है। अब खबरें तफसील से। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज भारत और अमरीका के दरमियान तिजारती मुजाकिरात में तातुल से मुतालिक मीडिया की खबरों को बेबुनियाद, गुमराहकुन और मुकम्मल तौर पर गलत करार दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि भारत और अमरीका की टीमें एक ऐसे तिजारती माहदे पर पूरी संजीदगी से काम कर रही हैं जो मुतवाजिन हो और तिजारती एतबार से बामानी हो। नीज दोनों ममालिक के कारोबारी तबकों, किसानों, मजदूरों और सारफीन के हकीकी फवायद फराहम करे। उन्होंने बताया कि पिछले महीने नई दिल्ली में अमेरिका के तिजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रीर के साथ उनकी मीटिंग मुस्बत रही थी। दोनों फरीकों ने ऐसे मुतवाजिन और मुफीद माहिदे के लिए अपने अज़्म का इरादा किया और इस मकसद को हासिल करने के लिए दोनों ममालिक की टीमें मुसलसल राबते में हैं। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज स्पेन के अपने सरकारी दौरे का आगाज किया। उन्होंने स्पेन हुकूमत के अव्वल नायब सदर और कॉमर्स, तिजारत और कारोबार के वजीर कार्लोस कैपेबेलेरो से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने भारत और स्पेन के इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए तिजारत, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के शोबों में मुफीद बातचीत की है। उन्होंने बताया कि मुजाकिरात में काबिले तजदीद तवानाई, ग्रीन हाइड्रोजन, जदीद मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे और इख्तियारात के मौजूदात पर भी तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों ममालिक ने भारत और यूरोपीय यूनियन के आजादाना तिजारती माहदे पर भी ख्यालात का तबादला किया और कारोबारी ताल्लुकात को मजीद गहरा करने और स्पेन के साथ भारत के तिजारती तआवुन को मजीद वसअत देने के तरीक़ेकार पर गौर व खौज किया। जनाब गोयल आज से स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड के 5 रोज़ा दौरे पर हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने सरकारी सेक्टर के बैंकों पर जोर दिया है कि वो बैरून मुल्क भारतीयों NRI तक अपनी रसाई को मजीद बढ़ाएं और उनके लिए जिद्दत तराजी पर मबनी नई जमा पूंजी स्कीमें मुतारिफ कराएं। उन्होंने आज नई दिल्ली में बैंकों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान और सरकारी मालियाती इदारों के सरबराहान से गैर मुल्की करंसी NRI बैंक डिपॉजिट्स और गैर मुल्की करंसी कर्जों के तबादले के इकदाम के सिलसिले में बातचीत के दौरान ये बात कही। वजीर खजाना ने इस बात पर भी जोर दिया कि NRI बिरादरी से राबते को मजीद बढ़ाया जाए ताकि गैर मुल्की सरमाया और रुकूम की आमद का सिलसिला जारी रहे। मीटिंग के दौरान बैंकों और सरकारी मालियाती इदारों के सरबराहान ने वजीर खजाना को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तबादले की सहूलत की स्कीमों के तहत होने वाली पेशरफ से भी आगाह किया। उन्होंने मजीद कहा कि बैंकों और सरकारी मालियाती इदारों की सरगर्म शिरकत से यह साबित होता है कि तबादले की सहूलतें मुल्क में गैर मुल्की करंसी की आमद को बढ़ाने में मौसर रोल अदा कर रही हैं।

इस साल अप्रैल से जून की मुदत के दौरान भारत की मजमू बरामदात का तखमीना 232 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा लगाया गया है, जो कि गुज़िश्ता साल की इसी मुदत के मुकाबले 11.37% ज्यादा है। तिजारत और सनत की वजारत के मुताबिक जून 2026 के दौरान मजमू बरामदात का तखमीना 73.45 अरब अमरीकी डॉलर रहा, जो गुज़िश्ता साल के जून के मुकाबले 9.48% की मुस्बत नमो को जाहिर करता है। जून में जिन अहम शोबों की बरामदात में इजाफा हुआ है उनमें कीमती पत्थर और जेवरात, इंजीनियरिंग साजो सामान, नामियाती व गैर नामियाती केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान और चावल शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान की बरामदात गुज़िश्ता साल जून के 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस साल जून में 4.93 अरब अमरीकी डॉलर हो गई। इसी तरह इसमें तकरीबन 19% का इजाफा दर्ज किया गया। वजारत ने मजीद बताया कि जून में अशिया और खिदमात की मजमू बरामदात का तखमीना 88.76 अरब अमरीकी डॉलर रहा, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 26% से ज्यादा का इजाफा है। इस दौरान जून 2026 में भारत की खुर्दा इफरात जर सालाना बुनियाद पर बढ़कर 4.38% हो गई है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हदफ की दरमियानी हद से ज्यादा है। मई में इफरात जर की यह शरह 3.93% थी। इसी तरह जून में महंगाई में मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सारिफीन कीमत इशारिया CPI के तहत ये मुसलसल छठा महीना है जब खुर्दा इफरात जर में इजाफा देखा गया है। आदाद शुमार और प्रोग्रामों पर अमल दरामद की वजारत के मुताबिक देही इलाकों में इफरात जर 4.74% रही, जबकि शहरी इलाकों में ये 3.92% रही। कुल हिंद सारिफीन खुराक की कीमतों के इशारे के मुताबिक खुराक की इफरात जर की शरह 5.32% रही, जो पिछले महीने के 4.78% से ज्यादा है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के साबिक काउंसलर ताहिर हुसैन और दीगर चार अफराद को साल 2020 के शुमाल मशरकी दिल्ली फसादात के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अफसर अंकित शर्मा के कत्ल के मामले में मुजरिम करार दिया है। एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह इस मामले की समाअत कर रहे थे, जिसमें कुल 11 लोगों को नामजद किया गया था। अदालत ने इनमें से 5 अफराद को मुजरिम करार दिया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने, फसाद, हमला, ताकत के मुजरिमाना इस्तेमाल और कत्ल के इल्जामात में कसूरवार गर्दाना। ये मुकदमा दयालपुर पुलिस स्टेशन में अंकित शर्मा के वालिद रविंद्र कुमार की शिकायत पर दर्ज FIR से मुतालिक है। शिकायत में इल्जाम लगाया गया था कि उनके बेटे को उस वक्त आम आदमी पार्टी के काउंसिलर ताहिर हुसैन और दीगर अफराद ने कत्ल किया। इस मामले में नाम सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को मुअत्तल कर दिया था। 24 मार्च 2023 को दिल्ली की एक अदालत ने ताहिर हुसैन और दीगर 10 मुलजिमीन के खिलाफ बाकायदा तौर पर फर्द जुर्म आयद की थी। अमेरिका और ईरान दोनों ने अपने हुरमुज पर कंट्रोल का दावा किया है। मगरबी एशिया में अख्ताम हफ्ता के दौरान हमलों में इजाफे के बाद इलाकाई सलामती और सिफारती कोशिशों के अहिया के लिए की जा रही कोशिशों को नई तशवीश लाक हो गई है। हालिया कशीदगी ईरान के जरिए ओमान के साहिल के करीब आबनाए हुरमुज में एक कंटेनर बरदार जहाज को निशाना बनाए जाने के बाद शुरू हुई है। इसके बाद से आबनाए हुरमुज से, जो कि आलमी तेल और गैस की तरसील की एक अहम आबी गुजरगाह है, कोई भी तिजारती जहाज नहीं गुजरा है। अमेरिका का कहना है कि उसने रात भर ईरान के कई फौजी अहदाफ पर हमले किए हैं, जिसमें फिजाई दिफाई निज़ाम, साहिली रडार मरकज, मिजाइल और ड्रोन तनसीबात और छोटे बहरी जहाज शामिल हैं। वॉशिंगटन का कहना है कि इस कार्रवाई में पहली बार यकतरफा हमलावर समंदरी ड्रोन भी इस्तेमाल किए गए और ये कार्रवाई ईरान की जानिब से तिजारती जहाज रानी पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। दूसरी जानिब इसके जवाब में ईरान ने कहा है कि उसने उर्दुन, बहरैन और कुवैत में मौजूद अमरीकी फौजी ठिकानों को और ओमान में रडार तनसीबात को निशाना बनाया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और जापान ने आज आजाद, खुले और उसूलों पर मबनी भारत बहरुल काहल खित्ते के फरोग के लिए अपने अज्म का इरादा किया है। जापान के शहर टोक्यो में मुनक्किदा 8वीं दिफाई पॉलिसी मुजाकरात के दौरान दोनों मुल्कों ने आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल पर जामे बातचीत की और बाहमी मफाद के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। भारतीय वफ की क्यादत दिफाई सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने की, जबकि जापानी वफ की क्यादत बैनुल अक्वामी उमूर के नायब वजीर दिफा कानो कोजी ने की। मुजाकरात के दौरान दोनों फरीकों ने गुज़िश्ता दिफाई पॉलिसी मुज़ाकरात के बाद से दोतरफा दिफाई तआवुन में हुई अहम पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने

0: आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह से कबल तीनों रहनुमाओं ने जिला उन्नाव में एक्सप्रेसवे का मुआयना भी किया। इसके बाद तीनों रहनुमा एक्सप्रेसवे के जरिए वापस लखनऊ पहुंचे और सैनिक स्कूल में मुनक्कदा तकरीब में शिरकत की, जहां तकरीबन 4,850 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया गया और संग बुनियाद रखा गया, जिनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, लखनऊ हरदोई शाहराह के एक हिस्से को चार लेन का बनाने का प्रोजेक्ट और लखनऊ में एक फ्लाईओवर की तामीर शामिल है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब नितिन गडकरी ने कहा कि अगले दो बरस में उनकी वजारत उत्तर प्रदेश में तकरीबन 5,00,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को मुकम्मल करेगी।
1: अगर उत्तर प्रदेश समृद्ध होगा, संपन्न होगा, प्रगतिशील होगा तो हिंदुस्तान की भी तरक्की होने वाली है, और इसलिए मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ आने वाले दो साल में मैं उत्तर प्रदेश में 5,00,000 करोड़ रुपए के कार्य हम पूरे करेंगे। लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3-लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ।
0: जनाब गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को एक तारीखी कामयाबी करार देते हुए कहा कि इससे उत्तर प्रदेश में सड़क रास्ते के निजाम को मजीद इस्तेहकाम हासिल होगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: 63 किलोमीटर तवील 6 लेन पर मुश्तमिल इस एक्सप्रेसवे से लखनऊ और कानपुर के दरमियान सफर का वक्त कम होकर सिर्फ 35 से 45 मिनट रह जाएगा। इस शाहराह पर कार का टोल टैक्स 275 रुपए होगा, जबकि दोपहिया गाड़ियों को दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। ये मुल्क का पहला एक्सप्रेसवे है जो खुदकार और तेज मशीनों से रहनुमाई हासिल करने वाली तामीराती टेक्नोलॉजी के जरिए तामीर किया जा रहा है। इस तरह की टेक्नोलॉजी अमेरिका और जर्मनी जैसे ममालिक में इस्तेमाल होती है। इस एक्सप्रेसवे पर मस्नूई ज़हानत, AI पर मबनी रफ्तार की निगरानी का निज़ाम, हर 2 किलोमीटर पर हंगामी कॉल बॉक्स और 24 घंटे काम करने वाले 2 मरबूत कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। ये शाहराह 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन की गई है और इस पर रवायती टोल बैरियर मौजूद नहीं है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के चंदे में मुबैना बेजाबतगियों में नामजद तमाम 8 मुलजमीन की अदालती तहवील में मजीद 14 दिन की तौसी कर दी है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज प्रतिभा नारायणन ने हुक्म दिया कि मुलजिमों को दोबारा 27 जुलाई को अदालत के सामने पेश किया जाए। खसूसी तहकीकती टीम SIT ने भी अपनी छानबीन शेयर करते हुए धर्म सेना के सदर संतोष दुबे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीबन 1 घंटे तक पूछताछ की। मुजवजा एक मुल्क एक इंतखाब फ्रेमवर्क के इम्कान पर गौर कर रही मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी JPC ने आज लखनऊ में मुख्तलिफ शोबों के शराकत दारों और माहरीन से तबादला ख्याल किया। ये कमेटी मुल्कगीर मुशावरत के हिस्से के तौर पर उत्तर प्रदेश के 2 रोजा दौरे पर है। भारतीय महकमे मौसमियात ने बिहार और ओडिशा में कल मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मगरबी बंगाल, आसाम, सिक्किम और मेघालय में भी कल शदीद बारिश हो सकती है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून का गुजर श्री गंगानगर, हिसार, मुरादाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, बालूरघाट और फिर मणिपुर के मशरिक, जुनूब मशरिक की जानिब जारी रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कारेकल में कल मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि साहिली आंध्र प्रदेश में गर्म मौसमी हालात बरकरार रहेंगे। दिल्ली में महकमे मौसमियात ने कल मतला जुजवी अब्र आलूद रहने और तेज हवाओं के चलने की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कौमी राजधानी में कल ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36 से 38 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। नई दिल्ली से अक्षत की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: खवातीन क्रिकेट में आज लॉर्ड्स के मैदान में पहली मर्तबा खेले जाने वाले खवातीन क्रिकेट टेस्ट मैच में हरमनप्रीत कौर की क्यादत में भारतीय टीम ने मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तारीखी कामयाबी हासिल की। भारत ने इंग्लैंड को 270 रन से शिकस्त दी। जीत के लिए 457 रन के निशाने का पीछा करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन लंच से पहले अपनी दूसरी इनिंग्स में 186 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की जानिब से स्नेह राणा ने 4 विकेट जबकि सयाली सतघरे, क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट हासिल किए। भारत ने कल चाय के वक्फे पर अपनी दूसरी इनिंग्स 7 विकेट पर 341 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी थी और इंग्लैंड को जीत के लिए 457 रन का निशाना दिया था। जकार्ता में 19 साल और 23 साल तक की बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 23 साल तक की उम्र के जुमरे में भारत के 8 मर्द और खवातीन मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए हैं। इस तरह मुक्केबाज 7 मुक्केबाज सेमीफाइनल में पहुंचे हैं और कांस्य

0: तमगा हासिल किया है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका एक मुतवाजिन और तिजारती लिहाज से मौसर तिजारती माहदे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने तिजारती मुजाकरात में तातुल से मुतालिक मीडिया की खबरों को मुस्तरद कर दिया। रवां माली बरस की पहली सहमाही में भारत की मौजूदा बरामदात 232 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज कर गई, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 11.37% ज्यादा हैं। आम आदमी पार्टी के साबिक लीडर ताहिर हुसैन और दीगर चार अफराद को साल 2020 के दिल्ली फसादात के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अफसर अंकित शर्मा के कत्ल के मामले में मुजरिम करार दिया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम गजलों की कहकशा। सुनने वालों को संतोष श्रीवास्तव का आदाब। आज की रात हम उन गजलों के नाम करते हैं जो बड़े पर्दे से निकलकर सीधे ही हमारे दिलों में उतर गई। तो चलिए इस कहकशा का पहला सितारा रोशन करती हैं। साल 1981 फिल्म उमराव जान, खय्याम साहब की धुन, शहरयार की कलम और आशा भोसले की आवाज़।

दिल चीज क्या है, ये सिर्फ एक गजल नहीं, एक तहजीब है। रेखा के एक्सप्रेशन और आशा जी की आवाज ने शहरयार के लफ्जों को अमर कर दिया। श्रोताओं, इस गजल के लिए खयाम साहब और आशा जी दोनों को नेशनल अवार्ड मिला था।

गुलजार साहब ने जब कलम उठाई और जयदेव ने धुन बनाई तो जन्म हुआ इस गजल का। सुरेश वाडेकर की दर्द भरी आवाज भी ये गजल पलायन का, बेरोजगारी का और शहरों की तन्हाई का।

श्रोताओं, गुलजार साहब की शायरी इतनी खासियत ये है कि वो आम आदमी के जज्बात को लफ्ज दे देते हैं। ये गजल आज भी उतनी ही रेलिवेंट है जितनी 1978 में थी। बात फिल्मी गजलों की हो और जगजीत सिंह साहब का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। साल 1982 की फिल्म साथ साथ, कुलदीप सिंह का संगीत और जगजीत चित्रा सिंह की आवाजी। सुनिए निदा फाजली की लिखी वो गजल जिसने

तो सुना श्रोताओं, है ना कमाल, इतनी सादगी से मोहब्बत का इजहार, जिंदगी धूप तुम घना साया, इस एक लाइन में पूरी शायरी है। अब एक ऐसी गजल समाज फरमाइए जो मुकद्दर और मोहब्बत दोनों की बात करती है। फिल्म बाजार 1982 एक बार फिर खयाम साहब के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर ने मीर तकी मीर का ये कलाम गुनगुनाया।

और श्रोताओं, अब आखिरी पेशकश फिल्म सरफरोश की गजल समाप्त फरमाइए, जिसे अपनी मखमली आवाज से रोशन किया है जगजीत सिंह साहब ने। संगीत जतिन ललित का है और कलामी शायर हैं निदा फाजली।

तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की गजलों की कहकशा। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और इसी के साथ अपने रेडियो दोस्त संतोष श्रीवास्तव को प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत दीजिए। शब्बात है।

एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र थोड़ी ही देर में हाजिर होते ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर बस थोड़ी प्रतीक्षा

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
1: सभी सुनने वालों को संतोष श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। रात का ये पहर जब शहर की रफ्तार थकने से लगती है और दिल की धड़कनें साफ सुनाई देने लगती है, शुरुआत करती ही 1949 में आई फिल्म दुलारी के इस गाने के साथ, जो हर सुहानी रात का अनकहा दस्तूर।

नौशाद साहब का जादू और रफी लता जी की चुगलबंदी। न जाने तुम कब से इस राह से गुजरती हो, जब रात ढली और कोई

रात का जिक्र हो और चांद का न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, शैलेंद्र के बोलों को सुरों में पिरोया है किशोर कुमार और आशा जी ने कितनी

अश्रुतों अब चलते ही 1971 में प्रदर्शित उस फिल्म की ओर जिसमें आर डी बर्मन साहब का संगीत थे और किशोर कुमार की मस्ती भी साथ थी। रात, सड़क और एक हमसफर।

ख्वाब में भी जब कोई मिलने आए तो रात सुहानी न हो तो क्या हो। किशोरदा की शरारत भरी आवाज में रात भी मुस्कुराने लगती है।

हर रात खुशनुमा नहीं होती, कुछ रातें इंतजार की होती हैं तो कुछ तन्हाई की। 1964 में आई फिल्म वो कौन थी, मदन मोहन का दर्द और लता जी की आवाज।

अब जरा नई सदी में आते हैं। 2012 की फिल्म बर्फी, प्रीतम का संगीत, रात, बारिश और एक खामोश मोहब्बत।

तो श्रोताओं, कुछ रातें रफी साहब की, कुछ किशोरदा की, कुछ लता जी की और कुछ अरिजीत सिंह की, पर हर रात सुहानी है अगर गीतों का साथ हो।

रात भर करवटें बदलती रही। नई पीढ़ी की बेचैनी नए जमाने का इश्क, पर जज्बात वही पुरानी। अरिजीत सिंह की आवाज में आज की रात भी सुहानी है।

0: तो श्रोताओं, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर भेंट होगी रात के किसी और पहलू के साथ। तब तक चांदनी ओढ़कर सो जाइए और गीतों को सुनहरे ख्वाबों में आने दीजिए। इसके साथ अपने रेडियो साथी संतोष श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, बस थोड़ी प्रतीक्षा।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं गुरु प्रसाद शर्मा का राग रागेश्री में वायलिन वादन। आपके साथ तबले पर संगति की है संदीप कुमार चक्रवर्ती ने। तो आइए सुनते हैं गुरु प्रसाद शर्मा का राग रागेश्री में वायलिन वादन।

शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में अभी आप सुन रही थी गुरु प्रसाद शर्मा का राग रागेश्री में वायलिन वादन। आपके साथ तबले पर संगति की संदीप कुमार चक्रवर्ती ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाश

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनके अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित

0: रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनके अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीमें लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वियतनाम के फूक वॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने कहा कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। भारतीय दूतावास ने इस कठिन समय में सहयोग और सहायता के लिए वियतनाम सरकार और वहां के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह से मछली पकड़ने निकले 15 मछुआरों की नाव का 5 जुलाई के बाद संपर्क टूट गया था। तटरक्षक बल, नौसेना और राज्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में नाव का पता लगाया। हादसे में 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं जबकि 6 अब भी लापता हैं। राज्य के मत्स्य मंत्री राजेश महतो ने कहा कि सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाज और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की। अंडर 23 में 5 महिला और 3 पुरुष मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। अंडर 19 में 8 महिला खिलाड़ी फाइनल में पहुंच चुकी हैं। पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल जारी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल टुडे डिसमिस्ड मीडिया रिपोर्ट्स ऑफ अ डेडलॉक इन इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स, कॉलिंग देम एज कंप्लीटली फॉल्स, बेसलेस एंड मिसलीडिंग। In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful, and delivered.